FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 16 जुलाई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 और 40 सेकेंड हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की सभा।

हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी समाचार सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। समाचार के तुरंत बाद हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। मंत्रिमंडल ने देश में सेमीकंडक्टर की डिजाइन और निर्माण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमियों की भी क्षमता को मजबूत करेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते, सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारी और गतिशीलता ढांचे द्वारा समर्थित भागीदारी की मजबूत गति को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रुसेल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद ये बात कही। भारत और बेल्जियम व्यापार तथा निवेश, हरित ऊर्जा परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी, रक्षा सुरक्षा, क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए हैं। भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद की बैठक ब्रुसेल्स में आयोजित की गई। मध्य प्रदेश से पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए प्रति उड़ान 15,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता देगी। उन्होंने कहा कि पहले किराया लगभग 24,000 से 25,000 रुपए प्रति सीट था, अब ये घटकर 12

से 15,000 रूपये हो गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित भारत टेक्स 2026 सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत और विदेशों के प्रमुख कपड़ा निवेशकों और उद्योग प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। श्री यादव भारत मंडपम में मध्य प्रदेश पवेलियन का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमरीकी सेना ने ईरान पर फिर से हमले शुरू करने की घोषणा की है। अमरीकी सेना की केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान में कई ठिकानों पर रात भर लगातार हमले किए गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा आज उड़ीसा के पुरी में शुरू हो रही है। लगभग 3 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन श्री गुंडेचा मंदिर में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। वहीं अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 25वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिला दी। 90वें मिनट में लुटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलाई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन। महात्मा बुद्ध का कथन है, जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है, वो संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 6:35 से सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान भाग 251, सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे संगीत सरिता। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सायंकालीन संधि प्रकाश राग, कलाकार गायिका विदुषी आरती अंकलीकर, भाग चौथा सुनिएगा आज, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। सुबह 7 से भूले बिसरे गीत 7:30 से हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 से त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 से चित्रलोक। सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे

कार्यक्रम आज के फनकार, ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री कटरीना कैफ पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 बजे से पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान, इसके अंतर्गत साहित्यकार लेखक विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत सुनिएगा। प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 बजे रात्रि 11 बजे से रंग तरंग, दिन में 12:05 से आपको सुनवाएंगे यादों की महफिल। दोपहर 1 बजे से सुनेगा सुरीला सफर, 2 बजे त्रिवेणी, 2:30 से आपको सुनवाएंगे सदाबहार नगमे। दोपहर 3 बजे का वक्त होता है कार्यक्रम सखी सहेली का, आज के विषय हैं मनोरंजन के बदलते स्वरूप, कहानी पद्मश्री की के अंतर्गत यानुंग जमोह लेगो जड़ी बूटी विशेषज्ञ की बातें। मुझे कुछ कहना है पहेलियां कराती हैं दिमागी कसरत, उपयोगी टिप्स के अंतर्गत बारिश में रखें स्वास्थ्य का ध्यान। संवादक हैं चंचल वर्मा, आरती श्रीवास्तव, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। शाम 4 बजे से हेलो फरमाइश, संवादक मंदाकिनी जोशी, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। शाम 5 बजे से छायागीत का पुनर्प्रसारण, 5:30 से आपको सुनवाएंगे तराने नए पुराने। झरोखा सुनेगा 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन। 7 बजे से प्रस्तुत किया जाएगा फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत इनसे मिलिए के अंतर्गत अभिनेता संजय गांधी से रेणु बंसल की बातचीत सुनेगा प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश। संगीत रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत हास्य नाटिका सुनिए चोर देवता, लेखन अशोक कुमार शान का, निर्देशन कमल दत्त का। रात 8:15 से चित्रलोक, रात 9 बजे से सुनेगा आपके लिए। रात 10 बजे से सुनवाएंगे आपको छाया गीत, आलेख एवं स्वर नेहा अगरकर देसाई, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी।

आपको एक बार फिर याद दिला दें, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री कटरीना कैफ पर, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। सुबह 10 से पिटारा आज के मेहमान सुनिएगा और साहित्यकार लेखक विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत, इसके अंतर्गत प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अभी आप सुन रहे थे झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण।

नखा जैसी राक्षसी कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वो भाई पिता पुत्र ही क्यों ना हो, विकल हो जाती है, अपने मन को रोक नहीं सकती। श्री राम ने लक्ष्मण को शूर्पणखा के कान और नाक काट देने का इंगित किया। लक्ष्मण ने स्वामी के आदेश का पालन किया। वो विलाप करती अपने भाइयों खर और दूषण के पास जाकर उनके पौरुष को ललकारती है।

शूर्पणखा के आहत होने का हाल सुनकर झुंड के झुंड राक्षस दौड़ पड़े। राक्षसों की सेना निकट आई देख श्री राम ने लक्ष्मण के साथ सीता जी को पर्वत कंदरा में भेजकर अपने धनुष पर वाण चढ़ाया। ऐसा दृश्य उपस्थित हुआ जैसे मतवाले हाथियों को आता देख सिंह उन्हें ताक रहा हो। श्री राम को देख राक्षसों की सेना चकित थकित रह गई। ऐसा सुंदर रूप उन्होंने कभी देखा न था, उन पर वाण कैसे छोड़ें? तब युद्ध न करने के उद्देश्य से खरदूषण ने श्री राम से उनकी स्त्री की मांग की।

0: सांध्यकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए राग मारवा। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं मशहूर गायिका आरती अंकलीकर।
1: संगीत सरिता सुनने वालों को मेरा नमस्कार। पिछली बार हमने राग पूर्या के बारे में जानकारी हासिल की थी, आज मैं आपको थोड़ा कुछ राग मारवा के बारे में

बता दूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राग मारवा और राग पूरिया दोनों के स्वर एक ही हैं, लेकिन मारवा में जो है धैवत और ऋखभ इनको प्राधान्य दिया जाता है। इसमें ऋषभ कोमल है, मध्यम तीव्र है, अन्य सभी स्वर शुद्ध हैं, जिस तरह राग पूरिया में भी हैं। वर्जित स्वर पंचम है, पूरिया में भी पंचम वर्जित है, सोहनी में भी पंचम वर्जित है, मारवा में भी पंचम वर्जित है। तो जैसा कि आपने देखा, मारवा, पूरिया और सोहनी एक ही स्वर लेके आते हैं, पंचम वर्जित, लेकिन इनमें संधि प्रकाश राग सिर्फ पूरिया और मारवा है। सोहनी रात के समय गाया जाता है। राग मारवा के बारे में हम, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र, अन्य सभी स्वर शुद्ध, पंचम वर्जित, जाति शाड़व, वादी स्वर इसका धैवत है और संवादी जो है ऋषभ। वादी संवादी के बारे में हम कह सकते हैं कि वादी हो जैसे कि एक राजा हो, उस राग का वो राजा है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्वर होता है। संवादी जो है वो उसकी पटरानी कह सकते हैं। तो मारवा में धैवत और ऋखभ, ये वादी संवादी एक दूसरे से के साथ संवाद करते हुए जब हम इनको बाकी स्वरों के साथ पेश करेंगे, तब जाके खूबसूरत मारवा हमारे सामने आएगा। धैवत और ऋषभ, इनको एक दूसरे के साथ संवाद करना बहुत जरूरी है। ये संधि प्रकाश रागों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खूबसूरत वीर रसपूर्ण राग है। इसका गायन समय आप सभी जानते हैं, सायंकाल सूर्यास्त के समय का राग है ये। आरोह इसका इस प्रकार है।

जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये राग वीर रस पूर्ण है या रौद्र रस पूर्ण है, लेकिन कुछ गुणीजनों का कहना है कि ये राग बीभत्स रस पूर्ण है। कुछ भी हो, ये राग बहुत खूबसूरत है और बड़ा लोकप्रिय राग है, और आप देखेंगे कि काफी सभाओं में, काफी महफिलों में शाम के वक्त ये राग पेश किया जाता है और बहुत ही लोकप्रिय राग है ये। तो मारवा राग जो संधि प्रकाश राग है, उसमें आज मैं आपको एक बंदिश सुनाने जा रही हूँ। गुनीदास जी की बंदिश है ये, पंडित जगन्नाथ बुआ पुरोहित जी की। हो गुनियन मिल गाओ बजाओ, सप्त सुरन के भेद सब मिल बखानो। हो गुनियन मिल गाओ बजाओ, ये बंदिश ताल एक ताल में निबद्ध है।

ये था राग मारवा का परिचय। अब प्रस्तुत है पंडित के महावीर की एक संगीत रचना लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत की विरह अभिव्यक्ति को राग मारवा के स्वरों ने कितना असरदार बना दिया है, आप खुद ही सुनिए।

0: अभी आप सुन रहे थे सायंकालीन संधि प्रकाश रागों की श्रृंखला की चौथी कड़ी। इसे प्रस्तुत किया सुप्रसिद्ध गायिका आरती अंकलीकर ने।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं सुरैया और श्याम की आवाजों में दिल्लगी फिल्म के गाने के साथ। शकील बदायूनी हैं गीतकार और संगीतकार हैं नौशाद।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली।

0: इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजों में पतंगा फिल्म का गाना। इसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत से संवारा है सी रामचंद्र ने।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से अंतराल का, तुरंत हाजिर होते हैं।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। लीजिए अब सुनिए नक्सब जारचवी का लिखा और खेमचंद प्रकाश का संगीतबद्ध किया गाना। आवाज है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम महल।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
4: और आ गया।
3: एक और आ गया।
5: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
6: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सही परांजपे की।

0: उजाले उनकी यादों के 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
1: सुनिए।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में दुलारी फिल्म का गाना। गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार हैं नौशाद।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मन्ना डे की आवाज में मशाल फिल्म से कवि प्रदीप की रचना है और तर्ज बनाई है एसडी बर्मन ने।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी विविध भारती से वहां के कार्यक्रमों का प्रसारण, इन्हें हम अपने आकाशवाणी सासाराम से रिले कर रहे थे। हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास।

नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुबह का सूरज आप सभी के जीवन में नई रोशनी और उमंग लेकर आए, आपके दिन को खुशनुमा और ऊर्जावान बनाए, यही कामना है हमारी। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं नमस्ते रोहतास का हमारे आज का यह आधा घंटा का सफ़र। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के सुविचार से। उनका कथन रहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक

श्रोताओं, आज है 16 जुलाई। जी हाँ, तो श्रोताओं, 16 जुलाई को भारतीय इतिहास और विश्व इतिहास में कई प्रमुख घटनाएं घटी हैं। हम आपको बता दें कि 16 जुलाई को 1926 में नेशनल जियोग्राफिक ने 16 जुलाई 1926 को पहली बार समुद्र के भीतर के दृश्यों का प्राकृतिक रंगीन फोटो निकाला था। 1945 में आज ही के दिन यानी कि 16 जुलाई को अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में दुनिया के पहले परमाणु बम का सफल परीक्षण किया। 1969 में आज ही के दिन यानी कि 16 जुलाई को अमेरिका ने चंद्रमा पर इंसानों को पहुंचाने वाले अपने ऐतिहासिक मिशन अपोलो 11 का अंतरिक्ष में भेजने का काम किया। 1981 में भारत ने 16 जुलाई को परमाणु परीक्षण किया। 2015 में आज ही के दिन यानी कि 16 जुलाई को वैज्ञानिकों ने प्लूटो ग्रह की क्लोजअप तस्वीरें जारी की। और अब थोड़ी सी जानकारी 16 जुलाई को जन्मे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो आपको बता दें कि 1909 में आज ही के दिन मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और नेता अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ था। अरुणा आसफ अली को 1964 में लेनिन शांति पुरस्कार, 1992 में भारत के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण और 1997 में मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बात करें 16 जुलाई 1968 की, तो आज ही के दिन भारत के जाने माने हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई का जन्म हुआ। 3 ओलंपिक, 3 वर्ल्ड कप और 4 एशियाई खेलों में भाग लेने वाले धनराज पिल्लई 16 जुलाई को 1968 में जन्मे थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हॉकी हमारे देश का नेशनल गेम है यानी राष्ट्रीय खेल है, तो इसको बढ़ावा देने में धनराज पिल्लई की सराहनीय भूमिका है जिसे देश कभी नहीं भूलेगा। और श्रोताओं, बात करें 16 जुलाई की, तो एक और जन्मदिन है आज। जी हाँ, 1984 में आज ही के दिन भारतीय सिनेमा की नई अभिनेत्रियों में शुमार कैटरीना कैफ का जन्म हुआ है। तो इन्हें देते हैं जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम आपको बता दें कि 16 जुलाई को 2005 में प्रसिद्ध कन्नड़ नाटककार केबी सुबन्ना का निधन हो गया था। तो श्रोताओं, ये था 16 जुलाई का इतिहास। और अब आइए कार्यक्रम में सुनते हैं एक भक्ति गीत। आदि पुरुष फिल्म से हमने इस गीत को लिया है। गायक कलाकार हैं सचेत टंडन और परंपरा टंडन, गीतकार हैं मनोज मुंतशिर और संगीतकार हैं सचेत टंडन परंपरा टंडन।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: विज्ञापन के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम नमस्ते रोहतास में। और नमस्ते रोहतास कार्यक्रम में अब आइए एक नज़र डालते हैं स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों पर। रोहतास जिले को टीवी से मुक्त करने के लिए 14 अगस्त तक होगी टीवी की स्क्रीनिंग। जी हाँ, 1.78 लाख लक्ष्य के विरुद्ध 2.67 लाख लोगों की टीवी की जाँच की गई। स्क्रीनिंग अभियान के दौरान जिन लोगों में टीवी के लक्षण मिले उनमें से 23,475 लोगों का एक्सरे कराया गया। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि प्रारंभिक स्तर पर बीमारी की पहचान होने से मरीजों का इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है, संक्रमण फैलने की आशंका भी कम होती है। CDO ने बताया कि सभी संदिग्ध मरीजों की आवश्यकता अनुसार बलगम जांच, अन्य परीक्षण भी कराए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि टीवी के लक्षणों को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध निःशुल्क जांच एवं इलाज का लाभ उठाएं। रोहतास जिला में इंटर परीक्षा के लिए 22 जुलाई तक होगा निबंधन। जी हाँ, इंटरमीडिएट परीक्षा

2027 में शामिल होने के लिए छात्र छात्राएं आगामी 22 जुलाई तक ऑनलाइन निबंधन करा सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अब तक छूटे हुए छात्रों और छात्राओं का निबंधन कराने का अंतिम अवसर ये दिया है। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि छात्र छात्राओं का ऑनलाइन निबंधन संबंधित प्लस टू स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करना है। निबंधन शुल्क का भुगतान 20 जुलाई तक ही मान्य होगा। कैमूर जिला में खाद दुकानों की जांच के लिए छापेमारी दल गठित। जी हां, कैमूर जिला में किसानों को निर्धारित मूल्य पर सुगमतापूर्वक उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए विभाग द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। खाद की कालाबाजारी करने वाले उर्वरक विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जिले में उपलब्ध उर्वरक का समानुपातिक रूप से वितरण सभी जगह किया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी कैमूर ने बताया है कि उर्वरक की उपलब्धता के अनुरूप सभी प्रखंडों में उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्रोताओं, एक बार फिर हम आपको बता देते हैं कि महात्मा गांधी चौक से हटाया जा रहा है अतिक्रमण। जी हां, रोहतास जिला के सासाराम के महात्मा गांधी चौक से कल बहुत सारे अतिक्रमण वाले जगहों पर दुकान हटाए जा रहे हैं। सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी की जा रही है। सड़क पर अवैध कब्जा कर दुकानदारों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उनके तिरपाल को जेसीबी से हटा दिया है और अगली बार से अतिक्रमण वाली जगहों पर दुकान लगाने के लिए मना कर दिया गया है प्रशासन द्वारा।

फाइलेरिया के 47 मरीजों को कल दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिया गया। रोहतास जिले में फाइलेरिया से प्रभावित मरीजों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने महत्वपूर्ण पहल की है। सेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि रोहतास जिले के 47 फाइलेरिया पीड़ित मरीजों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है और उन्होंने बताया कि फाइलेरिया एक गंभीर उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है और इसके कारण कई मरीजों के हाथ या पैर में स्थायी सूजन हो जाती है, साथ ही शारीरिक विकलांगता भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए फाइलेरिया का आप उपचार अवश्य करवाएं, इसकी निःशुल्क जांच भी जरूर करवाएं।

भभुआ में साइबर पुलिस ने 50,000 की राशि होल्ड करा आवेदक के खाते में वापस कराई। जी हाँ, भभुआ के साइबर पुलिस ने 50,000 रुपये की राशि होल्ड कराकर आवेदक के खाते में वापस कराई है। साइबर थाना पुलिस ने बताया है कि वादी वंशीधर पांडे के द्वारा एक वाद दिया गया था, जिसमें उनके 50,000 रुपये किसी अन्य व्यक्ति के खाते में चले जाने के बारे में बताया गया था। वादी द्वारा इससे संबंधित 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज की गई थी। जी हाँ, साइबर से संबंधित जो अपराध होते हैं उनके लिए शिकायत दर्ज करने के लिए जो नंबर है वो नंबर है 1930। तो इस नंबर पर वादी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी और इस शिकायत पर त्वरित कार्रवाई हुई और बुधवार को साइबर सेल के पदाधिकारियों ने 50

रुपए की राशि को होल्ड कराकर आवेदक के खाते में वापस करा दिया। साइबर पुलिस ने बताया है कि यदि आप साइबर क्राइम के शिकार हैं तो 1930 यानी कि 1930 पर कॉल जरूर करें और cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज करें। अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं जहां लोगों को किसी गलत लिंक पर क्लिक करने या किसी गलत ऐप को डाउनलोड करने या OTP किसी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर करने की वजह से उनके अकाउंट से पैसे किसी दूसरे या किसी अनजान व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरह ऑनलाइन ठगी के शिकार अगर आप हो रहे हैं तो साइबर क्राइम के थाने में भी आप आवेदन जरूर दें और 1930 पर तो कॉल जरूर करें।

रोहतास जिल्ला मण्डलकारा के सासाराममें कल बुधवार को जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्र एवं पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में बंदी दरबार सुरक्षा ऑडिट एवं कारा निरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया, बंदियों की समस्याएं सुनी, उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बंदियों ने अपनी विभिन्न मांगें और समस्याएं भी जिलाधिकारी के समक्ष रखीं। डीएम रोहतास ने भवन निर्माण विभाग एवं जेल उपाधीक्षक को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने बंदियों से संवाद भी किया। उन्होंने कहा कि कारावास की अवधि को स्वयं को बदलने और बेहतर इंसान बनाने के अवसर के रूप में लें और अपराध का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में लौटने की कोशिश करें। साथ ही उन्होंने तकनीकी कौशल और सॉफ्ट स्किल सीखने पर भी जोर दिया।

सासाराम आगमन पर सर्किट हाउस में कल बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का शाहाबाद के वरिष्ठ समाज सेवियों द्वारा किया गया स्वागत और स्थानीय विकास और जनहित के विभिन्न मुद्दों पर उनसे हुई चर्चा। रोहतास जिला के ई किसान भवन में कल बुधवार को प्रखंड किसान सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वक्ताओं द्वारा कहा गया कि अच्छी उपज के लिए संतुलित मात्रा में ही उर्वरक का उपयोग करना चाहिए। और श्रोताओं, स्थानीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के बाद अब कार्यक्रम में आइए सुनते हैं एक गीत अलका याग्निक जी की सुरीली आवाज में। इस गीत को लिखा है शकील आजमी ने और संगीत दिया है रूप कुमार राठौर ने। फिल्म है वो तेरा नाम था।

अलका याग्निक के स्वर में अभी आप सुन रहे थे वो तेरा नाम था, इस फिल्म से लिया गया ये गीत। और अब डालते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों पर नज़र। सभी समाचार पत्रों में एक खबर प्रमुखता से छपी है कि आज 16 जुलाई 2026 से ओडिशा यानी कि उड़ीसा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इस मौके पर भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि फ्रांस को 2-0 से हराकर 10 साल बाद फीफा विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी है स्पेनिश टीम। अब बिहार में बाइक और तिपहिया वाहनों पर रोड टैक्स बढ़ा। जी हां, बिहार के राज्य सरकार ने दो पहिया वाहनों पर 1% टैक्स बढ़ा दिया है। इसी प्रकार तिपहिया वाहनों पर ₹1,000 टैक्स बढ़ाया गया है। राज्य कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति कल दे दी। साथ ही बिहार के गांवों में भी लगेगा होल्डिंग टैक्स। वार्ड, पंचायत और जिला परिषदों का नए सिरे से होगा परिसीमन। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्र निर्धारित होंगे और अब नए परिसीमन के आधार पर ही बिहार राज्य में अगला ग्राम पंचायत चुनाव कराया जाएगा। भागलपुर में AI और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी खुलेगी, CM सम्राट चौधरी। 211 डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू, भागलपुर से CM ने कल की इसकी शुरुआत। बिहार में अब सहायक प्राध्यापक के लिए 3,687 नहीं बल्कि 2,532 पदों पर होगी भर्ती। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक की संविदा नियुक्ति से जुड़ी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है।

आयोग ने 3 जुलाई को जारी विज्ञापन में घोषित 3,687 रिक्तियों को संशोधित करते हुए अब 2,532 पदों की नई अधिसूचना जारी की है। और अब चलते चलते हम आपको बता देते हैं आज का मौसम। जी हाँ, रोहतास जिला में आज 16 जुलाई का मौसम मुख्य रूप से गर्म, उमस भरा और आंशिक रूप से बादल छाए रहने वाला रहेगा। दिन भर में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की पूरी संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रहने का अनुमान है। तो ये थी समाचार पत्रों की सुर्खियाँ और मौसम। और चलिए चलते चलते सुन लेते हैं एक और गीत श्रीकांत फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

तूफान में कश्ती भी किनारा ढूंढ लेती है, मुश्किलों में ज़िंदगी भी सहारा ढूंढ ही लेती है। इसलिए कभी भी हार मत मानिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मंजिल कहीं ना कहीं खुद ब खुद रास्ता ज़रूर ढूंढ लेती है। और अब इस कार्यक्रम से मुझे यहीं दीजिए इजाज़त। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार।

0: और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात।
1: कैच द रेन, बारिश की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
4: सेमिकॉन 2.0 1,27,000

0: 500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माने प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें 4 बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपये से लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडिचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव, तीन शानदार ढंग से सजाया गया रथ, नंदी घोष, ताड़ध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
2: बज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमा सा चेहरा।
3: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि संपन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
4: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
5: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं

0: मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त को हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है जगन्नाथ है महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है जीन से ग्रीन क्रांति, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज, टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार प्रभात। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 हो रहे हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति संगीत। देशभक्ति संगीत कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे शंकर महादेवन के स्वर में कुमार का लिखा हुआ एक देशभक्ति गीत, जिसकी धुन बनाई है विपिन पाटवा ने और फिल्म है कोड नेम तिरंगा।

वंदे मातरम। जी हाँ, अभी आपने शंकर महादेवन के स्वर में ये देशभक्ति गीत सुना, कोज नेम तिरंगा, इस फिल्म से। इसी के साथ ही हमारा आज का देशभक्ति संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:20 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे, जी हाँ, पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, कार्यक्रम में ये सबसे पहला पत्र जो हम शामिल कर रहे हैं, उसे लिखकर भेजा है कुवैत से शेख जफर हसन और राकेश रोशन ने। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश आई है आराधना फिल्म के गीत मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू इसके लिए। तो ज़रूर शेख जफर हसन जी, आपकी ये जो प्यारी सी फरमाइश है, इसे हम शामिल कर रहे हैं कार्यक्रम में इस पहले गीत के साथ। लेकिन कुछ और श्रोताओं के नाम भी हम शामिल कर रहे हैं। आप हैं कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय, उषा रॉय, अमित कुमार रॉय, हैप्पी रॉय। दुबिहा नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक रॉय, रोशनी रॉय, प्रांजल रॉय। शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश रॉय, रीति रॉय और नवनीत रॉय। थाना मोड़ गढ़नोखा रोहतास से आप सभी हैं मुन्ना भाई मंसूरी, नजबुल निशा, सद्दाम मंसूरी, नगमा निशा, लाल बाबू, सिमरन अली, अरबाज मंसूरी, सैफ अली, शहबाना और शाहबाज। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं आराधना फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जी की युगल आवाज में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत को सुनना चाहा था गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान और आर के सिंह चौहान ने। ब्रह्मपुरा मनीगाछी से आप सभी श्रोता थे भाई अच्छे लाल रॉय, पानो देवी, मुकेश कुमार रॉय, प्रेम कुमार और प्रिंस कुमार। पटेल नगर मलोट पंजाब से हमें ख़त लिखकर भेजा डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू ने। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और आप सुन रहे हैं पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम पसंद आपकी। पसंद आपकी कार्यक्रम में अगला गीत घटा छा गई है और इस गीत को जिन श्रोताओं ने सुनना चाहा है तो उन्होंने फिल्म का नाम लिखा है बारिश, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि इस फिल्म का नाम है वारिस। जी हाँ श्रोताओं, वारिस फिल्म का ये गीत है और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं दौलत बाग मुरादाबाद से जाफ़र हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनेद अब्बासी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंगी शर्मा, सौरभ, शाइना और निवांश शर्मा। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। तो चलिए आप सभी के लिए पेशे खिदमत है वारिस फिल्म से ये गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर जी के साथ सुरेश वाडेकर ने है। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने और संगीत से संवारा है उत्तम जगदीश ने।

0: घटा छा गई है। अभी आपने इस खूबसूरत गीत को दिग्गज गायकों लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की सुरीली आवाज़ में सुना। श्रोताओं, आपको बता दें कि ये वारिस फिल्म का गीत है, और वारिस फिल्म जो आई थी वो आई थी 1988 में, और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में राज बब्बर के साथ अमृता सिंह और स्मिता पाटिल थी। बेहद ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना, और पसंद आपकी कार्यक्रम का हमारा ये सफ़र आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी सुनते हैं फिलहाल ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में

0: लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: और अब इसी के साथ पसंद आपकी कार्यक्रम में ये अंतिम पत्र शामिल कर रहे हैं। जी हाँ, आया है डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से। लिखा है इसे राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये ने। इन सभी श्रोताओं की फरमाइश है राजकुमार फिल्म के लिए। गौतम नगर जिला नांदेड़ से आप हैं प्रभाकर जोधले और आरती जोधले। जतुका किशनपुर से हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, सबाना आलम, चांदनी नाज। सिराजपुर गणेशपुर से हैं वकील राही, फिरोज आलम, नाज प्रवीण और अर्श बाबू। तो चलिए आप सभी को सुनवाते हैं राजकुमार फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर जी के स्वर में। शैलेंद्र की रचना को संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ हमारा आज का पसंद आपकी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे पटना से प्रादेशिक समाचार, तो कीजिए थोड़ा सा इंतज़ार।

0: श्रोताओं थोड़ी ही देर।
1: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: सावधान, क्या आप जानते हैं आपके द्वारा पॉलिथीन में फेंका गया खाद्य पदार्थ पशुओं की जान ले सकता है। पॉलिथीन में लिपटा बचा हुआ खाद्य पदार्थ पशुओं का साइलेंट किलर बनता जा रहा है। खाद्य पदार्थों के साथ ये पॉलिथीन उनके पेट में जमा होकर पाचन तंत्र को बंद कर देता है, जिससे उनकी मौत तक हो सकती है। पॉलिथीन के कैरी बैग पर लगाए गए प्रतिबंध का पालन करें, उसे खुले में न फेंकें, बचे हुए खाद्य पदार्थों का सही निपटान करें, पॉलिथीन मुक्त समाज बनाएं, पशुधन बचाएं।
2: डेयरी एवं पशु संसाधन विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया की

is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में नए परिसीमन के आधार पर होंगे पंचायत चुनाव। राज्य मंत्रिपरिषद ने परिसीमन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल 740 नई सीटों को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया संस्करण जारी किया। और नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान नदी उफान पर निचले इलाकों में फैला पानी। अब समाचार विस्तार से। राज्य की ग्राम पंचायत, वार्ड पंचायत समिति और जिला परिषद का नए सिरे से परिसीमन किया जाएगा। वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का निर्धारण होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत परिसीमन तय करने की स्वीकृति दी है। इससे ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ जाएगी। उन्होंने बताया कि अब नए परिसीमन के आधार पर ही पंचायत चुनाव होंगे। इससे जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। राज्य में 1994 के बाद पंचायतों का परिसीमन होगा। श्री चौधरी ने बताया कि कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरों की तरह होल्डिंग टैक्स समेत अन्य तरह के कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ग्राम पंचायतों के माध्यम से कर की वसूली की जाएगी। इसके तहत घरों और दुकानों समेत अन्य प्रतिष्ठानों पर 50 रूपये से लेकर 5,000 रूपये तक होल्डिंग टैक्स लगेगा। मकान, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर शुल्क वार्षिक जबकि जलापूर्ति शुल्क मासिक देना होगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए कैबिनेट ने ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 को स्वीकृति दी है।
1: बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित बिहार ग्राम पंचायत नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। ये अब ग्राम पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। एक्ट में पहले से प्रावधान है, सरकार को उसके लिए नियमावली बनाना था। अभी ये नियमावली बन गई तो नियमावली के तहत अलग अलग तरीके के कर लगाने का उनको आधार मिलेगा और इससे उनकी अपनी भी एक आय बनेगी।
0: कैबिनेट ने कुल 25 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की कुल 740 नई सीटों को मंजूरी दी है। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 190 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 550 सीटों की वृद्धि हुई है। सीटें बढ़ने के बाद अब राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में कुल 4,160 MBBS सीटों पर नामांकन होगा। बढ़ी हुई सीटों के बाद बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अब 1,710 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 2,450 सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। इस बार PMCH और NMCH में 50-50 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 30-30 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभाग में योजना मद की अब तक केवल 3% राशि खर्च होने पर नाराजगी जताई है। विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर योजनाओं के क्रियान्वयन और व्यय की प्रगति में सुधार

0: आधार सुनिश्चित किया जाए ताकि किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। मंत्री ने योजनाओं की स्वीकृति में हुई देरी की जांच कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने तथा पिछले 3 वर्षों की जिलावार प्रगति रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए। बिहार सरकार ने बेतिया राज की 7272.16 एकड़ भूमि को राजसात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में 6 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान और पटना की भूमि के लिए अधिसूचनाएं जारी की हैं। विभाग के अनुसार यह कार्रवाई बेतिया राज संपत्तियों को राजसात करने संबंधी अधिनियम 2024 और नियमावली 2026 के तहत की जा रही है। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया संस्करण जारी किया है। IRCTC ने इस संस्करण में 4 सुधार किए हैं। एक रिपोर्ट।
1: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। नामांकन पत्रों की जांच में कुल 26 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए थे। वहीं जांच में जन शक्ति जनता दल की वीणा मानवी समेत 14 उम्मीदवारों के पर्चे रद्द हो गए थे। प्रमुख उम्मीदवारों में एनडीए की ओर से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर शामिल हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा और मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: कहाँ चलती है? इधर तो आओ।
3: इधर आइए। इधर
4: इधर
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
4: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
5: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
4: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना। हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612222205042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
5: शुभ वाणी,
4: लाभ वाणी,
5: आकाशवाणी।
0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 1 सप्ताह तक राज्य में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने आज दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात का अलर्ट है। हालांकि पटना समेत आसपास के जिलों में कम बारिश से गर्मी और उमस की स्थिति बनी हुई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सिवान जिले के महाराजगंज में सबसे अधिक 81.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। नेपाल में हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कोसी और कमलावला नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के टुमरिया घाट में खतरे के निशान से 34 सेंटीमीटर

मीटर ऊपर चला गया है। वहीं बागमती नदी रून्नीसैदपुर और बेनीबाद में लाल निशान से ऊपर बनी हुई है। कमला बलान नदी का जलस्तर झंझारपुर में खतरे के निशान से 40 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। वहीं कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में लाल निशान से 42 सेंटीमीटर ऊपर चली गयी है। नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, अररिया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और दरभंगा जिले के कई निचले इलाकों में पानी फैल गया है। पूर्वी चंपारण के भलुवाहिया गांव के पास तिलावे नदी का बांध टूटने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई है। वहीं पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद कई गांवों में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। दरभंगा में कमला बलान नदी में उफान से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है और विद्यालयों में पठन पाठन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और निगरानी तेज कर दी है तथा लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने नव स्थापित 211 डिग्री महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए संशोधित अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार अब संविदा आधारित सहायक प्राध्यापक के 2532 पदों पर भर्ती की जाएगी। आयोग के अनुसार यह बदलाव उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त संशोधित अधियाचना के आधार पर किया गया है। इससे पहले इस पद के लिए 3687 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। पटना में इस्कॉन की ओर से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के अवसर पर आयोजित इस धार्मिक यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया है। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। इधर क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे से कार्डिफ में खेला जाएगा। राजधानी पटना में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले साइबर गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी बीपीएससी सिपाही भर्ती और बिहार पुलिस सेवा आयोग में नौकरी दिलाने का झांसा देकर बेरोजगार युवकों से लाखों रुपए ठगते थे। सारण जिले के कड़खा थाना क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर एक मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। मौके से 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और हथियार बनाने के उपकरण के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। भोजपुर जिले के जगदीशपुर नगर पंचायत में विकास योजनाओं में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में नगर विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पुलिस ने कुख्यात अपराधी नरेश पांडे के ठिकाने पर छापेमारी कर 16,71,000 रुपये नगद, नेपाली मुद्रा, हथियार, कारतूस, सोने चांदी के आभूषण और जमीन के कागजात बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान नरेश पांडे फरार हो गया, जबकि उसके सहयोगी उज्जवल कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 66 में इलेक्ट्रिक स्कूटी की चार्जिंग के दौरान हुए विस्फोट से 5 मंजिला मकान में आग लग गई। इस हादसे में मुजफ्फरपुर की महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिपरिषद के फैसलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, ग्राम पंचायत कर दर शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी, गांव में 50 रुपये से 5,000 रुपये तक होल्डिंग टैक्स लगेगा। दैनिक जागरण ने लिखा है, 2 और 3 पहिया वाहनों पर 1% बढ़ा रोड टैक्स। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, भागलपुर में AI और कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी खुलेगी। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय कैबिनेट के फैसले को प्रमुखता देते हुए लिखा है, सेमिकॉन 2.0 मंजूर, मिसाइल से मोबाइल तक की हर चिप भारत में बनेगी। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर

0: शिकंजा कसने की तैयारी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में नए परिसीमन के आधार पर होंगे पंचायत चुनाव। राज्य मंत्रिपरिषद ने परिसीमन के प्रस्ताव को दी मंजूरी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने राज्य के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS के कुल 740 नई सीटों को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए IRCTC की वेबसाइट का नया संस्करण जारी किया। और नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान नदी उफान पर निचले इलाकों में फैला पानी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: गन्ने की खेती अब सिर्फ फसल नहीं, बनेगी आपकी नई पहचान और बेहतर कमाई का आधार।
3: बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग की बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत अब गुड़ उत्पादन इकाई की स्थापना पर मिलेगा पूंजीगत लागत का 50% तक अनुदान।
4: क्षमता के अनुसार 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का लाभ उठाइए।
3: आज ही कीन केयर पोर्टल ccs.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जुलाई 2026। गन्ना उद्योग विभाग एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी।

FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9:06 हो रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में अब आइए एक नज़र डालते हैं आज हमारे सासाराम केंद्र से प्रसारित और रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी देर बाद 9:10 पर आप सुनेंगे गीत मालिका कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। 9:30 पर आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र आज के फनकार के लिए। सुबह 10:00 आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। साहित्यिक कार्यक्रम हिंदी वार्ता के अंतर्गत आज 10:05 पर हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, आँखों में होने वाले रोग और बचाव के उपाय। भेंट वार्ताकार होंगे डॉक्टर के एन तिवारी और भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। साथ ही एक वार्ता सुनेंगे आप भिखारी ठाकुर और उनकी रचना धार्मिकता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह।

10:30 पर सुनिएगा लोक माधुरी कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम लोकगीत। 10:45 पर आप सुनेंगे रसधार कार्यक्रम में भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। सुबह 11 बजे हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी विविध भारती, जहां से आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। दोपहर 12 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। यादों की महफिल और विविध भारती की गीत मालिका हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी विविध भारती से दोपहर 12:05 से दोपहर 2 बजे तक। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से प्रादेशिक समाचार। 2:05 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरें। 2:10 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी पटना से रोजगार सूचना। 2:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से मध्याह्न समाचार। 2:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से सदाबहार नगमे कार्यक्रम। शाम 5 बजे आकाशवाणी दिल्ली से सुनना ना भूलिएगा हिंदी समाचार। शाम 5:05 पर आप सुनेंगे हमारे सासाराम केंद्र से उद्घोषणा एवं कार्यक्रम विवरण। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे वंदन कार्यक्रम में भक्ति संगीत। 5:30 पर हम लेकर आएंगे युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे आस्था और भक्ति के महापर्व जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में जानकारी। साथ ही आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई विशेष, इस पर भारतीय न्याय संहिता के बारे में भी विशेष जानकारी। शाम 6 बजे आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीत। शाम 6:05 पर सुनिएगा आकाशवाणी पटना से रिले किए जाने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन को। शाम 6:10 से शाम 6:40 तक हम लेकर आएंगे किसान भाइयों बहनों के लिए कार्यक्रम किसान वाणी का प्रसारण। इस कार्यक्रम में आज की बातें के अंतर्गत आप सुनेंगे धान की रोपनी कैसे करें, इस विषय पर भेंटवार्ता। साथ ही नई उम्र की नई फसल में आप सुनेंगे धान की रोपनी समय पर करें, इस विषय पर विशेष जानकारी। शाम 6:40 पर सुनिएगा सांगीत कार्यक्रम में भोजपुरी फिल्म संगीत। गुड इवनिंग रोहतास, ये सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 7:15 पर। शाम 7:25 पर हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के पटना केंद्र प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल के लिए ई मनपसंद। जी हाँ, ईमेल पर आधारित ये फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनेंगे 7:50 से रात 8:45 तक। रात 8:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार संध्या। रात 9 बजे सुनिएगा भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा और 9:15 पर कार्यक्रम महफिल में चंद गजल। 9:30 पर हम आपको ये चलेंगे आज के फनकार कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र। रात 10 बजे आप सुनेंगे रसरंग कार्यक्रम में हिंदी एल्बम सॉन्ग और 10:30 पर चित्रपट तराने कार्यक्रम में हिंदी फिल्म संगीत। रात 11 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार। हमारी आज की यह सभा संपन्न होगी रात 11:10 पर। तो ये था कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:11 हो रहे हैं। तो अब लीजिए सुनिए गीत मालिका कार्यक्रम में कुछ हिंदी फिल्मी गीत। सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं साधना सरगम की आवाज़ में समीर का लिखा हुआ एक गीत, जिसकी धुन बनाई है नदीम श्रवण ने और फिल्म है हम हैं राही प्यार के।

दीवानी मस्तानी। जी हाँ, अभी आपने ये सॉन्ग सुना फिल्म बाजीराव मस्तानी से। मीठी सी आवाज़ थी श्रेया घोषाल की। गीत लिखा था सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीत से संवारा संजय लीला भंसाली ने। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 MHz पर। गीत मालिका कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए सड़क फिल्म का एक गीत, अभिजीत और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाज़ में। सुरिंदर साथी के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का।

0: फन्ने खान फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सुनिधि चौहान और दिव्या कुमार की युगल आवाज में, इरशाद कामिल के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत। और अब इसी के साथ आज का गीत मालिका कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती से कार्यक्रम आज के फनकार।
1: पलों के बाद

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

कैटरीना कैफ का जन्म 16 जुलाई 1983 को हुआ था। कैटरीना हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडल।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाल दी।

साल 2006 में कैटरीना कैफ ने अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन,

इसके बाद फिल्म अपने में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसके न चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ के अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3 में।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

0: अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।
1: घर सुरैया जान के सर झुका के आए हो।

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: duette, ja. Duette, ja.
1: ये था आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

0: Barranc.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा के समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
2: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर। 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर। 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम IRCTC की वेबसाइट का एक नया स्वरूप जारी किया है। नए स्वरूप में 4 बड़े सुधार किए गए हैं। पहला, इसमें फालतू कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं है। दूसरा, यात्री सभी श्रेणी की सीट उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, टिकट बुकिंग करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होमपेज पर भी नई वेबसाइट का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसकी आसान प्रतिक्रिया पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज पूरे देश में शुरू हो गई है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा श्रद्धालुओं को दर्शन देते हुए श्री गुंडिचा मंदिर जाते हैं। ये भगवान जगन्नाथ की मौसी का निवास स्थान माना जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में ठहरते हैं। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हीं रथों पर श्री मंदिर लौटते हैं, जिसे बहुधा यात्रा या वापसी रथ यात्रा कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध ये रथ यात्रा अटूट आस्था, विश्वास और भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करती है और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। उन्होंने भगवान से सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी

0: दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान हफ्ते में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गई हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बेहद अहम खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली टैंकर को रोक दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत करने की कोई योजना नहीं है। भारत और बेल्जियम व्यापार और निवेश, हरित ऊर्जा, परिवर्तन, नवाचार और प्रौद्योगिकी, संपर्क, रक्षा, सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ साथ लोगों में परस्पर आदान प्रदान जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। रविवार को फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गार्डन ने पहला गोल किया। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप का खिताब जीता था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे साहित्य की कार्यक्रम में एक वार्ता। वार्ता का विषय है भिखारी ठाकुर और उनकी रचना धर्मिता। वार्ताकार हैं डॉक्टर मृत्युंजय सिंह।

भिखारी ठाकुर और उनकी रचना धर्मिता। भिखारी ठाकुर पिछली सदी के विख्यात नाटककारों में से एक थे। पाठशाला में बैठकर उन्हें व्यवस्थित शिक्षा तो नहीं मिली थी, फिर भी वे लोक जीवन और लोक कला के विशेषज्ञ थे। राहुल सांकृतायन ने उन्हें अनगढ़ हीरा कहा था। उनकी नाट्य प्रतिभा को देखते हुए हिंदी के विख्यात नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उन्हें भरत मुनि का वंशज कहकर संबोधित किया था। सन 1971 तक भिखारी ठाकुर बड़े मनोयोग से जीवन में धस कर लोक जीवन की त्रासदी का आख्यान रचते रहे। जनता के दुख और क्लेश को, उनके झूठ और फरेब को, उनके जीवन यथार्थ को अपने नाटकों और गीतों में पिरोकर मंच से उन्हें दिखाकर रुलाते और हंसाते रहे। भोजपुरी भाषी जनता के बीच सामाजिक सांस्कृतिक चेतना की लौ जगाने वाले कबीर के बाद वे पहले संस्कृत कर्मी थे। लोक कलाकार भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर सन 1887 को बिहार के छपरा जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था। भिखारी ठाकुर की लोकप्रियता के कारण उनकी तुलना कभी शेक्सपियर से की जाती है, कभी विद्यापति से, तो कभी भारतेंदु से। इस तुलना के पीछे कोई आलोचकीय विमर्श न होकर लोक मानस में बैठे उनके प्रति सम्मान का भाव ही है। समाज के निचले तबके के गरीब परिवार में जन्मे भिखारी ठाकुर को बचपन से ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने प्रारंभ में नाई के अपने जातिगत पेशे से जुड़कर भी जीवन को देखा, किंतु जातिगत पेशे में रहकर जीना उनके लिए संभव न था। भिखारी ठाकुर को जो समाज मिला था वह सामंती संस्कारों में डूबा हुआ समाज था। गुलामी का दंश झेल रहे देश का सामंती समाज जात भेद, ऊंच नीच, नारी उत्पीड़न, शोषण, अशिक्षा, पिछड़ापन जैसे कई रोगों से आक्रांत था। भिखारी ठाकुर ने इन अमानवीय स्थितियों को बड़े नज़दीक से देखा और भोगा था। उनके भीतर का कलाकार बेचैन था, छटपटा रहा था। वे अपना गांव छोड़कर पड़ोस के गांव फतनपुर में जा बसे, पर वहां भी वे चैन

नहीं रह सके। वे अपने गांव कुतुबपुर लौटे और परिवार को वहीं छोड़कर बंगाल चले गए। बंगाल प्रवास में उन्होंने रोजी रोटी की तलाश में गए पूर्वियों के कठिन जीवन को करीब से देखा और व्यथित होकर कुछ समय बाद अपने गांव लौट आए। जिस प्रकार चीनी भाषा के विख्यात रचनाकार लुशुन अपने देशवासियों के उद्धार के लिए जापान से चीन लौट आए थे। भिखारी ठाकुर बड़े सहज मनुष्य थे, भक्त स्वभाव के आदमी थे। गोस्वामी जी का रामचरितमानस उनकी प्रिय पुस्तक थी, हमेशा अपने पास रखते थे। अपने गांव में रामलीला का मंचन तो किया, किंतु उनके भीतर का नाटककार संतुष्ट नहीं था। परदेश गए पियऊ के बिछोह और अकेले इस भवसागर को पार करने वाली औरतों के अथाह दुख को व्यक्त करने के लिए उनका कलाकार अभिव्यक्ति का रास्ता ढूंढ रहा था। अपने गांव घर की औरतों के इस दुख को अपने भीतर जज्ब किए वे नाच मंडली के गठन और मंचन की यात्रा पर चल पड़े। उनके जीवनीकारों का कहना है कि भिखारी ठाकुर के निर्माण में रामानंद सिंह, बाबूलाल और मंतुर्नी देवी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। रामानंद सिंह उनके लंगुटिया यार थे, सखा थे, सुख दुख में हमेशा साथ रहकर उन्हें प्रोत्साहित करते रहे। भिखारी ठाकुर भी उन्हें अपना राम मानते थे। बाबूलाल भिखारी ठाकुर के दूर के रिश्तेदार थे, जिनको नाच मंडली के गठन और संचालन का अच्छा अनुभव था। संगीत के भी जानकार थे। भिखारी ठाकुर के भीतर छिपे कवि नाटककार को तराशने में उन्हीं का हाथ था। अपनी सृजन यात्रा में भिखारी ठाकुर जब जब सुस्त हुए, बाबूलाल ने उनकी रचनाशीलता को गति और दिशा प्रदान की। मंतुर्नी देवी भिखारी ठाकुर की पत्नी थी, जो हमेशा साथ रहकर जीवन का सही पाठ पढ़ाया, बिना झुके जीवन की चुनौतियों का सामना करने का मंत्र दिया। अपने अंतरंग मित्रों और संबंधियों के सहयोग से भिखारी ठाकुर ने जीवन सत्य, कला सत्य और सामाजिक यथार्थ की दृष्टि अर्जित की और अपनी रचना धर्मिता को समृद्ध किया। भिखारी ठाकुर की रचना धर्मिता बिजोड़ थी। वे आजीवन सक्रिय रंगकर्मी और रचना धर्मी बने रहे। अपनी गहरी अंतर्दृष्टि से आसपास के जीवन यथार्थ को केंद्र में रखकर उन्होंने जिन नाटकों की रचना की वे हैं विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, कलयुग प्रेम, राधे श्याम बहार, विधवा विलाप, गंगा स्नान, पुत्रबद्ध, गबर घिचोर, विरह बहार, नकल भाण के निटुआ और ननंद भौजाई। इन 12 नाटकों के अलावा यशोदा सखी, धुबिया धुबिनिया जैसे गीत कवित और भजन कीर्तन की लगभग दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हैं। वैसे तो उनके सभी नाटक चर्चित हुए, लेकिन जिन 3 नाटकों को विशेष रूप से सराहा गया वे हैं विदेशिया, बेटी वियोग और गबर घिचोर। लेकिन जिस नाटक ने सबसे ज़्यादा लोकप्रियता अर्जित की वह है विदेशिया। भिखारी ठाकुर के नाटकों का प्राण है स्त्री जीवन की पीड़ा और उसको व्यक्त करने वाले लोक प्रचलित धुनों में रचित गीत। उनके नाटक गीत कवित से गति और जीवन पाते हैं, इसीलिए उनके नाटकों को कुछ लोग गीत नाटिका भी कहते हैं। बिरहणी नायिका प्यारी सुंदरी, विदेश गए नायक परदेशी, संदेशवासक बटोही और प्रदेश में नायक की प्रेसी रंडी, मात्र 4 पात्रों के माध्यम से भिखारी ठाकुर ने विदेशिया में जिस मार्मिक कथानक का सृजन किया है उसमें मानवीय संवेदना और कलात्मकता का अद्भुत संयोग है। प्रदेश गए पतियों के इंतजार में एक स्त्री का जीवन मिट्टी की भीत की तरह प्रत्येक बरसात में किस तरह छिजता है, इसको भिखारी ठाकुर ने बड़े ही सजग हाथों से पकड़ा है। कुछ निर्धन बाप कभी मजबूरी में, कभी पैसे के लिए शादी के नाम पर अपनी बेटी को बेच देने जैसे निर्मम कार्य कर डालते हैं, इसको कथा बनाकर भिखारी ठाकुर ने बेटी वियोग की रचना की। यह भोजपुर बलिया और छपरा के भोजपुरी समाज का एक ऐसा कोड़ है जो आज भी कायम है। स्त्री जीवन की इस त्रासदी को भिखारी ठाकुर ने जिस प्रभावशाली रंग भाषा में रचना की है उसको देखकर पूरा हिंदी समाज हिल गया था। भोजपुरी भाषी जनता ने बेटी बिलाप को एक नया नाम दिया, बेटी बेचवा। बेटी बेचना का अपराध मजबूरी में ही सही, एक बार होरी से भी हो गया है, लेकिन गोदान का होरी जिस ढंग से पश्चाताप करता है वह प्रसंग गोदान का सबसे मार्मिक प्रसंग माना जाता है। प्रेमचंद की दृष्टि इस समस्या पर पहले से थी। अपने 3रे महत्वपूर्ण नाटक गबर घिचोर से भिखारी ठाकुर ने देश के बड़े बड़े नाट्य आलोचकों को सकते में डाल दिया था। अपने जीवन,

0: अपना शरीर और कूख पर स्त्री का अधिकार है या स्वामी पुरुष का, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कल भी बहस के केंद्र में था और आज भी है। नारीवादी आंदोलनों और स्त्री विमर्श के दौरान प्रायः पढ़े लिखे लोगों के बीच यह प्रश्न उठता रहा है। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लगभग अशिक्षित भिखारी ठाकुर ने 50 के आसपास अपने नाटक में इस विषय को उठाते हैं और व्यंग्यपूर्ण तर्कों से पुरुष के पुरुषत्व के अहंकार की धज्जियां उड़ाते हैं। भिखारी ठाकुर की इस प्रगतिशीलता को देखकर हिंदी के बड़े बड़े लेखक आलोचक चकित हो जाते हैं। यही नहीं, आश्चर्य की बात यह भी है कि जर्मन भाषा का विख्यात नाटककार बर्तोल्ड ब्रेख्त, जो उन्हीं के समकालीन थे, अपने एक नाटक द कॉकेशियन चौक सर्किल का थीम यही बनाया था। क्या दो रचनाकार एक साथ एक ही विषय पर सोच रहे थे? विचार और संवेदना की दुनिया में यह संयोग कभी कभी घटित होता है। संयुक्त परिवार के टूटने का दुख जितना प्रेमचंद को था, उतना भिखारी ठाकुर को भी है। उसकी टीस प्रेमचंद की कथा साहित्य में पाठक महसूस करते हैं। भिखारी ठाकुर ने इसी विषय पर अपना नाटक भाई विरोध लिखा है। इस प्रकार भिखारी ठाकुर ने अपने स्वदेशपूर्ण नाटकों से भोजपुर क्षेत्र में प्रचलित लौंडा नाच शैली को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। भिखारी ठाकुर के नाटकों के ताने बाने में संगीत की अहम भूमिका होती है। यह लोक कंठ से गाया जाने वाला लोक संगीत है जो आनंद में नहीं डुबोता, बल्कि धीरे धीरे सिवान के उस छोर पर ले जाता है जहां ग्रामीण जनों की पीड़ा स्वर लहरी के साथ रेंगती रहती है। यह मूल्यों की जमीन है जहाँ पर दुख कातरता के साथ धीरे धीरे एक नए मनुष्य का निर्माण होता है। हिंदी के वरिष्ठ कवि केदारनाथ सिंह ने रचनाशीलता में गहरे डूबकर भिखारी ठाकुर को एक व्यापक फलक पर अपनी कविता में याद किया है। कुछ पंक्तियां हैं इस तरह: एक सांझ से दूसरी भोर तक, कभी किसी बाजार के मोड़ पर, कभी किसी उत्सव के बीच की खाली जगह में अनवरत चलता रहा वह अजब बेचैन सा चीख भरा नाच जिसका आजादी की लड़ाई में कोई जिक्र नहीं। पर मेरा ख्याल है चर्चिल को सब पता था, शायद यह भी, कि रात के तीसरे पहर जब किसी झुरमुट में ठनकता था गेहूं तो नाच की किसी अंधेरे कोने से धीरे धीरे उठती थी एक लंबी और अकेली भिखारी ठाकुर की आवाज, और ताल के जल की तरह हिलने लगती थी बोली की सारी सोई हुई क्रियाएं। और अब यह बहस तो चलती ही रहेगी कि नाच का आज़ादी से रिश्ता क्या है, और अपने राष्ट्रगान की लय में वह ऐसा क्या है जहां रात बिरात जाकर टकराती है विदेशिया की लय।
1: भिखारी ठाकुर और उनकी रचना धर्मिता, इस विषय पर अभी आपने ये वार्ता सुनी। वार्ताकार थे डॉक्टर मृत्युंजय सिंह। साहित्य के कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए डॉक्टर चंदन कुमार से उनका काव्य पाठ।
2: हिंदी हम सभी की जान है, भाषा की ये पहचान है। हिंदी राष्ट्र की आंख है, विद्वानों की ये नाक है। हिंदी पर हमें नाज है, हिंद की ये सरताज है। हिंदी से करिए प्यार सभी, इसे बनाइए यार सभी। बहुत काम की है ये चीज, सबको सिखाती है अच्छी तमीज। इससे जिसने भी मिलाया हाथ, जीवन भर दिया इसने साथ। औरों को भी ये बनाती है मित्र, उज्जवल करती है सबका चरित्र। इसकी पूरी दुनिया में है साख, इससे फायदे हजारों लाख। तो आइए करें इसका सम्मान, करिए सभी हिंदी का गुणगान। हमारी हिंदी भाषा रहे अमर, दुनिया में ये करे भ्रमण।

0: श्रोताओं, अभी आप चंदन कुमार से उनका काव्य पाठ सुन रहे थे और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: इस संदेश के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम साहित्यिकी में। साहित्यिकी कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए नर्मदेश्वर से उनका काव्य पाठ।
2: मेरी पहली कविता है मनौती। ऐसा होता कटनी तक मैं जीता होता, सुबह सवेरे मुंह अंधेरे ही उठ जाता, बैलों की जोड़ी सहलाता, सानी पानी देता, उनको खूब खिलाता, जब तक कि सूरज का रथ ऊपर उठाता, आसमान में दौड़ लगाता, सोने सा बिहान आ जाता, मेरे बैलों के सींगों को खूब चूमता नहीं अघाता। उन्हें खोलकर मैं उनके पीछे हो लेता, वे जुआठ में कंधे देते, मैं हल से धरती बिदारता, जैसे भूखा बेजुबान बच्चा माँ की छाती कूरे देता, फाड़ फाड़ देता गुस्से में आंचल उसका। धरती की छाती पसीजती, अंकुर आते, पौधों में परिणत हो जाते, हवा दौड़ती दिन भर उनसे होकर खुशखबरी ले आती, पके अन्न से लदी फसल नित मैं निहारता, हंसुआ की दाती चमकाता, रस्सी बढ़ता, बेटे नाती पोतों के उठने से पहले ओस रौनता, हाँक लगाता, मैं चल देता कटनी करता, खेत पाट कर गोधूली तक वापस आता, बैलों की जोड़ी थपकाता, विनती करता, वनस्पति माँ घर भर देती, धरती अच्छी फसल उगलती, फसल अगर अच्छी होती तो कटनी बाद बनारस जाता, गंगा जी में खूब नहाता, विश्वनाथ का दर्शन करता, मन ही मन कहता बाबा से और मनाता, कर्ज मुक्त हो जाता तो सचमुच कहता हूँ, तेरे नंदी से प्यारे अपने बैलों के, सोने से मैं सींग मढ़ाता, काश अगर ऐसा हो पाता। दूसरी कविता है जिजीविषा। मौत मधुमक्खी सी चक्कर लगाती है, सोते में सिरहाने आकर जगाती है, रोज भिन भिनाती है, जल्दी कर, लेकिन मैं डरता नहीं, उसे हाँक देता हूँ, खैनी फाँक लेता हूँ। अभी अभी आया हूँ, दिन दिन भर दौड़ दौड़ पत्थर जुटाया हूँ, वैसे तो करगा में पत्थर की कमी नहीं, पर उन्हें उठा लाना इतना आसान नहीं, हाँ यही बुढ़ापा है, हाँफ छूट जाती है। उन दिनों जमानी में क्या थकान जाना नहीं, पत्थर की छाती पर पांव रोप घंटों तब, घर न थक चलाता था जब तक कि चट्टान में दरार ना दरक आए, पत्थर तब पानी सा आर पार दिखता था, सचमुच चट्टानों का मर्म मैं समझता था। याद मुझे आते दिन बाबूजी जिंदा थे, साथ साथ दोनों हम तड़के उठ जाते थे, छेनी घन उठाते थे, जाते थे पहाड़ रोज, पत्थर तोड़ लाते थे, रोटी जुट जाती थी, बचा कुछ न पाते थे। बाबूजी बूढ़े हुए, बैल थके, लेकिन वे मरने तक लगातार राम काज करते रहे, मेरे लिए एक घर बनाना वे सोचे थे, सपना सपना ही रहा, सोचा कब होता है। फूस की पलानी के नीचे था पुआल बिछा, रात थी दिवाली की, दिए बुझ गए थे सभी, सिर्फ बड़े कुएं पर दीप एक जलता था, बाबूजी बुलाए थे, पास बैठाए थे, मुश्किल से आप बीती अपनी सुनाए थे, मंदिर हो कुआं हो या बड़ी हवेली हो, जिंदगी भर सबके लिए पत्थर ही ढोया, पर मूर्ख था अपना घर बना नहीं पाया मैं, सबके लिए मंदिर भगवान कहाँ सबके लिए, सबके लिए कुआं कहाँ, पानी कहाँ सबके लिए, पक्की हवेली की जमीन जमींदारी है, सबके लिए फूस कहाँ पत्थर छप्पर कहाँ सबके लिए, ऐसा क्यों होता है, मेहनत का फल हरदम खट्टा ही होता है, लेकिन दिन बदलेंगे सबके लिए घर होगा, मैं नहीं बना पाया तुम उसे बनाओगे, अंतिम लव भभकी थी और सो गई थी सांस, बूढ़े थे बैल मेरे टूटी थी गाड़ी बिकी और मैं जवान हुआ कंधे पर चढ़ा जुआ, सचमुच ही दिन बदले राज से स्वराज मिला, टूटी जमींदारी प्रथा देश आज़ाद हुआ, लेकिन कहाँ कुछ

बदला और हम गरीब हुए। पत्थर ही तोड़ा सदा पत्थर कट अब भी हूँ, कोशिश आजीवन किया फेरे में अब भी हूँ कि कैसे घर जोड़ूं। मरने से पहले मैं अपना एक घर छोड़ूं, लेकिन भूख सुरथा थी प्यास थी अगस्त वाली। जुट गए हैं पत्थर अब कल ही शुभ मुहूर्त है, नींव डालनी है मुझे काम कल लगाना है, इसीलिए कहता हूँ मौत अभी जाओ तुम, दीवारें उठने तक मत आना, छाजन छाने तक रुकी रहना, अगली दिवाली तक सब कुछ बन जाएगा, छोटा सा घर होगा अपना कहलाएगा, गाय के गोबर से आंगन लिपाऊंगा, दीवारें चूने से पोत चमकाऊंगा, कालिख से छोटे बड़े

0: जाओ तुम, दीवारें उठने तक मत आना, छाजन छाने तक रुकी रहना, अगली दिवाली तक सब कुछ बन जाएगा, छोटा सा घर होगा अपना कहलाएगा, गाय के गोबर से आंगन लिपाऊंगा, दीवारें चूने से पोत चमकाऊंगा, कालिक से छोटे बड़े हाथी बनाऊंगा, गेरू से लाल लाल घोड़े सजाऊंगा, पोते को कंधे पर अपने बिठा कर के ठीक दरवाजे पर स्वागतम लिखाऊंगा, तारों की आंखों से बाबूजी झांकेंगे, जगमग घर देख मगन खैनी ठोक फाकेंगे, मौत अभी जाओ तुम फिर आना देखेंगे। अगली कविता है पानी पानी। पानी पानी इतना पानी, छोटी नदी जवान हो गई, खेतों में दौड़ी मनमानी। पानी पानी इतना पानी कि मकई की खड़ी फसल को याद आ गई नानी। पानी पानी इतना पानी, रोते रोते आँख फूट गई, चुप न हुई खपरेली छानी। अंतिम कविता है एक पानी बिना। एक पानी बिना बियाबान हर सीवान हे भगवान, एक पानी बिना मरते धान अटके बालियों के प्राण हे भगवान, एक पानी बिना मुश्किल में पड़ी है जान, नहीं आसान खतरे से बचाना आबरू ईमान हे भगवान, एक पानी बिना हम किसान कैसे भर सकेंगे कर्ज या की लगान हे भगवान।
1: नर्मदेश्वर से अभी आप सुन रहे थे उनका काव्य पाठ। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है और साहित्य के कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अनिल कुमार पांडे अकेला से उनका काव्य पाठ।
2: हक है तेरी जिंदगी इसकी।

रक्त जब शामिल है तुझ में, जब कुंवर की वीरता शामिल है तुझ में, क्यों विवेकानंद की संतान हारे।

0: चला चल।
1: चल चला चल ओ मुसाफिर चल चला चल। अभी आप सुन रहे थे अनिल कुमार पांडे अकेला से, उनका ये काव्य पाठ। इसी के साथ हमारा आज का साहित्यिकी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 10:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे लोक माधुरी कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी लोकगीत। तो सबसे पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं मुन्ना सिंह की आवाज़ में मनोज पुरुषोत्तम का लिखा हुआ एक भोजपुरी लोकगीत, जिसकी धुन बनाई है मुन्ना सिंह ने और एल्बम है आधी आधी रतिया के।
0: का पा

तोहरा चांद जैसन रूप के बखान का करी। मुन्ना सिंह की आवाज़ में अभी आपने सुना आधी आधी रतिया के इस एल्बम का ये भोजपुरी लोकगीत। और अब कार्यक्रम में लीजिए सुनिए भरत शर्मा व्यास की आवाज़ में डॉक्टर राम रक्षा मिश्रा का लिखा हुआ ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत, जिसकी धुन बनाई भरत शर्मा व्यास ने और एल्बम का नाम है राजा पिया जानी।

भारत शर्मा व्यास की आवाज़ में अभी आपने सुना राजा पिया जानी, इस एल्बम का ये भोजपुरी एल्बम लोकगीत। और अब कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए मदन रॉय की आवाज़ में एक निर्गुण गीत। संत कबीर की रचना है, संगीत है भरत शर्मा व्यास का।

श्रोताओं, इसी भोजपुरी एल्बम लोकगीत के साथ ही हमारा आज का यह लोक माधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं और अब समय है कि हम आपको सुनवा दें रसथार कार्यक्रम में कुछ भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। तो चलिए सबसे पहले सुनवाते हैं आपको मुकुल सिंह की आवाज़ में अशोक शिवपुरी का लिखा हुआ ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग, जिसकी धुन बनाई विनय बिहारी ने है और एल्बम है मौसम सुहावन।

बालम छोड़ी ना कलैया, देखी भोर हो गई। जी हाँ, अभी आप ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग सुन रहे थे पल्लवी जोशी के स्वर में। सूरज कुमार निर्मल का लिखा हुआ ये एल्बम सॉन्ग था, जिसकी धुन बनाई थी रोहित कुमार बॉबी ने, और एल्बम का नाम था बालम छोड़ी ना कलैया। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सासाराम केंद्र और रसधार कार्यक्रम में। लीजिए अब सुनिए ये अंतिम एल्बम सॉन्ग राज सिंह की आवाज़ में। हरिओम बादल का लिखा हुआ ये एल्बम सॉन्ग, संगीत गुलाम रवि का है और एल्बम है सैयां देखी तोहके जुड़ी थीं।

राज सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये भोजपुरी एल्बम सॉन्ग। और अब इसी के साथ हमारा आज का रसधार कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी सासाराम से बोल रहे हैं FM 103.4 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में पूर्वाह्न के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी विविध भारती का प्रसारण, जिसे हम अपने सासाराम केंद्र से रिले करने जा रहे हैं। तो सुनते रहिए आकाशवाणी का सासाराम केंद्र, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आप सभी का आज का दिन शुभ हो। दीजिए इजाज़त मुझे, नमस्कार।

0: estarán.
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

दफे और साथियों को आप सुन रहे थे अमर अकबर एंथनी, इस फिल्म में आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बेगम अख्तर को अभी आपने सुना।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम रंग तरंग।

0: आप सुन रहे थे बेदर्दी से प्यार का, इस एल्बम का गीत जुबिन नौटियाल की आवाज में। मनोज मुंतशिर के बोल थे, मीत ब्रदर्स का संगीत था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट

0: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्फ्लेंस कहते हैं।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
4: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
5: और आ गया।
4: एक और आ गया।
6: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
7: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
3: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर सुनिए।

फिल्म बवंडर का ये गीत आपने सुना ऋचा शर्मा की आवाज में, हरिराम आचार्य की रचना थी, विश्वमोहन भट्ट का संगीत था।

0: भूपेंद्र की आवाज़ में फिल्म बाजार की यह गजल आप सुन रहे थे। बशर नवाज़ की लिखी यह गजल थी, खयाम की तर्ज थी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: ये एल्बम थी याद पिया की आने लगी। फाल्गुनी पाठक की आवाज में समीर की रचना आपने सुनी। ललित का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई।

0: समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर और निफ्टी 75 अंक बढ़कर 24,154 पर पहुंच गया। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, इस कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आनंद बख्शी की रचना, लता मंगेशकर, इला अरुण की आवाजें, फिल्म लम्हे का ये गीत आपने सुना। बेताब फिल्म का ये गीत आपको सुनवाते हैं, आवाजें लता मंगेशकर, शब्बीर कुमार की, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज।

फिल्म बेताब में लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजें आपने सुनी। इसके पहले श्रोताओ, हमने आपको लम्हे फिल्म का गीत सुनवाया था। उस गीत में तर्ज थी शिवहरी की। फिल्म मोहरा, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत पीयूष शाह का।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना, ना।

0: बपिलाई दी की तर्ज अनजान के बोल किशोर कुमार आशा भोसले के युगल सुरों में नमक हलाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध

लता मंगेशकर की आवाज में वर्मा मलिक का लिखा गीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। फिल्म महान। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें हैं। अनजान की रचना आरडी बर्मन की तर्ज।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज़ में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

लता मंगेशकर और सखियों को आप सुन रहे थे फिल्म चिराग में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। यादों की महफिल ये कार्यक्रम श्रोताओं यहीं संपन्न होता है।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और साथ ही स्वागत करते हैं उन श्रोताओं का भी जो आज हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, यानी नए श्रोताओं का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओ, गीतों की पुरवाई बनकर विविध भारती आपके घर आंगन तक पहुँचती है। तो शुरू हो चुका है आपके रेडियो सेट पर विविध भारती का नायाब कार्यक्रम सुरीला सफर। चलिए चलते हैं साथ साथ इस सफर पर, देखते हैं कौन कौन से गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो हमारे फेसबुक के श्रोताओं ने तो पढ़ा ही है क्या इबारत हमने आज लिखी है, लेकिन रेडियो श्रोताओं के लिए भी हम पढ़ देते हैं आज की इबारत। धनक टूटी चंद्रमा की सीनी में बिखरने लगी, सीढ़ी देखी मैं चढ़ी तो हुस्न परी उतरने लगी, घटती गई उम्र बढ़ते हुए कदम के साथ, फिर लड़खड़ाया जो इस सीढ़ी पर बचपन, बढ़कर थाम लिया परी ने मेरा हाथ, नैन बदरा दिल भंवरा हुआ पास बिठाई कहने लगी, अपने ही घर में मेहमान की तरह आई, क्या बेघर हो गई कमाते कमाते, मेरे खामोशी सुन चुराते फूल कांटों की लड़ी चली, सब बेरंग फिर रंग हुआ कुछ यूं जादू की छड़ी चली, वक्त पीछे हुआ हम आगे जब चुराए आम ठाकुर के ताक में छुपा दिए, सीढ़ियों पर कभी बातें तो कभी पंच गट्टे का खेल, इन पर चढ़ती उतरती चंदन सी धूप को देखा, बारजे दरीचे यही झटकते जुल्फों से बूंद के मोती बरसे, और कभी छत पर चांद का झूमर देखा, मकान चढ़ के जिसपे हवेली हुआ, छुपी खेली भागी गिरी बिन साजन झूला झूल गई, कुछ यूं चढ़ी सीढ़ी मैं आज के उतरना ही भूल गई। तो ये थी श्रोताओं आज की इबारत, और बहुत सारे श्रोताओं ने हमें अपने पसंदीदा जो शब्द इस इबारत में हैं उनके गीत लिखे हैं। तो आपको ये भी बताना है कि सीढ़ी से कौन कौन से गीत आपको याद आ रहे हैं, यानी जिन गीतों में सीढ़ियां भी दर्शाई गई हैं। वैसे सीढ़ियां जो हमें मंजिल तक पहुंचाती हैं, जिन पर उतरते चढ़ते खेलते, कभी तालाब के किनारे भी आपने देखा होगा कि सीढ़ियां बनी होती हैं, नदियों के किनारे सीढ़ियां होती हैं, यहां बैठ कभी बातें करते तो कभी कॉलेज की सीढ़ियों में पढ़ते, समय बीत जाता है यादें धुंधली पड़ जाती हैं, घरों की जिन पे वक्त बिताया सीढ़ियों पर वो भी यादें धुंधली पड़ जाती हैं। तो उन घरों उन छतों उन सीढ़ियों को अक्सर जिन्हें हम भूल चुके होते हैं, आज सुरीला सफर कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं ऐसी ही बातों को और सीढ़ियों की यादों को। तो आप भी अपनी यादें हमसे साझा कीजिए। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में एक बार फिर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

खूबसूरत अभिनेत्री साधना और राजेंद्र कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था। मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। आपको फिल्म बतानी है श्रोताओं, और एक हमारी श्रोता लिखती हैं कि यादों की सीढ़ियां कभी पुरानी नहीं होती। आज की इबारत बचपन अपने घर मासूम शरारतों और बीते सुनहरे लम्हों की ऐसी सैर कराती है जहां वक्त ठहर सा जाता है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाई थी। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि आज की इबारत पढ़कर देखकर हमें बचपन के दिन याद आ गए हैं। और एक और हमारी श्रोता लिखती हैं कि दिल का भंवर करे पुकार, दम भर जो उधर मुंह फेरे। और एक शेर सुनाता हूं, और बहुत सारे गीत इन्होंने अपने पसंद के लिखे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गद्यांश में जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का जिक्र है, बाल्यकाल से यौवन तक का सफर और ढलती उम्र को उपमा के साथ दर्शाया गया है। स्मृतियों के वातायन में वातायन जब खुलते हैं तो जीवन का प्रथम पहर एक सुरम्य चित्रपटी की भांति उभर आता है। बचपन जीवन की वो भोर है जहां धूप भी मखमली लगती है। वह एक ऐसा कालखंड है जब समय तितलियों के पंखों पर बैठकर उड़ता है, जैसे कि कदम यौवन की दहलीज पर पड़ता है तो जीवन का आसान चटक रंगों से भर जाता है। आकांक्षाओं का उतुंग शिखर एक चेतना का एक नया विस्तार छूने की बात होती है। बचपन हमें सहजता सिखाता है तो यौवन हमें संघर्षों से टकराने का साहस देता है। आज जब जीवन की ढलती शाम में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि वो बचपन की नादानी और यौवन की रवानी ही थी जिसने हमारे भीतर के मनुष्य को जीवित रखा है। एक और श्रोता ने लिखा है, इन पुरानी सीढ़ियों पर आज भी कदमों के वो अनगिनत निशान बाकी हैं जो कभी दौड़ भाग कर छुपने छुपाने की गवाही देते हैं। वक्त की धूप और छांव इन पर बैठकर ही तो गुजारी है। जब भी इन घुमावदार डंडों पर चढ़ती हूं तो लगता है जैसे वक्त का पहिया उल्टा

हुक्म गया हो। चौखट से झांकती वो माँ की ममता और आंगन में गूंजती वो बचपन की किलकारियां आज भी इन दीवारों में गूंजती हैं। इन सीढ़ियों की हर एक दरार में जैसे मेरा बीता हुआ कल महफूज है, जहां उतरने का तो कभी ख्याल ही नहीं आया। और बस इन्हीं यादों के सहारे ऊपर आसमान छूने को चाहत रही। आप ये बताएं श्रोताओं कि जब बीते दिनों की बातें हम करते हैं, जब सीढ़ियों की बातें करते हैं, जब उन घरों की बातें करते हैं जिनकी यादें जो हैं वो धुंधलके की तरह हो चुकी हैं, तो ऐसे घरों में वो कौन था जो आपको सबसे प्यारा लगता था और किसकी यादें सीढ़ी से वाबस्ता हैं आपको बतानी है।

ये कौन से अभिनेता हैं श्रोताओ जो पियानो पर नजर आते हैं? मुकेश की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे देवर फिल्म से। आनंद बख्शी के बोल थे रोशन की तरह से, और हमारे श्रोताओं ने जो पहले वाला गीत है उसे पहचाना है। मेरे महबूब फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर इबारत लिखी है आपने और हम अपने बचपन को याद कर रहे हैं जिसे हम बहुत दूर छोड़ आए हैं। अब तो बस यादें ही हैं। गाँव में जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो हम पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक खेलते, और जब मन करता तो गांव तालाब में डुबकी लगाते, बस यही काम रहता था उन दिनों। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज बचपन नादानियां और शरारतों पर आधारित गीत सुनवाए जाएंगे। एक और श्रोता ने लिखा है, चंदन सी चढ़ती उतरती धूप जीवन के उतार चढ़ाव सुख दुख धूप छांव की को परिभाषित करती है। चंदन शीतलता और महक का प्रतीक है जो हमें प्रेरणा देता है कि जीवन में चाहे सुख हो या फिर दुख, छांव हो या धूप, यदि अपने मन को शांत और सुगंधित रखा जाए

तो हर परिस्थिति में आनंद प्राप्त किया जा सकता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज का पैराग्राफ समय की भागदौड़ में व्यस्त युवा लड़कियों की जिंदगी को बयान करता है। जिंदगी की आपाधापी में एक बचपन और उसके बाद किशोरावस्था निकल जाती है, पता ही नहीं चला। आज फ्लैशबैक में वो गुजरा हुआ समय याद आ रहा है। एक और श्रोता लिखते हैं, वक्त पीछे रह गया और हम आगे। ये वाक्यांश जीवन से जुड़े हैं, गहरे दार्शनिक पहलू को बयां कर रहा है। बीतते हुए वक्त के साथ बचपन जैसे जैसे पीछे छूटता है, इस पल में हम जो भी कर गुजरते हैं उसकी यादें पल भर पल पल हमारे साथ जुड़ती जाती हैं। बचपन के खेल, संग साथी और बेखुशगवार क्षण या कोई दुख वाले लम्हे सभी हमारी यादों के गलियारे में दर्ज हुआ करते हैं। और ऐसे समय में अगर हम पीछे का समय थोड़ा सोचें तो सबसे अच्छा दोस्त कौन था? श्रोताओ, अगर आपको कोई दोस्त याद आता है जो आपके लिए, या घर का कोई भी व्यक्ति जो आपके लिए एक सीढ़ी की तरह था, जिसकी बातें सुनकर या जिसकी बातें मानकर आप अपनी मंजिल तक पहुंचे, तो ऐसी बातें भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और क्या आपने सांप सीढ़ी का खेल खेला है? अभिनेता किन अभिनेत्री के बारे में सोच रहे हैं श्रोताओं, आपको बताना है।

कुछ श्रोता लिखते हैं कि अभिनेता सुनील दत्त सोच रहे हैं अभिनेत्री साधना के बारे में। जी हाँ, मेरा साया फिल्म से ये गीत था, राजा मेहदी अली खां का लिखा, मदन मोहन का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज।

एक हमारे श्रोता ने लिखा है, मेरी नानी के वहां पत्थर से बनी काफी चौड़ी सीढ़ियां थी। एक सीढ़ी घर के अंदर थी जो रसोई घर में खुलती थी। एक और श्रोता लिखते हैं, बचपन में सीढ़ियों की रेलिंग पर बैठकर बहुत फिसलते थे। जी हाँ, लेकिन ये तो बड़ा खतरनाक भी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो हमने ये भी देखा था कि झूला भी डाल देते थे। ये उसी तरह है, बिल्कुल खतरनाक होता है। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो बिल्कुल ना करें। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि लिखते हैं कि सीधे ये जुल्फ अगर खुलकर बिखर जाए तो अच्छा, इन गीतों को याद किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ियां सिर्फ चढ़ने उतरने के लिए नहीं होती, न जाने कितने रूप हैं सीढ़ियों के। जब हम यादों की सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो बचपन से लेकर न जाने कितने यादों के झरोके खुल जाते हैं। चांद की सीढ़ी पर चढ़कर कभी आसमान को निहारो तो प्रकृति के नजारे में खो जाने को जी करता है। पक्षियों के कलरव और वृक्षों की हरियाली में मन रमने लगता है। ये सत्ता आनंदमयी और करुणामयी है। प्रकृति की सीढ़ी दिव्यता की सीढ़ी है जो हमारी चेतना में अंदर तक बसी है। बस जरूरत है इसे जानने की, समझने की, और जो धूल मन पर जमी है उसे हटाने की। एक और श्रोता ने लिखा है कि खूबसूरत इबारत स्मृतियों के उन अनमोल आंगन में ले जाती है जहां समय ठहर सा जाता है और जीवन अपनी सबसे निर्मल छवि में दिखाई देता है। सीढ़ियां यहां केवल ऊंचाई तक पहुंचने का साधन नहीं, बल्कि बचपन, अपनत्व, सपनों और आत्मीय रिश्तों की जीवंत पगडंडियां हैं। वर्तमान की भागदौड़ के बीच जब मन अपने पुराने घर की दहलीज पर लौटता है तो हर कोना, हर आहट और हर स्मृति फिर से रंगों से भर उठती है। जीवन की सबसे बड़ी संपदा वो क्षण है जो स्मृतियों में सदैव चंदन की सुगंध की तरह महकते रहते हैं। आपको ये सीढ़ी पहचाननी है कि ये जगह कौन सी है।

अगला गीत जो आप सुनेंगे श्रोताओ, उस फिल्म का नाम और संगीतकार आपको बताने हैं। अगर आपने फिल्म देखी है, जाना है, तो आप अदाकार और अदाकारा भी बता सकते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि सांप सीढ़ी का खेल बचपन में बहुत खेला है, आज विश्व सर्प दिवस भी है। जी हाँ। और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत ये तेरा घर ये मेरा घर, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, वो चांद खिला वो तारे हंसे, तमाम गीत इन्होंने हमें सुझाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कुतुब मीनार पर फिल्माया गया बेहतरीन गीत संगीत सचिन देव बर्मन जी का है और

सर्प दिवस भी है। जी हाँ, और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज के गीत तेरा ये तेरा घर ये मेरा घर, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, वो चांद खिला वो तारे हंसे, तमाम गीत इन्होंने हमें सुझाए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि कुतुब मीनार पर फिल्माया गया बेहतरीन गीत संगीत सचिन देव बर्मन जी का है, और भी कुछ आपको बताना है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिखा भी है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां हैं। जी हाँ, और सीढ़ियों पर जो गीत फिल्माए गए हैं श्रोताओं, वो बड़े ही यूनिक कहें या बड़े खूबसूरत और बड़े अलग से नजर आते हैं। ऐसे कौन कौन से गीत हैं जो आपको याद आते हैं तो आप बता सकते हैं। एक और श्रोता लिखती है कि सांप सीढ़ी बहुत खेली है बचपन में, और जब सांप काटकर हमें नीचे पहुंचा देता तब सीढ़ियां ही हमें ऊपर ले जाती। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी चार गीत की लिखी हुई इबारत में से दूसरा नंबर पर लिखा हुआ गीत भी शामिल, दिल का भंवर करे पुकार का राग सुनो, तो बहुत अच्छी बात है। एक और श्रोता ने लिखा है कि कुतुब मीनार की सीढ़ियां जो आजकल बंद कर दी गई हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी गणित की अध्यापिका बहुत प्रेरणादायक बातें बताती थी। संगीता जी, गणित के अध्यापकों की तरह बिल्कुल सरल, मतलब जैसे होते हैं गणित के अध्यापक, इन्होंने कुछ अजीब सा शब्द लिखा है, तो बहुत सरल थी वो और हास्य भाव में पढ़ाती और समझाती थी, बहुत याद आती हैं आज भी। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो स्कूल या कॉलेज में जब हम सीढ़ियों पर बैठा करते थे, और या तो फिर आपको ये भी जरूर याद होगा कि किसी के आम को लेना है खेतों से बाग से, तो एक की पीठ पर एक बैठकर भी सीढ़ी नुमा कुछ बना लिया करते थे और ऊपर पहुंच जाते थे, जिससे बड़े आराम से फल लिया जा सकता था। एक और श्रोता ने लिखा है, घर के भीतर खेले जाने वाला लोकप्रिय खेल सांप सीढ़ी बहुत खेले थे, अक्सर 90 वाला सांप, लंबा सांप, मेरी गोटी निकल जाता था। और एक और श्रोता लिखते हैं कि गांव लिखते हैं कि जब गांव में मिट्टी का कोठा वाला घर हुआ करता था तो उसमें बंसर की बनी सीढ़ियां होती थीं, पर उस पर चढ़ने में बहुत डर लगता था कि कोई एक आदमी पकड़ता था तब हम ऊपर चढ़ते थे। जी हाँ, वैसे अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में भी लकड़ी की सीढ़ियां होती हैं, और कश्मीर की ही वादियों में फिल्माया गया एक गीत है जिसमें जॉय मुखर्जी ढोलक बजाते हुए धीरे धीरे से सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सीढ़ी के पास रहते हैं और साधना भी नजर आती है। ये गीत क्या आपको याद आता है तो आप हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि बहुत खेला है सांप सीढ़ी और लूडो भी, आजकल तो मोबाइल पर उपलब्ध है, लेकिन वो पुट्ठे का गेम और गोटियां, उनकी तो बात अलग ही थी। तो कुछ एक और श्रोता लिखते हैं कि हमारी दादी जो घर में सबसे बूढ़ी थी, हमें तब नहीं पता था कि उनके लिए सीढ़ियां चढ़ना असंभव है। हम जब भी उनसे छत पर चलने की जिद करते तो वो पहले तो समझाती थी, फिर टाल जाती थी, घर में बाकी सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते, तब हम उनसे गुस्सा हो जाते। वैसे सीढ़ियां चढ़कर जाना, छत पे चांद देखना, और एक विशेष त्योहार भी है इससे जुड़ा हुआ, क्या आपको याद आता है तो आप जरूर लिखें।

अर्जुन की तर्ज थी, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। पुनर्मिलन फिल्म का ये गीत था। अमिता और जगदीप पर फिल्माया गया ये गीत था। मोहम्मद रफी की आवाज़ में इंदिवर की रचना थी। और अगले गीत की डिटेल आपको बतानी है श्रोताओं, फिल्म का नाम बताना है और गायक कलाकार के नाम आपको बतानी है। एक श्रोता ने लिखा है कि सीढ़ी से मुझे अपने मामा के यहाँ का घर याद आ गया, जहाँ हम बच्चे छुट्टियों में जाते थे और सुबह उठकर सब लोग सीढ़ियों पर लाइन से बैठ जाते थे, फिर वहीं बैठकर नाश्ता करते थे। जी हाँ, और इसी वजह से कि बच्चे तो सीढ़ियों पर ही खेलेंगे, उसकी साफ सफाई भी बहुत ही तरीके से की जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि पहले मकान बनाते समय पुराने लोग सीढ़ियां बनाने में पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, जिससे फिसलन नहीं होती थी, पर आजकल सीढ़ियां बनाते समय मार्बल पत्थर और टाइल्सों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फिसलने का खतरा ज्यादा होता है। जी हाँ, ये तो बहुत ही खास बात है श्रोताओं। तो सीढ़ियों पर जब चलना होता है तो बड़ा संभल कर चलना होता है, और इसी वजह से जो पुराने घरों में सीढ़ियां बनाई जाती थी वो जरा रफ होती थी, उनकी सुंदरता चाहे उतनी ना होती हो लेकिन उनमें गिरने का खतरा मतलब सेहत से जुड़ा खतरा कम हुआ करता था। और एक और श्रोता ने लिखा है कि आज भी जब फुर्सत के पल मिलते हैं, कुछ पल मिलते हैं, मैं चाय का प्याला लिए सीढ़ियों पर बैठ जाती हूँ। बस यूं ही बाहर के खूबसूरत नजारे, चारों ओर फैली हरियाली और बरसते बादलों को देखते हुए सुकून समेटने। एक और श्रोता ने लिखा है कि मेरी नानी के घर में आंगन की दीवार से लगी सीढ़ी थी और दीवार के पार नीम का वृक्ष था, जिस पर बहुत से पक्षी रहते थे। हम बस उसी सीढ़ी पर बैठकर उनको देखा करते थे। उनका कलरव सुनकर बहुत अच्छा लगता था। आपने क्या कुछ चुरा कर सीढ़ियों में चुपके चुपके खाया है, आप बता सकते हैं।

राज कपूर और रूतन पर फिल्म आया गया, ये गीत आप सुन रहे थे दिल ही तो है फिल्म से। और आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजें थी, रोशन का संगीत था, साहिल ध्यानवी के बोल थे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत एक छोटी सी कहानी के रूप में एक बेहद खूबसूरत और भावुक दृश्य काफे है। ये रचना बचपन, मासूमियत और वक्त के गुजरने के एहसास का एक मुकम्मल दस्तावेज है। यहां सीढ़ी को महज एक ढांचा नहीं बल्कि जीवन के सफर का एक जीवंत प्रतीक बना दिया है। ये रचना एक सी जादुई छड़ी है जो वक्त के पहिए को पीछे घुमा देती है। इसमें जहां एक तरफ बड़े होने का अकेलापन है, वहीं दूसरी तरफ बचपन की यादों की वो गर्माहट जो इंसान को फिर से जीने की ताकत देती है। जी हाँ, क्योंकि आजकल जब हम लौटते हैं अपने घरों की तरफ तो ये देखते हैं कि वो सीढ़ियां जिन पर कितना मतलब एक कह सकते हैं कि शोर सा रहता था, वो सीढ़ियां कैसी शांत पड़ी हुई हैं। और कई कई जगह तो ऐसा भी है कि ये सीढ़ियां टूट चुकी हैं। एक हमने आपसे सवाल पूछा था श्रोताओं, जॉय मुखर्जी के हाथ में ढोलक है और वो लकड़ी की सीढ़ी के तरफ होते हैं, तो ये गीत अगर आपको याद आ रहा है तो आप जरूर बताएं। और सीढ़ियों पर फिल्माया गया कौन सा गीत आपको बहुत सुंदर लगता है? और एग्जाम की पढ़ाई जब आप करते थे तो क्या आपने सीढ़ियों पर पढ़ाई की है, या फिर कॉलेज की जो यादें हैं वो आप साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि कल्पनाओं की एक परी उतरेगी और फिर वो बचपन से जवानी तक ले जाएगी, इन दिनों उसकी मस्ती में हम कैसे कैसे पड़ाव पार करते आगे बढ़ते रहे, जीवन के विभिन्न आयाम में गुजरती ये शामें ये रातें, कैसे कैसे लोगों से मिलाते रहे। ऐसी कुछ बातें होंगी दोपहर के सुरीले सफर में सुनते हैं। तो जी हाँ, ऐसी ये बातें हैं और आप अपनी बातें साझा भी कर सकते हैं। अगले गीत में आपको बताना है कि ये जो सीढ़ी पर अभिनेत्री नजर आ रही हैं ये कौन है।

अनोखी रात फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। परीक्षित, साहनी पर फिल्माया गया और सीडी पर जाहिदा नजर आती हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि यादों की सीढ़ियां कभी पुरानी नहीं होती। आज की इबारत बचपन अपने घर, मासूम शरारतों और बीते सुनहरे लम्हों की ऐसी सैर कराती है जहां वक्त ठहर सा जाता है और मन फिर से उन्हीं रंगों में खो जाता है जिनसे जिंदगी की खूबसूरत तस्वीर बनती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत देखकर पढ़कर हम अपने बचपन के दिन हमें याद आए हैं। और एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरे ख्याल से जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम और भंवरा बड़ा नादान रे, ये सब गीत इन्होंने सुझाए हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि पूरी इबादत में बचपन और शरारतें, घर आंगन सीढ़ियां हवेली छत झूला आम चुराना पंचगट्टे का खेल। जी हाँ, पंचगट्टे का खेल, ये खेल क्या आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ रहे हैं तो हमें जरूर लिखें। वैसे आपकी सहूलियत के लिए बता देते हैं कि जो सीमेंट की बनी गिट्टियां होती हैं श्रोताओं, उनसे ये खेल खेला जाता है। तो क्या आपने खेला है हमें आप बता सकते हैं। चांदनी रातें लिखती हैं आगे, चांदनी रातें और समय के पीछे छूट जाने का एहसास बहुत खूबसूरती से उभर कर आता है। ऐसा लगता है मानो कोई व्यक्ति अपने बचपन के घर की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यादों की दुनिया में लौट गया हो। तो इस गीत को पहचानिए आप और बताइए कि इस बार सीढ़ी पर कौन है।

इम्तियाज़ खान और पद्मिनी पर फिल्माया गया ये गीत था फिल्म औरत से, और इस गीत की डिटेल हमारे कुछ एक श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है, और जिन श्रोताओं ने नहीं लिखा वो ज़रूर हमें लिखकर भेजें। एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में लकड़ी की सीढ़ियों से हम सब भाई जो हैं वो बैठकर फिसला करते थे, आज वो दिन बहुत याद आ रहे हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारे बच्चे बहुत छोटे थे, हमारे पुराने घर की सीढ़ियां ऊपर मंजिल तक ऊंचाई तक थीं, बच्चे गिरे नहीं इसलिए सीढ़ियों के कोने पर लोहे की छोटी गेट बनवा के लगवाई थी ताकि बच्चे ऊपर जाएं तो गिरे नहीं। जी हाँ, सावधानी तो बहुत सीढ़ियों में बरतनी पड़ती है। एक और श्रोता ने लिखा है कि जीवन सांप सीढ़ी के खेल की तरह है, जिसमें कुछ अवसर सीढ़ी का काम करते हैं और इसी के समानांतर कुछ घटनाएं सांप का काम करती हैं, इस तरह जिंदगी बसर होती चली जाती है। फिर है सुंदर सी सीढ़ी, और फिर है ये कौन सी सुंदर सी अभिनेत्री।

मुकेश की आवाज में सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आपने सुना। मनीष और नूतन पर फिल्माया गया। एक श्रोता लिखती हैं कि बचपन में घर में बिना बताए हम और हमारे चचेरे भाई बहनों की टोली के सारे भाई मिलकर आम के पेड़ पर चढ़कर निचली डाल को जोर से हिलाते थे और हम सारी बहनें नीचे चादर बिछाकर कच्ची अमिया उसमें भर लेते थे। दांतों का बुरा हाल हो जाता था, कई दिनों तक दांत चमक जाते थे, फिर अपनी चोरी पकड़ ली जाती थी। एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे घर के पास सीढ़ियां हैं और बचपन में हम इन सीढ़ियों से उतर पानी लाते थे और मैं सबसे पहले पानी लेकर पहुंचती थी और हमेशा प्रथम आती थी। होड़ में अभी वो सीढ़ियां वही हैं, लेकिन जब मायके जाना होता है तो बचपन याद आता है। एक हमारी श्रोता हैं जिन्होंने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के गीत को पहचाना है, लेकिन लिखती हैं कि गीत तो याद नहीं आ रहा है। जी हाँ, ये गीत था, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। एक और श्रोता लिखते हैं कि पूरी जगन्नाथ मंदिर में 22 सीढ़ियां हैं, इन्हें पार करके ही प्रभु का दर्शन करते हैं। सभी की मनोकामना होती है, हे प्रभु 22 सीढ़ी पार करा देना। आज रथ यात्रा में भी भगवान 22 सीढ़ी उत्तर लोगों को दर्शन देने बाहर आए हैं। जय जगन्नाथ स्वामी।

श्रोताओं, कॉलेज की सीढ़ियों का जिक्र आप कर सकते हैं। तालाब और नदियों के किनारे क्या आप घूमने गए हैं, जहां खूब सारी सीढ़ियां होती हैं, उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं।

जहाँ किधर से भी चलो तो मिल जाएंगी सीढ़ियाँ, पर सच में भूल भुलैया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि चोरी चोरी खाने का मजा ही अलग है, अमरूद खाना नहीं भूलता हूँ। एक और श्रोता ने लिखा है कि सबसे अधिक सीढ़ियों के बारे में कहीं स्विट्जरलैंड के बारे में इन्होंने लिखा है, नसेन पहाड़ पर हैं ये सीढ़ियाँ। और एक और श्रोता ने एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म का जो गीत था उसे पहचाना है। और एक और श्रोता लिखती है कि स्कूल पढ़ने के दौरान स्कूल कैंपस के पास ही बनी दुकान की सीढ़ियों में बैठकर खाना खाते थे। कॉलेज पढ़ने के दौरान कॉलेज की कैंटीन के पास ही एक मंदिर था जिसकी सीढ़ियों पर बैठकर कोफ्ते समोसे और कचौरी खाए हैं खूब। जी हाँ, कई सारी दुकानें भी तो होती हैं वहाँ। आप अभिनेता और अभिनेत्री पहचाने?

फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, रवि का संगीत था, राजश्री और विश्वजीत पर फिल्माया गया ये गीत था। इस गीत की डिटेल भी हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। आपके सभी कमेंट्स, सभी प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: एकीकृत की गई यह रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के 150 सरकारी विद्यालयों में लाइव क्लासेस की शुरुआत की है। श्री चौधरी ने शास्त्री नगर स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस पहल का विधिवत शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव ऑनलाइन कक्षाएं, एआई आधारित अध्ययन सहायता, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट, नोट्स तथा मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने पटना के 10 मॉडल विद्यालयों में जेईई और नीट की निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था की शुरुआत की है। इस महीने के अंत तक पटना के सभी सरकारी स्कूलों में लाइव क्लासेस की शुरुआत कर दी जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी का अंतिम दिन है। इसके बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 26 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें एनडीए की ओर से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर प्रमुख हैं। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा। मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। पटना जिले के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसघाट के करीब आज सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में चर्चित बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया घायल हो गया। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि उसके पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान जहानाबाद, नालंदा और पटना जिले में विभिन्न स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की घटना भी हो सकती है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के मैनाटांड में सबसे अधिक 154 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के अवसर पर आयोजित इस धार्मिक यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। राजधानी पटना में इस्कॉन मंदिर की ओर से भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया है। रथ यात्रा बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर से निकलकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस इस्कॉन मंदिर पर समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा की लोगों को बधाई दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। आज देर रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से पराजित कर दिया। इसके पूर्व पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को पराजित कर फाइनल में स्थान पक्का किया है। विश्व कप का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। अररिया जिले के जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर जांच के दौरान एसएसबी जवानों ने एक महिला को 38 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। रोहतास जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत नहोना गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीवान में जेपी चौक स्थित दरबार रोड के समीप एक साड़ी दुकान में भीषण अगलगी की घटना में बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना

0: प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप कसीम अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। मुल्क में कल से हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी का आगाज हो रहा है। वज़ीर-आज़म नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली से तब्दील करती है। इस अमल में सिर्फ आबी बुखारात जैली प्रोडक्ट के तौर पर पैदा होते हैं। इससे ऑपरेशन के दौरान कार्बन का अखराज सिफर होता है। भारत में ही डिज़ाइन, इंजीनियरिंग और मरबूत की गई ये रेलगाड़ी मकामी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तैयार की गई है। वज़ीर आला सम्राट चौधरी ने आज पटना के 150 सरकारी स्कूलों में लाइव क्लासेस की शुरुआत की है। जनाब चौधरी ने शास्त्री नगर वाकई गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में मुनाकिद प्रोग्राम के दौरान इस पहल का बाज़ाब्ता आगाज़ किया। इस मंसूबा के तहत 9वीं से 12वीं क्लास तक के तलबा के लिए लाइव ऑनलाइन क्लासेज, AI पर मोहित तालीमी इमदाद, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट, नोट्स और मॉक टेस्ट की सहूलत दस्तियाब कराई गई है। इसके साथ JEE, नीट और CUET जैसे तकाबली इम्तहानात की तैयारी की सहूलत भी दस्तयाब कराई जा रही है। वज़ीर आला ने पटना के 10 मॉडल स्कूलों में JEE और नीट की मुफ्त कोचिंग के नज्म का भी आगाज किया। इस महीने के आखिर तक पटना के सभी स्कूलों में लाइव क्लासेस की शुरुआत कर दी जाएगी। बांकीपुर असेंबली ज़िमनी इंतखाब के लिए आज नाम वापस लेने का आखिरी दिन है। इसके बाद उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए जाएंगे। पर्चे नामजदगी की जांच के बाद 26 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इनमें NDA की जानिब से BJP के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर अहम हैं। ज़िमनी इंतखाब के लिए 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी। पटना जिला के बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके के तहत बांसघाट के करीब आज सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारूफ बंटी यादव कत्ल केस का अहम मुलजिम रविश उर्फ बसिया जख्मी हो गया। पटना के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कार्तिक के शर्मा ने बताया कि इसके पैर में गोली लगी है। जख्मी मुजरिम को PMCH में दाखिल कराया गया है। रियासत में मानसून पूरी तरह सरगर्म बना हुआ है। महकमे मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा है कि आइंदा एक हफ्ता तक रियासत के ज़्यादातर हिस्सों में बारिश की सूरतेहाल बनी रहेगी। महकमा ने आइंदा 48 घंटों के दौरान जहानाबाद, नालंदा और पटना ज़िले में मुख्तलिफ मकामात पर काफ़ी तेज़ बारिश का इम्कान के पेश नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं बिजली गिरने का भी खदशा है। इधर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मगरबी चंपारण के मैना टाँह में सबसे ज़्यादा 154 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। पूरे देश में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। इस मजहबी यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर सवार होकर अपने अकीदतमंदों को दर्शन देते हैं। इधर राजधानी पटना में इस्कॉन मंदिर की जानिब से शानदार रथ यात्रा का इनाकात किया गया। रथ यात्रा बुद्ध मार्ग वाकई इस्कॉन मंदिर से निकलकर शहर के मुख्तलिफ राहों से होते हुए वापस इस्कॉन मंदिर पर ख़त्म होगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा की मुबारकबाद पेश की है। गवर्नर बिहार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अता हसनैन और वजीर आला सम्राट चौधरी ने भी रियासत के बाशिंदों को रथ यात्रा की नेक ख्वाहिशात पेश की है। फीफा फुटबॉल आलमी कप के फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। आज देर रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी। इससे कबल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की है। आलमी कप का फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। अररिया जिला के जोगबनी में भारत नेपाल सरहद पर जांच के दौरान SSB के जवानों ने एक खातून को 38 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिला के मुफसिल थाने इलाके के तहत नहौना गांव में जमीनी तनाजा में गोलीबारी में पुलिस ने 3 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। सिवान में JP चौक वाकई दरबार रोड के पास एक साड़ी दुकान में जबरदस्त आतिशदगी के मामले में काफी नुकसान हुआ है। उर्दू डायरेक्टरेट के काबीना सेक्रेटरिएट बिहार पटना के जेर एहतमाम आज कैफ अजीमाबादी यादगारी तकरीब का इनाकात किया गया। इसकी सदारत प्रोफेसर तौकीर आलम, साबिक प्रो वाइस चांसलर मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी ने की। इस मौके पर एक महफिल सुखन का भी इनाकात किया गया।

0: के साथ ही इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन अब खत्म होता है।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 2:10 हुए हैं। श्रोताओं आप लीजिए सुनिए रोजगार सूचना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर PU एवं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के कुल 6,715 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.ibps.in से प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए कुल 6,565 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार के पास BE/BTech इंजीनियरिंग डिप्लोमा अथवा इंजीनियरिंग में BSc की डिग्री होनी चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अधिकतम आयु 30 वर्ष और टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 जुलाई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianrailways.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग BPSSC पुलिस अवर निरीक्षक सामान्य बंद संवर्ग के कुल 150 पदों हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। आयु सीमा, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है। रोजगार सूचना समाप्त हुई।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। 2:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए दोपहर समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा,

0: सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई को तीसरी भाषा पांचवी या छठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यो को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1.7 अरब लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं

0: शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जाँच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक

समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति

0: की जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडिचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपये प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की पांचवें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान्यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: रात आधी है,
1: कहीं तेरी मेरी बात भी आधी न।

फिल्म नवरंग का दो गाना आपने सुना, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में। भरत व्यास के बोल थे, सी रामचंद्र का संगीत था। विविध भारती का ये कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

0: वो भी नहीं है कि बनाई तर्ज पर इसे गाया मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। मजरू सुल्तानपुरी की रचना आपने सुनी। फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमें।

0: गंगा की लहरें सुनकर दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के युगल सुरों में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताते हैं।
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जहां आरा फिल्म का गीत आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले के युगल सुरों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं मदन मोहन की तर्ज है। श्रोताओ, यही है आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप सुनिए ये गीत, रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग।

0: सखी सहेली
1: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को और आरती आपको नमस्कार।
2: चंचल जी आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: तो भाई आज हम बहुत दिन बाद मिले हैं इस मंच पर और आज ढेर सारी बातें होंगी, आपस में भी होंगी और हमारे सुनने वालों से भी होंगी।
2: बिल्कुल, उनकी बातों को हम अच्छे, जिन्होंने हमें मैसेज भेजे हैं उनको हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से उनसे बातें करेंगे और हमें प्यारे प्यारे मीठे मीठे गीत सुनाएंगे।
1: तो भाई वो हमें कमेंट्स लिख रहे हैं सिर्फ वो श्रोता जिन्हें पता है कि आज के विषय क्या है। हाँ। तो हम किस विषय पर बात करेंगे ये बताना भी बहुत जरूरी है।
2: बताना जरूरी है। तो आज हम सब बात करेंगे मनोरंजन के बदलते स्वरूप।
1: तो मनोरंजन की बात हो रही, भाई रेडियो की बात ना हो, मनोरंजन का बहुत पुराना और सबसे पसंदीदा जरिया है रेडियो और हमारे जो श्रोता है वो तो जुड़े हुए हैं इस माध्यम से, लेकिन इसके अलावा जो अन्य मनोरंजन के माध्यम हैं उन्होंने अब तक क्या बदलते हुए देखा और उन्हें क्या लगता है कि ये स्वरूप अच्छे हैं या बुरे हैं, अपना अपना हर किसी का देखने का नजरिया होता है।
2: जरूरी नहीं सिर्फ रेडियो हो, हम आपस में कितने खेल खेल के,
1: हाँ वो तो कहा ना,
2: आपस में बातें करके हम अलग अलग तरीकों से मनोरंजन करते थे सब मिलके, सखियों से बात करके। तो ये सब चीजें जो है पहले के जो साधन थे वो ज्यादा अच्छे थे या अभी के जो है वो ज्यादा आपको पसंद आते हैं, सब अपने आप नजरिया बताइए कौन सा आपको ज्यादा सही लगता है।
1: बिल्कुल, आज डिजिटल युग है तो डिजिटाइज चीजें जो हो रही है ना वो भी किसी को पसंद है किसी को नहीं है। जो पुराने दौर के व्यक्ति है ना उन्हें लगता है कि नहीं ये मोबाइल या जो गैजेट्स हैं उनसे तो अच्छा है अपने दोस्तों में बैठ के बातें करो।
2: बिल्कुल,
1: चार दोस्त मिल गए जो अगर सखियां हैं तो वो कुछ पकवान बनाएंगी, किटी पार्टी जैसा करेंगी, उनका मनोरंजन हो जाता है। बच्चों के लिए खेल कूद मनोरंजन है। तो आपके लिए मनोरंजन क्या है और आपने क्या स्वरूप बदलते हुए देखे, अपने विचार हमें लिखकर भेजिए।
2: बिल्कुल, और साथ ही हम बात करेंगे कहानी पद्मश्री के अंतर्गत यानुंग जामो लेगो जो की जड़ी बूटी विशेषज्ञ है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जानते हैं अधिकतर लोग उनके बारे में।
1: मतलब ये ऐसे उपचार हैं कह सकते हैं कि इनके साइड इफेक्ट यानी कि आपको कुछ भी गलत उपचार मिलने की संभावना कम होती है, यानी कि जो चीज अगर आपने ली तो उसका साइड इफेक्ट नहीं आएगा, हो सकता है वो आपको फायदा ना दे लेकिन किसी तरह का नुकसान होने की संभावना ना के बराबर होती
2: है। प्राकृतिक उपचार होता है, तो प्रकृति तो वैसे ही इतनी ज्यादा अपने अंदर समेटे हुए पूरा खजाना, तो उसको हम जान लें तो हम हमारे सारे चीजों का इलाज वैसे ही हो जाएगा।
1: आरती आपने देखा है कितने लोग सिर्फ प्राकृतिक वाटर बॉटल्स में मंगाकर पीते हैं, पसंद करते हैं।
2: महंगी आती है वो, जो पानी मिलता है उन बॉटल्स में वो बहुत महंगा पानी आता है, तो आजकल शुद्ध पानी ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो शुद्धता होती है जो प्रकृतिक चीजें जड़ी बूटियां होती हैं,
1: बिल्कुल
2: कुछ अलग ही।
1: तो शुद्ध हवा पानी अपने आप में बहुत कहते हैं कि एक दवा का काम करता है। इसके अलावा कुदरत ने हमें इतनी सारी जड़ी बूटियां दी हैं, उनको पहचानना भी अपने आप में बड़ा काम है। तो जिन सखी की आज हम बात करने वाले हैं ये उनको पहचान कर उनसे उपचार करती हैं और बहुत सारे लोगों को ये अपने उपचार से स्वस्थ कर चुकी हैं।
2: बिल्कुल, तो इनके बारे में हम बात करेंगे आज
1: जी।
2: और साथ ही हम बात करेंगे कि चंचल कुछ बताने जा रही हूँ,
1: दिमागी कसरत
2: भूल गई थोड़ा सा हमें दिमागी कसरत की जरूरत पड़ती है जब हम कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो एकदम टंग ट्विस्टर होते हैं, एकदम हमारे जीभ को घुमा देते हैं पूरी। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो किस तरीके से पहेलियां होती हैं, पहेलियां बुझाते हैं। पहले हम लोग का बहुत ज्यादा ये मनपसंद खेल हुआ करता था कि हम कुछ ऐसी बातें कहें और बताएं बूझो तो जाने, अब ऐसी बात हमने कुछ लाइन्स बोल दी अब बूझो तो जाने इसका क्या मतलब है, इसका क्या कौन सी चीज छिपी हुई इन शब्दों में। तो ये पहेलियां जो है ना इससे हमारा जो मस्तिष्क है ना उसकी सारी बिल्कुल काम में लग जाता है, बिल्कुल कि ढूंढने की आखिर है क्या चीज।
1: और पहले बच्चों को ऐसे टास्क जब दिए जाते थे ना तो उनका दिमाग कहते हैं कि खुलता था इन चीजों से। तो आप करते हैं अपने बच्चों के साथ या नहीं करते हैं, बच्चों के दिमागी कसरत के लिए पहेलियों के अलावा आपने क्या किया है हमारे

0: अच्छा
1: और
0: जरूर
1: सिर्फ
0: साझा
1: बच्चों के ही
0: करें।
1: नहीं, ये बड़ों के लिए भी बहुत जरूरी है कि इस तरीके की जब चीजें हम करते रहते
0: जी
1: हैं ना, चाहे वो अखबार में निकलने वाले उनको पहेलियों को सुलझाना हो या किस तरीके की चीजों को करना हो, तो
0: जी
1: इससे हमारा दिमाग जो है ना एकदम काम में लगा रहता है, एक्टिव रहता है। इससे ये होता है कि हम जैसे कभी कभी ऐसा होना था कि बढ़ती उम्र के साथ में थोड़ा सा याददाश्त में कमी होने लगती है, तो
0: हाँ,
1: वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं।
0: और बारिश का मौसम है ये हम सभी जानते हैं, कहीं कम है कहीं ज्यादा है, लेकिन बारिश के बाद जो उमस होती है ये भी हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती
1: बहुत
0: है।
1: ज्यादा।
0: इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने खान पान का, अपने पहनावे का, जो भी चीजें हमारे इर्द गिर्द हैं उन सब चीजों
1: वैसे
0: का।
1: भी कहा जाता है ना कि अब हम प्रकृति की बात करें तो कहा जाता है कि प्रकृति के हिसाब से हमें खान पान भी रखना चाहिए। कौन से मौसम में, हर मौसम का खान पान अलग होता है,
0: जी
1: तो उसी हिसाब से हम अपना खान पान रखेंगे, संतुलित आहार रखेंगे, शुद्ध पानी पियेंगे, तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो हम बात करेंगे कि किस तरह से हम बारिश के दिनों में अपना ध्यान रखें।
0: और इसके अलावा भाई नींद बहुत जरूरी चीज होती है, लेकिन इस समय हम श्रोताओं की नींद उड़ाने वाले हैं ताकि वो
1: अच्छा
0: प्रोग्राम सुनने के लिए तैयार
1: जी
0: रहें।
1: जी साथ

0: हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनकी नींद जरूर उड़ गई होगी, और अब वो हमें
1: पूरे
0: कमेंट्स
1: ध्यान से,
0: भेजेंगे
1: पूरे ध्यान से प्रोग्राम को सुनेंगे
0: जी,
1: तो।
0: और जो हमारे विषय हैं उन पर संदेश भी लिखकर भेजेंगे, अपने विचार भी हमारे साथ साझा करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मनोरंजन के जो बदलते स्वरूप हैं उन्हें लेकर, और बात जब मनोरंजन की होती है आरती, तो ये केवल समय बिताने का कोई साधन नहीं है बल्कि मानसिक तनाव को दूर करके ताजगी भरने वाला भी होता है, और रचनात्मक और जीवन को संतुलन बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। बदलते समय के साथ मनोरंजन के साधन भी बदले हैं, और इस बात से हमारे श्रोता भी वाकिफ होंगे।
1: बिल्कुल,
0: और अतीत की तुलना वर्तमान से करें तो मनोरंजन की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हम देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और पुराने समय का जो मनोरंजन था वो सामूहिकता, अपनापन और संस्कृति से अपनी जुड़ा हुआ था।
0: हाँ,
1: गांव की चौपालों पर किस्से कहानियां सुनाई जाती थीं, लोकगीत और लोक नृत्य लोगों को एक सूत्र में बांध लेते थे, रामलीला, नौटंकी, कठपुतली का खेल, मेले, पारिवारिक खेल जो यानी सब परिवार पूरा मिलकर खेलते हैं हम लोग सब, और दादी नानी की कहानियां और रेडियो के कार्यक्रम जो थे वो उस समय के मनोरंजन के मुख्य माने जाते थे साधन।
0: और पहले के जमाने की अगर बात हो रही है तो जैसे आजकल बहुत सारे बोर्ड के गेम भी मिलते हैं
1: हाँ।
0: और या पासे होते हैं उसमें, तो वो हम खुद ही किसी कोयले से या
1: हाँ।
0: चौक से जमीन पर उसको काढ़ लिया करते थे
1: बिल्कुल।
0: और कुछ पत्थर वत्थर रख के बस पासे बनाकर उनसे खेला करते थे। तो इन चीजों में भी युग के साथ में बदलाव हुआ, फिर ये बोर्ड पर आने लगे बाजार में, और अब ये चीजें कई बार हमें डिजिटल यानी कि हमारे मोबाइल या लैपटॉप पर टैब पर भी हम खेलते हैं
1: बिल्कुल।
0: वैसे
1: वो
0: ही
1: अभी
0: खेल।
1: भी गांव में देखिए तो छोटी छोटी जो बच्चियां हैं वो गुटके खेलती हुई दिखाई दे
0: हाँ
1: जाएंगी, वो बहुत अच्छे लगता है वो। और जो जमीन पर बनाते हैं पहले उससे चौक से,
0: हाँ
1: और एक दो तीन चार करके
0: हाँ और
1: लिखते
0: वो
1: हैं।
0: लंगड़ी से चलते हुए खेलते
1: हाँ
0: हैं, कहीं दो
1: हाँ
0: पैर टिकाने हैं, कहीं एक पैर टिकाना
1: बिल्कुल।
0: होता
1: इस तरह
0: है।
1: के खेल तो अभी भी बच्चे खेलते हैं, इसमें तो कोई वो नहीं, लेकिन हाँ ये जो खेल थे ये पूरी तरह से हमें पूरे शरीर को भी एक्टिव रखते थे और दिमाग को भी एक्टिव
0: और
1: रखते थे।
0: बिल्कुल इन माध्यमों में सिर्फ आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, बल्कि संस्कार हैं, लोक ज्ञान है, सामाजिक मेल मिलाप, ये सभी चीजें आरती में समाहित होता था,
1: बिल्कुल
0: और मनोरंजन लोगों का एक दूसरे को और पास ले आता था। वहीं वर्तमान समय में मनोरंजन ने तकनीक का हाथ थाम लिया, जैसा हम बात कर ही रहे हैं।
1: जी
0: डिजिटल युग में मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, वीडियो गेम, पॉडकास्ट, ओटीटी, ये इतनी सारी चीजें हैं, इन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल के रख दिया है।
1: बिल्कुल। और आज का मनोरंजन हमारी उंगलियों की पहुंच में है, सबसे बड़ी बात।
0: हाँ
1: एक क्लिक पर दुनिया भर की फिल्में, संगीत, पुस्तकें और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम उपलब्ध हैं,
0: हाँ
1: और इस बदलाव ने मनोरंजन को और अधिक सुलभ बना दिया है, विविध और व्यक्तिगत भी बना दिया है। अब हर आयु वर्ग अपनी रुचि के अनुसार सामग्री को चुन सकता है। यही कारण है कि मनोरंजन आज केवल आनंद का माध्यम नहीं है बल्कि शिक्षा, जागरूकता और व्यक्तित्व विकास का भी सशक्त साधन बन गया है।
0: हम बातें और करेंगे, और हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं इस बारे में वो भी पढ़ेंगे, पर गीत सुनते चलें।
1: बिल्कुल।

0: आरती, ये जो इस तरह के गीत हैं ना, ये भी दिल चुरा लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और हम बात कर रहे हैं कि बदलता जो स्वरूप है मनोरंजन का, तो देखो ना, हमने गीत सुना ये कितने गुजरे जमाने का था, लेकिन ये
1: बिल्कुल
0: आज भी मीठा लगता है। और संगीत का स्वरूप भी कितना बदला है।
1: बहुत ज्यादा बदल गया है। और बदलाव हर समझ लीजिए परिवर्तन जो होता है वो तो प्रकृति का नियम ही होता है, लेकिन वो परिवर्तन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जो सबको पसंद आए,
0: जी,
1: है ना।
0: और परिवर्तन के साथ हम अगर जुड़ेंगे नहीं, खुद को अलग थलग
1: बिल्कुल
0: रखेंगे, तो वो खुद ही खामखा तकलीफ में रहेंगे। तो
1: बिल्कुल
0: बदलाव को स्वीकार करना भी जरूरी होता है,
1: जी
0: लेकिन बदलाव के साथ बिल्कुल इतने ना बह जाएं कि अपने जो संस्कार हैं, संस्कृति है, उसे हम भूल जाएं।
1: बस अपनी संस्कृति से जुड़े रहिए और
0: जी,
1: बदलाव को अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको स्वीकार कीजिए।
0: और अपने बच्चों को भी जो अपनी संस्कृति है उससे अलग ना होने दीजिए।
1: बिल्कुल
0: अब वो नई चीजों को, जो भी आधुनिकता है, उसे अपनाएं, लेकिन जो हमारी जड़ें हैं उससे जुड़ाव बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल
0: तो अब देखिए, हमारे श्रोता का कहना है कि विगत काल में मनोरंजन के साधन प्रकृति और सामुदायिक गतिविधियों तक सीमित थे। मेले, सर्कस, कठपुतली शो, त्योहारों में पूरा समाज एक साथ जुड़ जाया करता था। रेडियो और दूरदर्शन के आने से मनोरंजन घर की चार दीवारी तक सीमित हुआ, लेकिन इसे भी पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर कार्यक्रम देखने का अवसर दिया। और तकनीकी क्रांति की बात कर रहे हैं, जहां इंटरनेट ने बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया है, वेब सीरीज आई हैं, आगे इन्होंने इसके बारे में बात की है। फिर ये बता रहे हैं कि आर्टिफिशियल एजेंसी AI, एल्गोरिदम आधारित जो सिफारिशें हैं, इसने भी व्यक्तिगत बना दिया है मनोरंजन को, और बहुत विविधतापूर्ण मनोरंजन अभी है। और बहुत विस्तार से इन्होंने बातें लिखी हैं इस बारे में, तो आगे और भी संदेश पढ़ने हैं हमें।
1: बिल्कुल। और हमारे एक क्वेश्चन होता है, उनका संदेश है कि मनोरंजन के साधन तो पहले भी हुआ करते थे और आज भी हैं, पर कुछ तौर तरीके बदल गए हैं।
0: हाँ
1: पहले रेडियो पर मनोरंजन हुआ करता था, पर आजकल तो मोबाइल फोन पर बहुत सारे बच्चे अपना मनोरंजन करते हैं, पर मनोरंजन का स्वरूप बदल गया है। पर मेरा मनोरंजन का स्वरूप पहले जैसा ही है, लगता है कुछ भी नहीं बदला है। मुझे वो पुराने रेडियो का दौर अच्छा लगता है, इस कारण जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो मैं सिंपल पुराने रेडियो पर ही सुना करता हूँ, और मेरे लिए यही अच्छा है।
0: हमारे सुनने वाले श्रोता है ना, जो इतने पुराने गीत जो आज हम सुन रहे थे ना, ये अक्सर सुबह भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में उन्हें सुनाई पड़ते होंगे। तो आज एक बदलाव ये भी है उनके लिए कि इतने पुराने गीत आज सखी सहेली में उन्हें सुनाई पड़ रहे
1: बिल्कुल।
0: हैं। और क्या संदेश है?
1: एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मनोरंजन अधिक जो विविध है, त्वरित और सस्ता हो गया है। घर बैठे ज्ञान और मनोरंजन दोनों साथ में मिल रहे हैं। नकारात्मक प्रभाव इसका यह है कि मनोरंजन जो है वो अब सामाजिक से अधिक व्यक्तिगत हो गया है, क्योंकि पहले सारे लोग मिलके हम साथ होते थे, अब अत्यधिक स्क्रीन टाइम से शारीरिक गतिविधियां भी कम हुई हैं और आंखों पर बुरा असर भी पड़ रहा है।
0: हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ये जो बात इन्होंने लिखी है ना, ये बहुत सही बात है कि बच्चों की आंखों पर भी बुरा असर पड़ता है, बड़ों की, और ना सिर्फ आंखों पर, आपकी और भी इंद्रियों को ये प्रभावित करते हैं। तो हमारे श्रोता खुद सजग हैं, इन बातों को जानते हैं, तो अपने घर में वो क्या इन चीजों को लेकर बदलाव करते हैं, बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम के लिए क्या उन्होंने एक समय निर्धारित किया है, या बच्चे उनके बहुत कितनी बार तो हम खुद ही आदत बिगाड़ते हैं बच्चों की, कि अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो TV लगा दिया, या तो फिर हमने उसके हाथ में
1: पकड़ा
0: मोबाइल दे दिया
1: दिया।
0: कि उसका ध्यान थोड़ा सा वहां से, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है वो TV और मोबाइल की तरफ, और हम उसके ध्यान को थोड़ा सा भटका कर उसके मुंह में निवाले देते रहते हैं, और फिर वो चीजें आदत में बदल जाती हैं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है, मनोरंजन देना है,
1: बिल्कुल
0: लेकिन स्वस्थ मनोरंजन हमें अपने आगामी पीढ़ी को देना है।
1: और बच्चों को हमें समझाना भी है कि जब हम अपने हाथों से खाना खाते हैं तो, और खाने पर पूरा ध्यान रखते हैं,
0: जी,
1: तो पुराने समय में क्यों ऐसा होता था, क्योंकि जब हम हाथों से अपने खाना खाते हैं ना,

0: तो एक जुड़ाव होता है खाने के
1: जी
0: साथ, उसकी सुगंध को महसूस करते हैं, उसके उसके स्वाद को महसूस करते हैं, तो वो खाना में और फायदा पहुंचाता है।
1: हाँ
0: इसलिए जरूरी होता है कि जब कुछ ना चल रहा हो उस समय टीवी मत चलाइए, उसमें कुछ नहीं करिए, कहते हैं बात भी बोलना भी नहीं चाहिए, तो खाते समय थोड़ा अगर इस तरीके से हम करें तो देखिए कितना स्वास्थ्य पर असर पड़ता है।
1: बहुत सही बात कही आरती आपने कि हम एक एक स्वाद को महसूस कर पाते हैं, लेकिन अगर हमारा ध्यान किसी और भी है, किसी तीसरी तरफ भी है, कि एक तरफ हमारी नजरें हैं इस तरफ कि भाई कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक तरफ हम टीवी भी देख रहे हैं, हमारा ध्यान मोबाइल पर भी है, तो खाने का लुत्फ हम ले ही नहीं पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: और जितना असर हमें हर चीज को लेकर वो भोजन देगा शायद नहीं दे पाए।
0: बिल्कुल। तो और हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिख रहे हैं कि प्राचीन काल के सामूहिक उत्सवों से लेकर आज के व्यक्तिगत डिजिटल स्क्रीन तक मनोरंजन का स्वरूप काफी बदल गया है, हालांकि इसका मूल उद्देश्य दिन भर की थकान मिटाना और मानसिक शांति पाना आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बस चीजें चेंज हो गई थोड़ी सी।
1: बिल्कुल, तो हम फिर से एक पुराने गाने की तरफ बढ़ते हैं
0: बिल्कुल बदलाव
1: और बदलाव हम लेकर आ रहे हैं, तो एक गीत सुनते हैं।

0: बड़ा खूबसूरत गीत था और दो बहनों की आवाजें थी, तो दिमागी कसरत की बात है भाई, हम आगे बात करेंगे, लेकिन हमारे श्रोता पता है कौन सी दो बहनें हैं इस गाने में, थोड़ी सी दिमागी कसरत उनकी भी हो जाए।
1: बिल्कुल,
0: और ये भी एक खेल ही हो गया ना, मनोरंजन का बदलता स्वरूप है ये।
1: बिल्कुल, मनोरंजन के स्वरूप ही की बातें कर रहे थे, जैसे कि हम पहले हम परिवार के साथ में हम अपनी हंसी को बांटते थे, खुशी को बांटते थे, अब आज कई क्या ऐसा
0: हम सोशल मीडिया पर बांटते हैं।
1: बिल्कुल, आज कई बार हंसी जो होती है वो हमारे जो इमोजी होते हैं ना, हाँ, वो बनकर मोबाइल स्क्रीन पर रह जाती है। पहले संवाद आमने सामने होते थे, अब आज वो डिजिटल माध्यमों से होते हैं। कभी पूरा परिवार साथ बैठकर रेडियो सुनता था या दूरदर्शन पर कार्यक्रम देखता था, जबकि आज अक्सर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्क्रीन में, फोन में बिजी दिखाई देता है।
0: और देखिए ना हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं, मनोरंजन के स्वरूप भले बदले हों, रेडियो ने हमें आज भी जकड़ रखा है। यानी कि रेडियो जो है ना, वो हमारे बहुत सारे श्रोताओं का मनोरंजन का बहुत पसंदीदा माध्यम है। आगे लिखते हैं कि रेडियो से पहले हमारे

0: घर में ग्रामोफोन प्लेयर हुआ करता था,
1: अरे वाह,
0: जिस पर पुराने दौर की उन फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड बजाकर हम लुत्फ उठाया करते थे। उसके बाद हमारे यहाँ साल 1960 में रेडियो का आगमन हुआ। उस समय से लेकर आज तक ये हमारे मनोरंजन का साथी बना हुआ है। इसके अलावा सिनेमाघर और दूरदर्शन का जमाना आया, जिसमें हर रविवार के दिन आ रही रामायण जैसे सीरियल और शाम को आने वाली फिल्में हमें काफ़ी प्रभावित किया करती थी। आज इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मनोरंजन को व्यक्तिगत और ऑन डिमांड बना दिया है। और आगे लिख रहे हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन।
1: देखिए, परिवर्तन तो होता ही है
0: जी,
1: अब हम उसे स्वीकारें या ना स्वीकारें। और हमारे एक और श्रोता है, वो लिखते हैं कि बचपन में सबसे मजेदार एक और मनोरंजन का साधन था कथा कहानी सुनाने का। सच में घर परिवार रिश्तेदार में कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो कथा कहानी बहुत अच्छा सुनाते थे और आपको उसमें बीच में हुंकारी भरना जरूरी होता था। और कथा एक दिन में खत्म नहीं होती थी, दो दो दिन तक चलती थी। सुनने वाले की बातें इतनी लच्छेदार होती थी कि हम तन्मय होकर उस कथा को या कहानी को सुनते रह जाते थे।

0: कहानी सुनाने का। अरे वाह, सच में घर परिवार रिश्तेदार में कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो कथा कहानी बहुत अच्छा सुनाते थे और आपको उसमें बीच में हुंकारी भरना जरूरी होता था। और कथा एक दिन में खत्म नहीं होती थी, दो दो दिन तक चलती थी। सुनने वाले की बातें इतनी लच्छेदार होती थी कि हम तन्मय होकर उस कथा को या कहानी को सुनते रह जाते थे।
1: और इसी तरह से हम बात करें कि बदलते स्वरूप की, तो पहले चिट्ठियां हमारे श्रोता लिखा करते थे, अब हमारे श्रोता हमें कमेंट लिखकर भेजते हैं। कुछ श्रोता सिर्फ अपने विचार, इस जिस जो भी बात हो रही है उस बारे में अपने विचार लिखते हैं, लेकिन कुछ श्रोता ऐसे भी हैं कि भाई उन्हें बिल्कुल तैयार माध्यम मिल जाता है, वो गूगल पर जाते हैं, सर्च करते हैं उस बारे में और बिल्कुल उसको वहां से कॉपी करके एज इट इज वैसा कि वैसा उसे पेस्ट कर देते हैं। उसमें आप अपने विचार भी जोड़िए और आपकी क्या बात है वो राय भी हमने लिख कर
0: पहुंचे, आपके विचार जानने का मौका मिलेगा कि आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: तो ये तो हमें भी पता है, बिल्कुल गूगल पर सब तरह की जानकारी है, लेकिन आपको अपने विचार लिखकर भेजने, इसलिए हमेशा कहते हैं ना श्रोताओं से कि आप अपने विचार इस बारे में लिखकर भेजिए कि आपने क्या बदलते देखा है इस दौर में।
0: जो आपके अनुभव है ना, वो जब हम साझा करेंगे ना तो और लोगों तक भी वो जो अनुभव है वो पहुंचेंगे।
1: जी,
0: तो एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि एक समय था जब लोग मेले, कठपुतली के शो, नाटकों और रेडियो पर निर्भर थे। इसके बाद सिनेमा घरों और टीवी का दौर आया, लेकिन अब जो है वो जो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं मनोरंजन के, जिन पे पारंपरिक तरीकों को पीछे छोड़ दिया गया है। तो पहले तो ऐसा होता था कि जैसे हम शाम को जब हमारा कोई सीरियल आने वाला है तो उसके लिए बहुत ही इंतजार कर रहे होते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि ऐसी ऐसी अब सीरीज हो गई है कि उनके एपिसोड ही चलते रहते हैं। तो ये बदलाव बता रहे हैं इस तरीके का हुआ है।
1: बिल्कुल, और मनोरंजन का वास्तविक उद्देश्य मन को प्रसन्न करना होता है, तनाव को कम करना होता है, जीवन में नई ऊर्जा का संचार करना होता है। आरती, अगर मनोरंजन हमें संवेदनशील, रचनात्मक और सकारात्मक बना रहा है, तभी उसकी वास्तविकता हम कह सकते हैं कि वो सिद्ध होती है। इसीलिए हमें ऐसे मनोरंजन को अपनाना चाहिए जो ज्ञान भी दे, हमारी संस्कृति और मानवीय मूल्यों को भी समृद्ध करता रहे।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि हम मनोरंजन के साधन को उस हिसाब से लें कि भाई हमें जो ज्ञान भी थोड़ा सा हमारा बढ़ाए।
1: बिल्कुल, समय तो बदलता रहेगा, मनोरंजन के स्वरूप भी बदलते रहेंगे, लेकिन उसका मूल उद्देश्य हमेशा एक ही रहेगा कि हमारे जीवन को आनंदमय और संतुलित, सार्थक बनाते रहना। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन स्थापित करके ही हम मनोरंजन का वास्तविक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो मनोरंजन के साधन को आप बदलते स्वरूप को अपने तरीके से चीज़ों को आप लीजिए। थोड़ा सा परिवर्तन भी जरूरी होता है, लेकिन आप ज्ञानवर्धक चीज़ों को देखिए, ऐसी चीज़ों को देखिए जिससे कि आपका पूरा विकास हो, आपके दिमाग का अच्छा, आपको खुद तनाव से मुक्ति मिले और आपको अच्छा महसूस हो, और साथ ही थोड़ा शारीरिक गतिविधि भी रहे। इस तरीके के मनोरंजन के साधन भी करिए, जैसे कि स्पोर्ट्स वगैरह भी हैं, जैसे खेल हैं उनमें भी आप जा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा
0: आप, कथा कहानी वाली बात बहुत अच्छी बताई है, आप वो भी चीजें कर सकते हैं। बहुत सारे पुराने ऐसे खेल हैं जिनको हम खेल सकते हैं, बैठ के घर में आपस में बात कर सकते हैं, अंताक्षरी जैसे खेल होते थे वो खेल
1: हाँ,
0: सकते हैं,
1: जिनमें तो कोई अलग से कोई खिलौना नहीं लाना है, बिना खिलौने वाले खेल भी हुआ करते थे। लेकिन घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही हैं कि अभी समय है एक अंतराल का।

0: सताई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली, और अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं।
2: बिल्कुल, तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी।
1: अभी बातचीत से पहले हम सुनेंगे,
2: मैंने वही देखा चंचल जी की तरफ कि उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम पहले
1: गीत सुनेंगे।
2: चलिए पहले
1: मनोरंजन की बात हो, और मनोरंजन में गीत ना हो तो कैसे होगा।
2: आपने

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई

0: तो भाई इस गीत के बाद में अब हम बात करेंगे सखी विशेष में, जिन्हें पद्मश्री मिल चुका है, उनकी जो है यानुंग जामोह लेगो, जो कि जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं।
1: बिल्कुल। और यानुंग जामोह लेगो भारत के अरुणाचल प्रदेश की प्रसिद्ध पारंपरिक जड़ी बूटी विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन औषधीय पौधों के संरक्षण, पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान को संजोने और लोगों को निस्वार्थ उपचार करने में समर्पित किया है।
0: वो विशेष रूप से कुछ समुदाय हैं उनमें प्रचलित उपचार, पारंपरिक उपचार पद्धतियों की संरक्षक मानी जाती हैं। 1963 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिले के सीका टोड़े गांव में उनका जन्म हुआ और ये वहाँ के समुदाय उनसे ताल्लुक रखती हैं।
1: बिल्कुल। पारंपरिक चिकित्सा में उनका प्रवेश घर से ही शुरू हुआ था। उन्होंने अपने पिता से जड़ी बूटी चिकित्सा सीखी, जो कि एक सम्मानित लोक चिकित्सक थे। उनके मार्गदर्शन में पौधों के चयन, तैयारी और उपचार और प्रार्थना से संबंधित पारंपरिक रीति रिवाजों का अवलोकन किया और लगभग 15 वर्षों के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने 1995 में अपना स्वतंत्र अभ्यास शुरू किया। औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने असम कृषि विश्वविद्यालय

0: जोरहाट से बीएससी और एमएससी कृषि की उपाधि प्राप्त की।
1: विश्वविद्यालय की परीक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 1988 में अरुणाचल प्रदेश सरकार के कृषि विभाग में काम करना शुरू किया और वो लंबे समय तक वरिष्ठ पदों पर रहते हुए 2023 में वहां से सेवानिवृत्त हुई और इसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय पारंपरिक प्रथाओं और सामुदायिक प्रशिक्षण को समर्पित कर दिया। इसके बाद 2009 में उन्होंने इंडिजिनस हर्बल हेरिटेज की स्थापना की जो औषधीय पौधों और घरेलू स्तर पर जड़ी बूटियों के बागानों की खेती संरक्षण और शिक्षा देने की पहल है जिसके माध्यम से पूर्वजों के ज्ञान को व्यवहारिक खेती से जोड़ा गया है।
0: और लेगो के योगदान का एक मुख्य पहलू है पुनर्जीवन और ज्ञान का प्रसार। बुजुर्गों द्वारा ज्ञात जड़ी बूटियों की सूची बनाना, उनकी प्राकृतिक संरक्षण को प्रोत्साहित करना और नर्सरी एवं रसोई के खेतों में दुर्लभ प्रजातियों की खेती करना।
1: स्वदेशी हर्बल हेरिटेज के माध्यम से उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जड़ी बूटियों के बारे में शिक्षित किया। अरुणाचल प्रदेश में स्वदेशी चिकित्सा के पारिस्थितिक आधार को मजबूत करते हुए उन्होंने प्रतिवर्ष लगभग 5000 औषधीय पौधों का रोपण करने में भी बहुत बड़ी सहायता प्रदान की है।
0: और पिछले कई दशकों से यानुंग जमाओ लेगो ने पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोग उनसे संपर्क करते रहे जिनमें पाचन संबंधी और त्वचा संबंधी समस्याओं से लेकर श्वसन संबंधी शिकायतें और गुर्दे की समस्याएं बहुत सारी चीजें शामिल है।
1: और आरती इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियां हैं, कह सकते हैं कि बड़ी बीमारियां भी हैं उसमें, और उन्हें उनका भी वो उपचार करती हैं। और पद्म पुरस्कार दस्तावेज 10,000 से अधिक लोगों के लाभ का दावा करते हैं। लोग लेगो अक्सर ऐसे विश्वास को व्यक्त करती हैं जो पारंपरिक मूल्यों के अनुरूप हैं, यानी कि वो कहती हैं कि प्रकृति में ही बीमारियों के समाधान भी हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात भी है। ये एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण है जिसे वे पौधों के संरक्षण के संदेश के साथ जोड़ती हैं। लेगो का अभ्यास औषधि पौधों और जड़ी बूटियों के जो अर्घ होते हैं उस पर केंद्रित है जिन्हें काढ़े पाउडर पेस्ट या तेल के रूप में तैयार किया जाता है। उनके प्राकृतिक और पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 2007 में सृष्टि सम्मान, 2013 में पारंपरिक वैद्य रत्न और 2019 में अरुणाचल स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है।
1: तो बस लोग उनसे इसी तरह से चिकित्सा लाभ लेते रहें और वो बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य में इजाफा करती रहें, यही शुभकामना है। सुनते हैं गाना।
2: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ।

0: शमशाद बेगम और चितलकर की आवाज में पतंगा फिल्म का गाना था आरती, और हमने एक गाना सुनवाया था अपलम चपलम, और हमने एक दिमागी कसरत या पहेली पूछ ली थी अपने सुनने वालों से कि उस गाने में दो बहनों की आवाज, वो कौन सी दो बहनें हैं। तो बहुत सारे जो गाने हमने बाद में भी सुनाए ना, उनके लिए भी हमारे श्रोताओं ने फिल्म का नाम कौन सा है, गायक गायिका कौन से है, वो सारी जो पूरी जानकारी है वो लेकर भेजी है। लेकिन फिलहाल वो हम बता दें कि वो आजाद फिल्म का गीत था, आवाज थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की। और बात है दिमागी पहेली की,
1: बिल्कुल,
0: तो पहेली जो है वो दिमागी कसरत करवाती है, और दिमागी कसरत के लिए क्या क्या हो सकता है इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें लिखी
1: बहुत सारी चीजें बताई हैं। तो कौन सा आप पहले पढ़ रही हैं संदेश?
0: एक संदेश में लिखा है कि मुझे और मेरी बहन को बचपन से ही नियमित अखबार में आने वाली जो वर्ग पहेली होती थी ना, उन्हें भरने का बड़ा शौक रहा है, और ये बच्चों से लेकर बड़ों तक हर आयु वर्ग के लिए पहेलियां लाभदायक होती हैं। कुछ मिनट में पहेलियां सुलझाना दिमाग के लिए उतना ही उपयोगी है जितना शरीर के लिए नियमित व्यायाम। हम किसी पहेली का उत्तर खोजते हैं तो हमारा मस्तिष्क तर्क, कल्पना, स्मरण शक्ति और सूझबूझ का एक साथ में उपयोग करता है। ये मानसिक अभ्यास सोचने समझने की क्षमता को निखारता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। बहुत सही बात लिखी है इन्होंने कि एक साथ कितनी चीजें जुड़ जाती हैं।
1: बिल्कुल। तो और एक हमारे जो श्रोता हैं वो भी लिखते हैं कि शारीरिक जो शारीरिक कसरतें हैं उनके साथ दिमागी कसरतें भी बहुत ज़रूरी होती हैं। वैसे हर रोज़ सुबह 5 बजे उठकर बिस्तर पर हल्की कसरत करने के बाद प्राणायाम व्यायाम कर लेता हूँ, साथ में रेडियो पर विविध भारती भी सुनता रहता हूँ, दिमागी मनोरंजन रूपी कसरत भी हो जाती है। रही बात पहेलियों की, तो न्यूज़पेपर में हर रोज़ आ रहे क्रॉसवर्ड्स पजल सॉल्व करके टाइम पास करने के साथ साथ दिमागी कसरत भी हो जाती है।
0: बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि पहेलियां ही नहीं, मैं जो सखी सहेली और सुरीला सफर प्रोग्राम में कमेंट्स लिखता हूँ उसके लिए भी शब्दों और वाक्यों को सोचता हूँ और उससे मेरी दिमागी कसरत होती है। जो लेखन का कार्य करते हैं बिल्कुल उनके लिए हर बार नए शब्द चुनना, और जो काव्य गद्य लिखते हैं क्योंकि एक जैसा ना हो, एक रास्ता ना लगे, हर बार सुनने वालों को पढ़ने वालों को नया लगे, इसके लिए नए शब्दों को सोचना, नई रचनात्मकता लेकर आना अपने लेखन में, ये बहुत बड़ी दिमागी कसरत है।
1: और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पहेलियां सुलझाना एक बेहतरीन मानसिक व्यायाम है, ये ना केवल हमारे दिमाग को सक्रिय और चुस्त रखता है बल्कि सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और याददाश्त को भी बढ़ाता है। दिमागी कसरत के कुछ मुख्य फायदे भी हैं, जैसे कि एकाग्रता में सुधार होता है, पहेलियों को समझने और उनका जवाब खोजने से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है, समस्या सुलझाने का कौशल आता है, ये हमें किसी भी स्थिति में लीक से हटकर सोचने में मदद करती हैं, और साथ ही नए शब्दों और तर्कों का उपयोग करके दिमाग की नसें भी मजबूत होती हैं और नई यादें बनती हैं और कुछ नया और मजेदार भी होता है, इसे हमें तनाव से राहत मिलती है।
0: हमारे श्रोता ने तो बहुत सारी पहेलियां लिखकर भेज दी हैं और अंत में उन पहेलियों के जवाब भी लिखकर भेजे हैं।
1: अच्छा
0: और देखिए एक बड़ा सुंदर संदेश है, पहेलियों के विभिन्न पहलुओं और सुरागों यानी उनके क्लूज को याद रखने से शॉर्ट टर्म मेमोरी मजबूत होती है।

0: ये हमारे श्रोता ने लिखा है। आगे ये कहना चाहते हैं कि समस्या सुलझाने की क्षमता, पेचीदा सवालों को हल करते समय मस्तिष्क के वे हिस्से सक्रिय होते हैं जो तार्किक सोच और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाते हैं। एकाग्रता और धैर्य, एक सही उत्तर तक पहुंचने के लिए गहराई से सोचना पड़ता है, जिससे फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में सुधार होता है।
1: बिल्कुल, और सबने इसी तरह से लिखा है कि पहेलियां वास्तव में मस्तिष्क के लिए बेहतरीन दिमागी कसरत है। हमारे श्रोता कहते हैं ये हमारी सोचने की क्षमता, तर्क शक्ति और रचनात्मकता को चुनौती देती हैं, जिससे मानसिक विकास होता है।
0: तो भाई अब थोड़ा सा मनोरंजन कर लिया जाए,
1: एक गीत
0: क्यों ना गीत सुने।

0: आरती तुम सच सच बोलो कि बारिश जब होती है तो कई बार ना चटपटा खाने का मन करता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए बड़ी हानिकारक चीज है।
1: क्योंकि मैं खाती हूँ सब।
0: हाँ तुम बहुत चटोरी हो, ये बात पहले भी श्रोताओं के सामने तुम मान चुकी कि तुम बड़ी चटोरी हो, और बारिश में भी चटपटा हम देख के, जब हम देखते ना कि तली भुनी चीजें बन
1: हाँ
0: रही हैं, कहीं पकौड़े हैं या कुछ और है, चाट
1: बस
0: बन
1: मन
0: रही
1: नहीं
0: है,
1: मानता है फिर तो एकदम से
0: लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखना
1: बिल्कुल
0: बहुत
1: नहीं, ये
0: जरूरी
1: तो
0: है।
1: जरूरी
0: इसीलिए मैंने तुमसे सवाल किया कि स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए इन चीजों को तुम कितना अनदेखा अनसुना करती हो, अपने नाक कान बंद कर लेती हो,
1: नहीं,
0: बताओ।
1: बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखती हूँ मैं कि बारिश के मौसम में मैं बहुत ही कम, कभी खा लिया अगर पकौड़े वगैरह, पकौड़े खा लिए तो फिर मैं उस दिन बहुत ही हल्का, कभी एक टाइम खाना खाती हूँ वो भी बहुत ही हल्का सा, खिचड़ी ले लिया कुछ इस तरीके का, क्योंकि ना बहुत ज्यादा हैवी जब हो जाता है ना तो वो आपकी परेशानी कर सकता है,
0: बिल्कुल,
1: तो इस तरीके
0: आपको
1: का करना
0: अपच
1: चाहिए।
0: की समस्या इस मौसम में बहुत जल्दी हो सकती है, और आपकी जब पाचन समस्या अगर जवाब दे गई तो वो बहुत सारी समस्याएं एक साथ लेकर आ जाएगी। इसीलिए कोशिश करें कि इन दिनों में साफ उबला हुआ पानी पिए
1: बिल्कुल।
0: या फिर फिल्टर किया हुआ पानी पीजिए, ताजा और गर्म गर्म भोजन करें, खुले में जो भी बिकने वाली खाद्य पदार्थ हैं उन्हें खाने से
1: बिल्कुल,
0: बचें।
1: बारिश में तो बिल्कुल भी बाहर का ना खाएं तो अच्छा है, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: अभी हमें पता नहीं होता है कि वो किस तरीके से बन रहा है, या क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा बारिश पड़ी है उसके बाद हम गए हैं तो फिर बहुत नहीं बिकते हैं वो सामान, तो किस तरह से हम खा रहे हैं, उसी समय का बना हुआ है, ताजा है या बहुत देर का रखा हुआ है, तो वो हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल
0: और
1: सकता
0: हम
1: है।
0: सिर्फ खान पान की ही बात क्यों करें भाई, बारिश में कई बार आसपास में पानी जमा हो जाता है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना गड्ढे जहां पानी सूखता
1: हाँ
0: ही
1: हाँ
0: नहीं है, कुछ ऐसी अगर चीज रखी है हमारी छत पर, हमारे आंगन में, गलियारे में, वहां पानी भर गया, वो सूख नहीं रहा, तो वहां मच्छर बहुत जल्दी पनप सकते हैं, जो बहुत सारी बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया इन्हें लेकर आ सकते हैं। तो वहां पानी का भराव ना होने दें, और घर में भी

0: मच्छरदानी या मच्छर भगाने वाले जो अन्य साधन हैं जो आपके स्वास्थ्य को नुकसान ना पहुंचाएं, उनका उपयोग कर सकते हैं। फल सब्जियां जो भी आप बाजार से लेकर आएं, उनको धोकर अच्छी तरह सुखा कर फिर उपयोग करें, तो ये सारी सावधानियां रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और साथ ही अगर हम कहीं से बाहर से भीग गए, भीग कर आए, तो तुरंत कपड़े बदलें और अच्छे से उसमें हम स्नान करें या कुछ इस तरह की चीज़ें करें, और जिससे कि ना भीगे ना रहें।
0: और बच्चों और बुजुर्गों की स्वास्थ्य के लिए खास तौर पर ध्यान रहना देना होता है, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी पावर है या रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। इसीलिए इसमें इस मौसम में फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो मौसम के अनुसार हल्के और पूरे शरीर ढकने वाले कपड़े भी आप बच्चों को पहना सकते हैं और बुजुर्गों के लिए भी इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी भी है ये चीज़ें करनी। और साथ ही हमारे श्रोता भी हैं, वो भी लिख रहे हैं कि वो कहते हैं कि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य, सुरक्षा और यात्रा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ताज़ा और गर्म भोजन करें, बाहर जाते समय रेनकोट या छाता साथ में रखें, सड़क पर जल भराव और खुले हुए तारों से आप दूर रहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बारिश होती है उस समय अगर कोई खुला हुए तार पड़े हुए हैं तो बहुत ये जानलेवा भी हो सकता है। तो और भीगने के बाद तुरंत सूखे कपड़े पहन लीजिए और पैरों को अच्छी तरीके से सुखा लीजिए।
0: हमारे श्रोता ने संदेश में लिखा है कि बारिश के मौसम में हमेशा हाइड्रेटेड रहें, यानी कि पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। मौसम ठंडा होने के कारण अक्सर कर लोग कम पानी पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन होने की संभावना रहती है। भरपूर मात्रा में गुनगुना या फिर साफ पानी पिएं। ताज़ा और सुपाच्य भोजन हो इसका ध्यान रखें, क्योंकि बारिश में पाचन शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। तो बाहर का तला भुना खाने की बजाय खिचड़ी, दलिया, सूप और इस तरह का हल्का भोजन करें।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश के मौसम में नमी और बढ़ते प्रदूषण के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, स्वस्थ रहने के लिए हमेशा उबला हुआ फिल्टर किया हुआ पानी पिएं, और जो खाने जो बाहर सड़क पर बिक रही हैं चीज़ें और जो ढकी हुई नहीं है उनको आप खाने से बचिए, उन्हें मत खाइए। भीगने पर तुरंत सूखे कपड़े पहने और मच्छरों से बचने के लिए किसी चीज़ का आप उपयोग कर सकते हैं।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि बरसात के मौसम में नमी और दूषित पानी के कारण डेंगू, मलेरिया, वायरल बुखार और पेट का संक्रमण, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। इनसे बचने के लिए हमेशा उबला हुआ शुद्ध पानी पिएं, स्ट्रीट फूड से बचें। मच्छरों के बचाव के लिए हमेशा घर के आसपास पानी जमा ना होने दें, और जैसा हमने बताया भी था कि मच्छरदानी भी आप उपयोग कर सकते हैं।
1: बिल्कुल। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि बारिश में भीगने से बचें और अगर भीग जाएं तो घर आते ही सादे या गुनगुने पानी से नहा लें और सूखे कपड़े पहने, हाथों को अपने साफ रखें, बैक्टीरिया से बचने के लिए समय समय पर हाथों को साबुन से धोते रहें, आंखों के संक्रमण से बचने के लिए जो बरसात में अक्सर ऐसा होता है कि आंखों का आना या जैसे कंजक्टिवाइटिस जो है वो हो जाता है, उसका खतरा बढ़ जाता है, तो अपनी आंखों को बार बार छूइए मत और साफ पानी से उन्हें धोइए।
0: बिल्कुल। हमारे सभी श्रोता जो सुन रहे हैं इन संदेशों को, वो बहुत इस बात का ध्यान रखेंगे। अगले संदेश में लिखा गया है कि बरसात का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं और हरियाली लेकर आता है। कितनी अच्छी बात लिखी है, लेकिन आगे फिर लिख रहे हैं कि इस मौसम में स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। बारिश के दिनों में साफ और ताज़ा भोजन का सेवन करना चाहिए, बाहर के खुले अस्वच्छ पदार्थों से बचना है, उबला स्वच्छ पानी, हाथों की सफाई, इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, और जल्दी से जल्दी सूखे कपड़े पहन लेने चाहिए ताकि सर्दी जुकाम से बचा जा सके। और ये तो बहुत सही बात है कि कपड़े एक बार गीले हो गए और लगातार बारिश है तो उनको सुखाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या होती है। और नमी वाले कपड़े अगर हम पहने रहेंगे तो शरीर पर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है।
1: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बरसात का मौसम सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी जैसा होता है, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको अस्पताल पहुंचा सकती है, इसलिए स्वच्छता को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अगर आपको या परिवार में किसी को भी तेज बुखार, अत्यधिक थकान, उल्टी या दस्त की शिकायत हो तो खुद डॉक्टर बनने के बजाय तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से आप परामर्श करिए।
0: और अब मुझे लगता है कि हमें एक गीत सुन लेना चाहिए, और ये होगा आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: सखी सहेली कार्यक्रम से लेते हैं विदा दीजिए चंचल वर्मा
1: और आरती श्रीवास्तव को अनुमति नमस्कार, नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में फैले हमारे श्रोता जुड़ते हैं विविध भारती से, हमारे इस कार्यक्रम से, और करते हैं अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश। ये कार्यक्रम हम और आपको जोड़ने में एक सेतु का काम करता है और इससे आपका और हमारा जुड़ाव यकीनन और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। तो हमारे पहले कॉलर कौन है, जरा देखते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन?

0: बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बड़ा गांव जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ। मांगी लाल धाकड़ है।
0: मांगीलाल जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं
1: जी मैम, आपके प्रोग्राम में सुन के बहुत खुश होता हूँ। विविध भारती बम्बई के कार्यक्रम में कम से कम 15-20 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी जी मैम।
0: अच्छा, आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो पीछे से मोरों की आवाज आ रही है।
1: जी जी मोर है, मैं अभी खेतता हूँ खेती बाड़ी पर।
0: अच्छा, मतलब आप
1: और
0: अपने खेत में बैठकर बात कर रहे हैं और वहाँ पर मोर आते हैं?
1: जी जी मोर आ रहे हैं, मोर बहुत पक्षी हैं, मोर हैं, कोयल हैं, सभी तरह की पक्षी नजर आते हैं हमारे गांव में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगता होगा ना?
1: जी जी मैम, अपनी खेती बाड़ी में मक्का बो रहा थी, उसमें यहीं बैठा हूँ मैं, यहीं से बात कर रहा हूँ।
0: तो आपके शहर का या गांव का मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे गुना एमपी में मौसम मतलब अभी तो बादल हो रहे हैं, पानी भी बरसा था 2-4 दिन पहले,
0: अच्छा
1: अभी तो अच्छा मौसम है।
0: चलिए, तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा ना?
1: जी नहीं, फसल का नुकसान नहीं है, बारिश की फसल है, मक्का है, कुछ नुकसान नहीं है उसमें।
0: तो ज्यादा मोर आते हैं क्या?
1: हाँ बहुत मोर है हमारे गांव में।
0: उनको खेतों में आने से कैसे रोकते हैं आप ताकि फसल को नुकसान
1: नहीं
0: नहीं हो?
1: बिल्कुल नहीं रोकते हैं, वो नुकसान नहीं करती हैं, अभी थोड़ी बहुत चौंकती हैं, चौंक के निकल जाती हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
1: और आपके प्रोग्राम में हेलो फरमाइश, रहतनामा, सखी सहेली और आपकी जो मन चाहेगी तो ये पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है, आप हमारे नियमित श्रोता हैं और कार्यक्रमों को सुनते हैं विविध भारती के। आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: आज मुझे बंजारन का गीत है, ये जीवन इतनी बार मिले, हर बार मुझे साजन का प्यार मिले।
0: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ, हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं रहीम जी?
1: परवानी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे है, मजों में है। 1975 से हम विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे जो श्रोता हैं वो इतने नियमित हैं कि हम कई बार हैरान हो जाते हैं जानकर कि विविध भारती के कार्यक्रमों के अलावा उनके जिंदगी में और कुछ है ही नहीं।
1: विशेषकर खास तौर पे एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, कि देखिए आकाशवाणी एक ऐसी माध्यम है के जरिए से हमारा काम भी चलता है और हम प्रोग्राम भी सुन पाते हैं। रही दूसरी बात, अभी देखिए आज के तारीख में जवान बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की ओर जा रहे हैं और कम उम्र में उनको चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
0: जी, आपने एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और वाकई ये समस्या हर घर में है कि बच्चे जो हैं मोबाइल से लगे रहते हैं और उनकी आंखों के अलावा उनके दिमाग में भी जो है, आप देखिए ना कितनी तरह की बातें घर कर गई हैं जो बातें उस उम्र में नहीं होनी चाहिए और इसलिए इतने क्राइम हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ये सब मोबाइल की ही देन हो रही है।
1: हम ये चाहते हैं सभी माता पिताओं से, बच्चों को, बच्चे देश के भविष्य होने के कारण ऐसा है कि आपको बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है, मोबाइल में नहीं देना है। और हम बच्चों को पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छे, जैसा आप आलोचर विविध भारती से बात करते हैं, हमारा देश पूरा आपकी आवाज सुनता है और हम तो रात दिन रेडियो के साथ ही रहते हैं। जैसा ही प्रोग्राम चलता है तो हम रेडियो लगा के बैठ जाते हैं, हमारा काम भी चलता है और रेडियो का प्रसारण भी चलता है।
0: बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।
1: हम यहाँ पे परभणी महाराष्ट्र में हम बिल्डिंग आरसीजी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहीम साहब, कि आप खुद ये समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए और आपको इतनी धूप में इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने हमें दिया है। अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: हमें दीदी आज के इस प्रोग्राम में अमर अकबर अंतोनी फिल्म का गीत सुनना है, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे, ये गीत सुनना है।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी राम स्वरूप रेखवार बोल रहे हैं, ग्राम भगौता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: राम स्वरूप जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया है आपकी कृपा से। आप कैसी हैं मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं। और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे यहाँ तो बारिश हो चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई। अभी 2-3 दिन से पानी बस नहीं गिरा है।
0: अरे वाह,
1: बहुत बादल हो रहे हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है ना
1: जी। गाना सुना दीजिए, फैरवी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है।
0: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: बली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ मंदाकिनी जी।
1: जी,
0: विविध भारती तो मैं करीबन 30 साल से मैं जुड़ा हूँ। विविध कागज अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चालना और आपस में मेलजोल होता था बहन जी।
1: जी,
0: मेरी उम्र 84 चालू है, अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से, और आपसे गुप्तगु करने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है।
1: जी बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता, या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं।
0: ये मेरा जो शौक है ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्य वर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है, और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए हैं बहन जी।
1: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: फिल्म प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, फरेबी, धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है। वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इसमें कवि ने समाज में जो एक अवडंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है बहन।
1: जी बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है, और ये
0: जी
1: गीत जो है हमें झकझोर देता है, और मेरी पसंद का भी ये गीत है। चलिए आप
0: जी
1: सबके साथ मिलकर हम भी इस गीत को

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं पप्पू चंदेल बोल रहा हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी?
1: बढ़िया हूँ।
0: क्या कर रहे हैं इस समय?
1: ड्यूटी पर आ गया है, बेकरी में है।
0: अच्छा, बेकरी में काम करते हैं।
1: जी जी जी।
0: क्या समय है आपके आने का?
1: हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक बीच में आ जाते हैं।
0: और रात तक?
1: 9:30 तक।
0: अच्छा, चलिए, नौकरी आराम की है ना?
1: जी जी जी।
0: तो बताइए, कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में? बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं?
1: सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकीज है, सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम मतलब बेकरी आइटम जो है।
0: आप भी कुक का काम करते हैं?
1: जी जी, मैं केक बनाता
0: हूँ। अरे वाह, कौन सा केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ?
1: नॉर्मली चलता है पाइन एपल ब्लैक फॉरेस्ट जो चलते हैं, मतलब वही आदत है। हाँ, लेकिन पाइन एपल जो है वो मतलब हमेशा ये
0: हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है पाइन एपल का, है ना? एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप?
1: बन जाते वाला जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब 60-70 के जैसे निकल, मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही जैसा चल जाए।
0: कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए?
1: 20 साल हो गए, 2002 से लगा था।
0: 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
1: विधाता पिक्चर का। मैम, हाथों की चंद लकड़ियों का, विधाता पिक्चर का।
0: गाने के बोल बताइए।
1: हाथों की चंद लकड़ियों का, ऐसा कुछ।
0: चलिए, आपकी पसंद का।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी राम राम।
0: नमस्कार। राम राम, कैसे हैं?
1: जी बहुत बढ़िया है। मदाकिनी जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: शहर नहीं, हमारा तो गाँव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया, अच्छा ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान धून है, लग चुका है अभी।
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी हाँ जी, वो चावल जैसे पहले समा पौध बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 20 दिन हो गया लगाए को।
0: अच्छा, तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम?

0: हम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी, श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: खैर नहीं, हमारा तो गांव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया, अच्छा ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान जो है लग चुका है अभी,
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी, हाँ जी, वो चावल जैसे पहले समा पौध बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 20 दिन हो गया लगाए को। हाँ
0: अच्छा, तो अभी
1: जी
0: खेती के अनुकूल है मौसम?
1: मैडम जी, बरसात चाहिए, कोई परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, और वैसे मौसम अच्छा है।
0: मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना?
1: बिल्कुल जी, अब हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर।
0: बिल्कुल सही कहा आपने।
1: तकरीबन चावल की, गन्ने की खेती है हमारे यहाँ।
0: तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है? ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी
1: मैडम
0: पड़ती है?
1: जैसे एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है ना, इस तरह हम जमींदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है।
0: ये बात तो खैर सही है।
1: दिन में 3 दफा घेरा लगाना, सुबह शाम दोपहर। क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह।
0: बिल्कुल सही कहा आप। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना?
1: नहीं, 4-5 दिन तक, उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहता। 4-5 महीने पानी भरा नहीं रहना चाहिए।
0: अच्छा, भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं।
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलियान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको हम।
1: मैडम जी क्रांति फिल्म से सुना दो, चना जोर गरम।
0: चलिए, तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंग सुसोता संघ बस स्टैंड बंदा विदेश से लक्ष्य को चाय वाले को ना चाय पी लो दीदी।
0: चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए।
1: चाय की दुकान है दीदी।
0: अरे चाय की दुकान है आपकी?
1: हाँ दीदी।
0: तो पहले नाम बताइए, फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं, किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं।
1: लक्ष्मण रेकवाल।
0: लक्ष्मण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बंडा वेली जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: स्वागत है आपका। अब बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली आपने?
1: कम से कम 30 वर्ष हो गए हैं चाय की दुकान को।
0: अच्छा, 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान?
1: हाँ, हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकान हो गई हैं अब चाय की, और नाश्ता है, और नाश्ता भी अब खाना हो तो केक मलाई की बर्फी है, और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है, ये सब मिलेंगे हमारे पास।
0: हमारे तो मुँह में पानी आ गया ये सब सुन के, तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत?
1: हाँ बहुत आते हैं, और चाय ऐसी रहती है कि ये अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी।
0: हाँ, ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं उबालते रहते हैं?
1: ऐसा नहीं होता है, साफ होती रहते हैं, और वे हमारी तो चाय रखते ही रहती है, धरी नहीं रहती है।
0: हाँ, तो किसमें पिला रहे हैं चाय? कूलर में पिला रहे हैं या प्लास्टिक की गिलास में पिला रहे हैं?
1: गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डिस्पोजल भी है।
0: तो क्या डालते हैं चाय में, फटाफट बताइए और फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय?
1: हम चाय बिल्कुल अच्छी बने तो अच्छी खोला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं
0: और गर्मी में इलायची।
1: हाँ हाँ।
0: चलिए कौन सा गीत सुनवाए आपको बताइए?
1: आज मोहरा पिक्चर है, ना कजरे की धार ना मोतियों बिहार, तुम कितनी सुंदर हो।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार,
0: नमस्कार,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं बताइए अपने बारे में।
1: मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा में रहती हूँ, मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर का साथ जो लोग रहता है ना, तो उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा काम मिलजुल के करता हूँ।
0: अच्छा,
1: तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश है गीत, और जो 3 बजे शैली कार्यक्रम आती है ना, तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है। हाँ
0: अच्छी बात है आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में
1: हाँ
0: बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह। प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा।
1: हाँ त्रिपुरा तो रबड़ी खेती है, तो इसका तो ज्यादा लोग रबड़ी खेती करती है। तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है, तो इसके लिए पर्यटक आती है तो घूम के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है। त्रिपुरा
0: कहाँ कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में बताइए।
1: में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, इसके बाद और बहुत ही जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माए का मंदिर में गया था, तो बहुत अच्छी है मंदिर, घूमने के लिए बाहर से लोग आते हैं।
0: अरे वाह क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं, उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी
1: जी
0: सामान।
1: त्रिपुरा में तो बांस की खेती में बहुत अच्छी है, बांस का जो क्या
0: काफी अच्छा सजावटी
1: बोलते हैं
0: सामान
1: तो,
0: बनते हैं ना। और
1: हाँ सामान
0: हथकरघा का भी
1: बांधते
0: काफी काम होता है त्रिपुरा में।
1: हैं। जी,
0: चलिए अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप।
1: मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम, हरे कृष्ण हरे राम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती
1: जी। नमस्ते
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं?
1: प्रेम से सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम, खरपतवार निकालने का जोरे चला रहे हैं। और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: क्या तैयारी करनी पड़ती है?
1: और आपको बताऊँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हंकाई जुताई होती है और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है?
1: जी सोयाबीन की फसल हमारी मतलब आपको बताऊं 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊं आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं नदियां तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूं लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा लगातार?
1: जी हाँ, लगातार होती है दो फसल, उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में।
0: अच्छा, फिर उन 3 महीनों
1: हाँ
0: में
1: जी,
0: क्या होता है?
1: उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना,
0: हाँ?
1: जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो गर्मी में खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर से मतलब जमीन की उर्वरता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं।
0: तो
1: जी
0: आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना? जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी उसके बाद गेहूं लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे तीनों फसलें?
1: तीनों फसल एक साथ होती है।
0: अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा?
1: हाँ जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है।
0: तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं फसल आएगी तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार?
1: जी जैसे तो बीज उपचार करके ही लगाया जाता है और उसके बाद में जब फफूंद होती है कभी कभार तो इल्लियाँ भी होती है सोयाबीन में, मटर में,
0: हाँ,
1: लहसुन में, तो इसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का, और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम।
0: अच्छा,
1: तो ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल ऐप्स के आने से हमें आपको बताऊँ स्पष्ट प्रसारण मिलता है और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे विद्यार्थी चलता ही रहता है, उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली, हवा महल, सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम, वो भी सुनते हैं। और पिटारा के तहत हमने काफी पहले भी पत्रा वाले जो कार्यक्रम आता था ना विद्यार्थी से, जी उसमें काफी लेटर लिखे।
0: बताइए, इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, अब कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: फिल्म का नाम है प्यासा सावन और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
0: बिल्कुल सही गाना है, चलिए अभी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाजनी दीदी नमस्ते, मैं दूसरी बार बात हो रही मैं आपके साथ मेरी।
0: अरे वाह क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: हाँ अच्छे हो, कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए क्या करते हैं आप विजय जी, बात तो हुई होगी आपसे।
1: मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी।
0: अच्छा,
1: उम्र अभी 63 है।
0: अच्छा तो समाज के लिए क्या काम करते हैं विशेष कोई?
1: दिव्यांग के लिए काम करता हूँ, जो कुछ सरकारी योजना आते हैं वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ।
0: उनको आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू हुई हैं?
1: हाँ, वो बताने का, उनका पेंशन, वो जो कुछ करने का,
0: फिर उनकी उनकी मदद करते हैं। हाँ हाँ ठीक है।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया आ रहे हैं दीदी, सभी सखी सहेली हेलो सहेली हेलो फरमाइश गीत माला सभी सदाबहार नगर में अभी जो शुरू हो गया ना, वो मन चाहे गीत वो भी बढ़िया कार्यक्रम है।
0: उसके लिए आपने लिखा कोई खत? हमें
1: खत मैं लिखने, मैं ब्लाइंड हूँ दीदी।
0: लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना?
1: हाँ सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, दिन भर में रेडियो चालू रहता है, मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी यहाँ पास में है वो भी सुनता हूँ।
0: क्या बात है।
1: उसके बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है जी
0: वो सभी कार्यक्रम।
1: मैं एम पर सुनता हूँ विविध भारती का कार्यक्रम, जो हमारे राजकोट अहमदाबाद वडोदरा उसके पर सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं?
1: वो बिल्कुल,
0: कहीं न कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से इस समय आने वाला है।
1: जो रेडियो मेरे पास है, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दीदी, और मैं पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आते थे ना छोटे छोटे,
0: हाँ
1: वो लेके सुनता था।
0: वो अभी भी आपके पास है?
1: अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है, अभी बड़े रेडियो, वो अपर्णा के 2 रेडियो है मेरे पास अभी।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: पैसा फेंको तमाशे देखो, ममता जी और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन।
0: चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ।

0: बेटा ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: तुम बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया। चलो जो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते मंदाकिनी दीदी।
0: नमस्ते नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन जनाब बोल रहे हैं?
1: मैं बडनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराव शृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
0: हिम्मत जी, स्वागत है आपका।
1: कैसे दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
0: क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं।
0: अच्छा, जैसे
1: बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ दीदी मजदूरी।
0: तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7:30 से पहुँच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं?
1: शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं।
0: अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो और भी।
1: हाँ दीदी, बारिश नहीं हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ कुछ जगह हो रही दीदी बारिश।
0: तो बताइए आप वहाँ काम करते हैं, फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं?
1: अमरावती स्टेशन पे FM लगा रहता है, वो साइट पर सब मजदूर लोग सुनते हैं दीदी बडनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विविध भारती हमको क्लियर सुनाई देता है।
0: और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको, जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं?
1: हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा 1 घंटे के लिए।
0: अच्छा, बताइए आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दू तो की बात राज रहने दो।
0: अच्छा,
1: इशारों को इशारों में।
0: हाँ, ये कव्वाली है।
1: हाँ, मोहम्मद रफी साहब
0: और आशा भोसले की आवाज में।
1: आशा भोसले और बिंदु और प्रांत के ऊपर फिल्म आई गई, फिल्म कव्वाली दीदी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कव्वाली है।
1: और रेखा नवीन निश्चल इसमें अभिनेता थे, हीरोइन थी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की है कव्वाली।

0: कर समझो राज को राज रहने दो।
1: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम, जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228607028 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: हेलो फरमाइश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000 लोग रहते हैं जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों पर तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए।

0: ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति वी बी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। यह टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में विश्व आर्थिक मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने बताया कि उन्होंने सतत विमानन ईंधन को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ अर्थात जमीन से सीधे उड़ान और लैंडिंग के लिए बुनियादी ढांचे के बारे में चर्चा की। विद्युत मंत्रालय ने हितधारकों के परामर्श के लिए कॉरपोरेट औसत ईंधन दक्षता 2027 मानदंडों का आज मसौदा जारी किया है। ये प्रस्तावित मानदंड 2027-28 से 2031-32 की अवधि के दौरान देश में बिक्री के लिए निर्मित या आयात किए जाने वाले M1 श्रेणी के यात्री वाहनों पर लागू होंगे। M1 श्रेणी के अंतर्गत वे मोटर वाहन आते हैं जो यात्रियों को ले जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं और जिनमें ड्राइवर के अलावा 8 से अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता नहीं होती है। मंत्रालय ने 6 अगस्त तक इस मसौदा मानदंडों पर हितधारकों और आम जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस खंड पर यह अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। भारतीय नौसेना 20 से 23 जुलाई तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में ऑपरेशन सदर्न रेडिनेस 26-2 की मेजबानी करेगी। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 4 दिवसीय बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भारतीय नौसेना के नेतृत्व वाला संयुक्त कार्यबल 154 संयुक्त समुद्री बलों CMF के साथ मिलकर कर रहा है। यूक्रेन की संसद ने आज एक बड़े सरकारी फेरबदल में सरही कोरित्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कोरित्स्की को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। कोरित्स्की मई 2025 से यूक्रेन की राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगाज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जा रही है। ये यात्रा विस्तृत अनुष्ठानों और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो रही है। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।
2: हिंदी समाचार अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, सभा की शुरुआत हम करेंगे भक्ति गीतों से। कार्यक्रम होगा वंदन, इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे बेहतरीन भक्ति गीत। शाम 5:30 पर हम प्रस्तुत करेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6:05 पर आप सुनेंगे भोजपुरी समाचार बुलेटिन हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

शाम 6:10 पर आप सुनेंगे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसानवाणी। प्रायोजक होंगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे भेंटवार्ता, विषय होगा धान की रोपनी कैसे करें। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर सदानंद राय और भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। शाम 6:40 पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सांझ गीत।

शाम 7:15 पर आप सुनेंगे सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम गुड इवनिंग रोहतास। इसके अंतर्गत हम एक नज़र डालेंगे कैमूर और रोहतास की स्थानीय गतिविधियों पर। शाम 7:25 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

शाम 7:50 पर हमारे श्रोता आनंद लेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मन पसंद का। शाम 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे भोजपुरी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक धारा। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे गज़लों का कार्यक्रम महफिल। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रस रंग। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। रात्रि 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके तुरंत बाद अंग्रेजी में समाचार 11:05 पर हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। और रात्रि 11:10 पर हमारी आज की यह सभा संपन्न हो जाएगी।

श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हो चुके हैं। आइए सभा की शुरुआत करते हैं कुछ बेहतरीन भक्ति गीतों से। कार्यक्रम है वंदन। पहला भक्ति गीत हमने लिया है ब्रज शर्वरी की खूबसूरत आवाज़ में।

कार्यक्रम का पहला भक्ति गीत अभी आपने सुना ब्रजेश्वरी की आवाज़ में। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं अनूप जलोटा की आवाज़ में।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

संजय गिरी द्वारा गाए इसी भक्ति गीत के साथ है। भक्ति गीतों का कार्यक्रम वंदन अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम के आज के इस एपिसोड में सभी युवा साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हैं आप अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ। श्रोताओं, मौसम तो बारिश का है और हम उम्मीद करते हैं कि बारिश का आनंद अभी आप जितनी लेनी चाहिए उतना आप नहीं ले पा रहे, क्योंकि बारिशें अभी उतनी हो नहीं रही है। उमस भरी गर्मी से सभी परेशान हैं, लेकिन बारिश का आनंद कुछ और ही होता है। सावन आने के आसपास का जो मौसम होता है वो काफ़ी सुहावना होता है, लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हो और हम बारिश का आनंद लें। श्रोताओं, बारिश केवल एक शब्दों का मेल नहीं बल्कि सावन और मानसून की धड़कन है। जब काले बादल छाते हैं, रिमझिम बूंदें गिरती हैं और ठंडी हवा दिल को छूती है, तब हर एहसास दिल में समा जाता है। प्यार, जुदाई, यादें और दिल की गहराइयों को खूबसूरती से अगर बयां करना हो तो हम बारिश के मौसम का आनंद जरूर ले सकते हैं। भारत में सावन का मौसम केवल मौसम नहीं बल्कि भावनाओं का उत्सव है। भींगी हुई यादें, तन्हा रातों की बरसात और मोहब्बत से भरे पल, सब कुछ इन मानसून के मौसम में बारिश की बूंदों में समा जाते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं एक बेहतरीन गीत से, जिसे गाया है जावेद अली ने। फिल्म का नाम है चल जा बापू।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता अभी सुन रहे हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी। श्रोताओं, हम जानते हैं कि जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा हमारे देश में कितना धार्मिक महत्व रखता है। आज हम इसकी बात करते हैं और अपने श्रोताओं को इससे जुड़ी कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं। श्रोताओं, जगन्नाथपुरी रथ यात्रा एक ऐसा पर्व है जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भक्तिभाव से मनाया जाता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन पूरी रथ यात्रा का उत्सव जोश उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस समय भगवान श्री विष्णु के जगन्नाथ स्वरूप का पूजन होता है, जिसमें जगन्नाथ जी के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा यात्रा पर निकलते हैं। यह रथ यात्रा देश विदेश के लिए एक खास आकर्षण का समय होता है, जिसमें भक्ति के अनेकों रंग छलकते दिखाई देते हैं। देश के कोने कोने से लोग इस यात्रा का दर्शन करने आते हैं और इस यात्रा में रथ को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को भी आगे बढ़ता देखते हैं। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु इस रथ यात्रा को देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। एक अलग ही महाभक्तिमय माहौल में इस पर्व को मनाया जाता है। श्रोताओं, आइए हम जानते हैं कि कैसे यह भक्ति की धारा सभी के दिलों को छूते हुए आगे बढ़ती चली जाती है और परंपराओं की डोर आज भी उसी निष्ठा भक्ति से मजबूत बनी हुई है। जगन्नाथ रथ यात्रा हर साल ओडिशा के पुरी शहर में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। यह वह समय होता है जब आषाढ़ माह के गुप्त नवरात्रि चल रहे होते हैं। आषाढ़ नवरात्रि के दूसरे दिन द्वितीय गुप्त नवरात्रि महाविद्या का पूजन होता है और वहीं पूरी रथ यात्रा भी अपने आरंभ में होती है। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, जिन्हें विष्णु का अवतार माना गया है, और उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को भव्य रथों पर बैठाया जाता है और पूरी के मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक ले जाया जाता है। आषाढ़ माह द्वितीया तिथि समाप्त 9 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव हर दिन अपने एक अलग भक्ति रंग को दर्शाता है। यह यात्रा लगभग 9 दिनों तक चलती है और श्रद्धालुओं की अपार भीड़ इसमें भाग लेती है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी रथ यात्रा भी कहा जाता है, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं, जिसे केवल एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति और श्रद्धा का उत्सव कहा जा सकता है। यह उत्सव ओडिशा राज्य के अतिरिक्त पूरे देश में भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। दुनिया के अनेक देशों में इस यात्रा का आयोजन होते

देखा जा सकता है। जगन्नाथपुरी का मंदिर जिस तरह से अपनी रहस्यात्मकता के लिए विश्व प्रसिद्ध रहा है, उसी तरह से यहाँ होने वाली रथ यात्रा भी उस रहस्य के साथ संबंध बनाती दिखाई देती है। कुछ कथाओं के अनुसार जब श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तब उनकी अस्थियां समुद्र में बहा दी जाती है। ऐसी मान्यता है, ऐसा मानना है कि वे अस्थियां एक लकड़ी के टुकड़े के रूप में ओडिशा के तट पर मिली थी, जिसे दरु ब्रह्म के नाम से पुकारा गया। उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ बनाई गई। राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु के आदेश पर इन मूर्तियों का निर्माण करवाया और पुरी में जगन्नाथ मंदिर की स्थापना की, और आज तक यहाँ का मंदिर और यहाँ होने वाले अनुष्ठान परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। इतिहासकारों के अनुसार रथ यात्रा की शुरुआत 12वीं शताब्दी में हुई थी, जब पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने कराया था। तभी से यह यात्रा एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस यात्रा के लिए जो रथ तैयार किए जाते हैं वह भी बहुत खास होते हैं, जिनका निर्माण कार्य कई महीनों पहले शुरू हो जाता है। रथ यात्रा के लिए 3 भव्य रथों का निर्माण होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष होता है, जो लाल और पीला रंग लिए होता है, जिसमें 16 पहिए होते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 44 फीट रहती है। ध्वज गरुण ध्वज होता है। भगवान बलभद्र का रथ तल ध्वज कहलाता है, जिसका रंग लाल और नीला होता है। इसके 14 पहिए होते हैं, जो ऊंचाई लगभग 43 फीट के करीब होती है। इससे पर लगा ध्वज ताल ध्वज होता है। देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन होता है, जिसका रंग लाल और काला होता है। इसमें 12 पहिए होते हैं और इसकी ऊंचाई लगभग 42 फीट के करीब होती है। इसमें लगा ध्वज पद्म ध्वज होता है। इन रथों को पारंपरिक लकड़ी से हर समय साल नया बनाया जाता है, जो विशेष रूप से मंदिर के कारीगरों, रथ के शिल्पकारों द्वारा तैयार किया जाता है। इन शिल्पकारों की सेवाएं पीढ़ियों से चली आ रही हैं। रथ यात्रा से लगभग 15 दिन पहले भगवान की प्रतिमा को बाहर लाकर कलश के जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद प्रतिमाएं बीमार पड़ जाती हैं, जिसे अंसर कहा जाता है, और फिर वे कुछ दिन दर्शन नहीं देती। नेत्र उत्सव और 9 यवन दर्शन का होना, जैसे ही भगवान स्वस्थ होते हैं उनके नेत्रों की नई रचना की जाती है और फिर भक्तों को उनका 9 यवन दर्शन कराया जाता है। रथ यात्रा के दिन तीनों रथों को विशाल जनसमूह के बीच खींचा जाता है। यह कार्य चेरा पहरा अनुष्ठान के बाद प्रारंभ होता है, जिसमें गजपति राजा सोने की झाड़ू से रथों के मार्ग की सफाई करते हैं। गुंडीचा यात्रा का होना, तीनों रथ गुंडीचा मंदिर तक ले जाए जाते हैं। यह मंदिर भगवान की मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 9 दिन विश्राम करते हैं। बहुड़ा यात्रा में, जिसे वापसी यात्रा भी कहा जाता है, यह 9वें दिन पर होती है। इसमें भगवान अपने मुख्य मंदिर लौटते हैं। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा एक ऐसी धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक धरोहर है, जो वर्षों से चलायमान है, जो जीवन को मुक्ति की ओर ले जाने का साधन भी है, साथ ही भक्ति की अविरल धारा को, जो बिना किसी अवरोध के सदैव हमारे समक्ष उपस्थित रहती है। तो श्रोताओं, अभी हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे थे जगन्नाथपुरी रथ यात्रा के बारे में। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कुछ संदेश।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12

0: बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कार्यक्रम में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कुछ संदेश। श्रोताओं अब हम बात कर लेते हैं भारतीय न्याय संहिता की, BNS की। भारत गणराज्य की आधिकारिक आपराधिक संहिता है जो 1 जुलाई 2024 को लागू हुई और इसने औपनिवेशिक काल की भारतीय दंड संहिता IPC 1860 का स्थान लिया। इसमें 20 अध्यायों में 358 धाराएं हैं जो समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए देश के दंड कानूनों को समेकित और आधुनिक बनाती है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएँ हैं, जैसे कि नए और आधुनिक कृत अपराध IPC के विपरीत BNA से आतंकवाद, संगठित अपराध, छोटे मोटे संगठित अपराध और भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या जैसे अपराधों के लिए विशिष्ट परिभाषाएं और दंड निर्धारित करता है। सामुदायिक सेवा, भारत के दंड इतिहास में पहली बार मामूली या छोटे अपराधों के लिए सजा के एक मान्यता प्राप्त रूप के रूप में सामुदायिक सेवा को शामिल किया गया है। नए और आधुनिकृत अपराध को शामिल तो किया ही गया है, साथ ही साथ सामुदायिक सेवा को भी भारतीय न्याय संहिता में जगह दिया गया है। इसके अलावे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को आसान पहुंच के लिए एक समर्पित अध्याय में समेकित किया गया है और झूठे वादों या कपटपूर्ण साधनों के तहत यौन संबंध बनाना अपराध घोषित किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में महिलाएँ और बच्चों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। महिलाओं पर होने वाले दुराचार या बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के खिलाफ अपराध को आसान पहुंच के लिए एक समर्पित अध्याय में समेकित किया गया है। इसके कई धाराएं इसमें जोड़े गए हैं। इसके अलावा निरस्त प्रावधान, राजद्रोह के अपराध को एक नए प्रावधान से प्रतिस्थापित किया गया है जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को लक्षित करता है। इसके अतिरिक्त धारा 377 जो समलैंगिकता से संबंधित है और व्यभिचार को संहिता से आधिकारिक तौर पर हटा दिया गया है। कॉरपोरेट और वित्तीय अपराध, BNS संपत्ति के बेईमानीपूर्ण दुरुपयोग के लिए कम से कम 6 महीने की सजा निर्धारित करता है और बिखरे हुए आपराधिक विश्वासघात प्रावधानों को एक ही अनुभाग में समेकित करता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं यह हैं कि नए और आधुनिकीकरण अपराध, सामुदायिक सेवा, महिलाएं और बच्चे, निरस्त प्रावधान, कॉरपोरेट और वित्तीय अपराध पर इस भारतीय न्याय संहिता में काफ़ी विशेष बल दिया गया है। तो श्रोताओं कार्यक्रम में अब आइए सुनते हैं कैलाश खेर की आवाज़ में यह बेहतरीन भक्ति गीत है।

युवाणी कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने सुना कैलाश खेर की आवाज़ में यह बेहतरीन देशभक्ति गीते। तो श्रोताओं, इसी के साथ है आज का युवाणी कार्यक्रम का यह एपिसोड अब यहीं संपन्न होता है। अपने रेडियो साथी रवि भूषण को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। FM बैंड के 103.4 MHz पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। अब आइए लेते हैं आनंद एक बेहतरीन भोजपुरी लोकगीत का। गायक कलाकार हैं मंदाकिनी सिंह।

लोकगीत अभी आप सुन रहे थे मंदाकिनी सिंह की आवाज़ में। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की घड़ी में थोड़ी ही देर में शाम के 6:05 होने वाले हैं। अब आइए सुनते हैं भोजपुरी समाचार बुलेटिन अपने आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब रहुआ डॉक्टर निखिल आनंद गिरी से भोजपुरी में समाचार सुने। देश में काल से हाइड्रोजन से चले वाली रेलगाड़ी के शुरुआत हो रहल बा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर देश के पहला हाइड्रोजन ट्रेन के हरी झंडी दिखा के रवाना करी हैं। ये ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चली। ये तकनीक ट्रेन के चलावे खातिर हाइड्रोजन के बिजली में बदल देवेला। ये प्रक्रिया में उप उत्पाद के रूप में खाली पानी के भाप निकलेला, जकरा से कार्बन उत्सर्जन तनको ना होला। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना के 150 सरकारी स्कूलन में लाइव क्लास के शुरुआत कैले बाड़न। श्री चौधरी शास्त्री नगर के राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एगो कार्यक्रम में एकर विधिवत उद्घाटन कैले। ई योजना के तहत 9वीं से 12वीं क्लास तक के विद्यार्थियों खातिर लाइव ऑनलाइन क्लास, AI आधारित पढ़ाई में मदद, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट, नोट्स और ई मॉक टेस्ट के सुविधा दिहल गइल बा। एकर साथे साथे JEE, नीट और CUET जैसन प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी खातिर भी सुविधा दिहल जाए। मुख्यमंत्री पटना के 10 गो मॉडल स्कूलन में JEE और नीट के मुफ्त कोचिंग व्यवस्था के भी शुरुआत कैले। यही महीना के आखिर तक पटना के सब सरकारी स्कूलन में लाइव क्लास शुरू कर दिहल जाए। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव खातिर आज नाम वापसी के आखिरी दिन एगो उम्मीदवार नाम वापस ले लेलन। नामांकन पत्रन के जांच के बाद अब कुल 25 गो उम्मीदवार चुनाव मैदान में बाड़न। कुल उम्मीदवारन के चुनाव चिन्ह कल बांटल जाए। ई उपचुनाव में NDA के तरफ से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जन स्वराज पार्टी से प्रशांत कुमार प्रमुख बाड़े। उपचुनाव खातिर वोटिंग 30 जुलाई के हुई और वोटन के गिनती 3 अगस्त के कैल जाए। प्रदेश में मॉनसून पूरा तरीका से सक्रिय बनल बा। मौसम विभाग अपन पूर्वानुमान में कहले बा कि अगला एक हफ्ता तक राज्य के बेसी भाग में बारिश के माहौल बनल रही। विभाग अगला 24 घंटा के दौरान अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण और सिवान जिला में तेज हवा के साथ पानी बरसे के अनुमान जतौले बा। उन्हें भागलपुर, जमुई, खगड़िया, मुंगेर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग में कई जगह पर ठनका और बारिश के लेके येलो अलर्ट जारी कर गई बा। विभाग अगला 2 दिन के दौरान जहानाबाद, नालंदा और पटना जिला में अलग अलग जगह पर बहुत भारी बारिश के आशंका के देखत ऑरेंज अलर्ट

0: जारी कइले बा। विभाग से मिलल जानकारी के मुताबिक पिछला 24 घंटा के दौरान पश्चिम चंपारण के मैनाटाड़ में सबसे ज्यादा 154 मिलीमीटर से बेसी बारिश रिकॉर्ड कइल गइल। देशभर में आज भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा निकालल जा रहल बा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के द्वितीया के मौका पर आयोजित ई धार्मिक यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़ भाई बलराम और बहिन सुभद्रा रथ पर सवार होके भक्तन के दर्शन देवेली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रथ यात्रा के बधाई देले बाड़न। बिहार के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी राज्य के लोगन के रथ यात्रा के शुभकामना देले बाड़न। सर्वोच्च न्यायालय CBSE पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू कैला पर चिंता जता के कहलस कि एकरा से लइकन में तनाव बढ़ी। न्यायालय सुझाव देले बा कि एकरा के 5वीं चाहे 6ठी क्लास से ही शुरू कैल जाए ताकि लइकन लोग एकरा के आसानी से सीख सके। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति R महादेवन के पीठ केंद्र सरकार से कहलस कि 9वीं क्लास से तीसरी भाषा के शुरुआत ना करल जाए। सर्वोच्च न्यायालय सब राज्यन और केंद्र शासित प्रदेशन के बूढ़ और असाध्य बीमारी से पीड़ित कैदी लोगन के जल्दी चाहे समय से पहले रिहाई खातिर एगो ठोस नीति बनावे और ओकरा के लागू करे के निर्देश देले बा। न्यायालय देशभर में ऐसन मामलन पर विचार करे खातिर एक समान व्यवस्था सुनिश्चित करे के संबंध में ए नीति के 3 महीना के भीतर अधिसूचित करे के आदेश दिले बा। रोहतास जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नहौना गांव में जमीन विवाद में भइल गोलीबारी के मामला में पुलिस 3 गो आरोपी लोग के गिरफ्तार कैलस। सीवान में JP चौक के दरबार रोड के लगे एगो साड़ी के दुकान में भयंकर आग लगला से बहुत आर्थिक नुकसान भइल। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लागल रहे। एकरे साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक समाप्त भइल।
1: भोजपुरी समाचार बुलेटिन अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6:10 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: सब श्रोता भाई बहन लोग के, सुगिया बहन के नमस्कार,
1: और
0: भाई रउआ के भी नमस्कार,
1: सब श्रोता भाई लोग के, मनु भाई के भी नमस्कार बा, और साथे साथे सुगिया बहन रो के नमस्कार बा। देखिए सुगिया बहन, आजकल कहीं कहीं बारिश होता और कहीं कहीं धूपे उगल रहता। आजकल के बारिश भी ऐसा बाटे ऐसे कि मानसून अभी आ नहीं है पावल बनना से, तो मानसून आई नहीं है तो
0: ऐसे ही अब तक तो हमनी के मनु भाई मानसून आ जाए के चाहत रहे
1: जी, जी।
0: लेकिन हमनी के पेड़ इतना काट रहल बनी जा, मतलब एक आदमी तो जिम्मेवार नहीं के, सब कोई मिल के जिम्मेवार बा। पेड़ के वृक्षारोपण हमनी के ज़्यादा से ज़्यादा करे के चाहिए ताकि मानसून जल्दी आ सके। और
1: यही में देखी कि सरकार भी हमनी के इतना छूट दे रखले बा, माने लइकन से लेके लइकन के गार्जियन तक सरकारी स्कूल में जहाँ भी बा एक पेड़ माँ के नाम, यानी एगो पेड़ जरूर लगाई कम से कम अपना जीवन काल में, आ दिखाई कि ये पेड़ से कितना लाभ बा।
0: जी जी।
1: तो सुगिया बहन हमनी के पेड़ पौधा आ समय आगे लगावे के, ई जौन सीजन चल रहल बा जुलाई अगस्त, ई बहुत बढ़िया समय बा। ये समय हमनी के जहाँ भी खाली जमीन बा, बहुत से लोगन के अगल बगल घर के बहुत से प्रति जमीन बा, ओकरा में पपीता, नींबू, अमरूद, यानी ऐसा चीज लगाई जो

0: से कि लाभ भी नहीं हुआ और माने आर्थिक स्थिति भी।
1: देखिए मनु भाई, खाली हमने के लाभ के ही बारे में ना सोचे के नहीं, सोचे के चाहिए, लेकिन हमने के कम से कम ये भी सोचे के चाहिए कि अगर एक पेड़ हम लगा देता नहीं तो और कुछ दे ही जाए ना, कम से कम छाया और ऑक्सीजन तो जरूर मिली।
0: एकदम एकदम इतने ना, एक पेड़ से रहुआ पानी से लेके भोजन तक सब कंट्रोल करता पेड़ पौधा। नीचे जो जमीन में पानी बा ये कोनो गंगा जी या समुद्र नहीं खे, ये पेड़ पौधा के जड़ से ही पानी नीचे जाता और वे पानी जब एकत्र होला बालू में वे हमनी के निकाल के पिए नहीं। तो देखिए इतना बढ़िया काम कर रहा बा, ऑक्सीजन जो देता हवा, हवा में जो ऑक्सीजन हम ले तरी जा पेड़ पौधा की
1: जी। एक साथ साथ पशु पक्षी के भी, पशु के ना पक्षी के रहे के आवास भी मिल जाए
0: जी,
1: जो ना वो अपना घोंसला बना सके। तो ये देखी ये स्थिति में मतलब मानसून नहीं के आवत, ये स्थिति में धान के रोपनी जो बा बहुत प्रभावित होता, लेकिन फिर भी अब का करल जाए।
0: हाँ, धान के रोपनी शुरू
1: बा,
0: हर जगह जी जी हर जगह शुरू बा, चाही भी किसान भाई लोग के जैसे भी बा माने बोरिंग से, नलकूप से, नहर से, जहाँ जब पानी मिले धान के रोपनी समय से करी। ताही आज के कार्यक्रम के संक्षिप्त रूपरेखा देखल जा। अभी अभी हमनी के आज की खबरें के तहत कुछ कृषि संबंधी खबर जानल जी सुगिया भाई, आ फिर हमनी के आज की बातें के तहत एगो भेंट वार्ता सुनल जाए। आज के विषय रही धान की रोपनी कैसे कल जाओ, भेंट वार्ता कर रहा डॉक्टर सदानंद राय और यहाँ से भेंट करब डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी। नई उम्र की नई फसल के तहत धान के रोपनी समय पर करे के एक बारे में जानी। आज के नसीहत के तहत हमने जानल जाए कि बरसात में सफाई पर दिहल जाओ ध्यान
1: जी, तो बहुत जरूरी
0: जी। आप संदेश भी सुनल जाए और कार्यक्रम के अंत में हमने के मौसम के पूर्वानुमान भी जानल जाए, कुछ माने संदेश बा वो भी जानल जाए, तो कुछ सलाह भी रही आ कुछ संदेश सुनल। तो आई अब हम देखते हैं कि खबर लेकर हुआ तैयार बानी, तो बताई आज के कृषि संबंधी खबर का बा
1: जी। देखिए कुछ खबर बा जो मना में पहला खबर बा कि खरीफ बुआई और मौसम पर सलाह। देश के कई हिस्सा में मानसून के सक्रियता के बीच किसान के मौसम विभाग खेत में जल निकासी के उचित व्यवस्था करे के तथा धान, सोयाबीन और अन्य खरीफ फसल के नियमित निगरानी करे के सलाह दिले बा। अगला खबर बा धान उत्पादक खातिर भावांतर योजना। मध्य प्रदेश सरकार धान उत्पादक किसान के भावांतर योजना के लाभ देवे खातिर घोषणा कैले बा। एकरा तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के अंतर के भरपाई किसान के दिहल जाए। माटी के जांच खातिर नया मोबाइल ऐप, केंद्र सरकार किसान खातिर एक नया मोबाइल ऐप लावे के तैयारी में बा, जौना से माटी के सेहत के जानकारी और खेती से जुड़ल महत्वपूर्ण सलाह डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करावल जाए। खरीफ फसल के बुआई पर निगरानी। खरीफ सीजन 2026 में धान, सोयाबीन और कपास जैसन फसल के बुआई के प्रगति पर सरकार लगातार नजर रख रहल बा। किसान के समय पर बुआई, उन्नत बीज के उपयोग और मौसम आधारित कृषि सलाह अपनावे के अपील कइल गइल बा।
0: देखिए एक और खबर और सुगिया
1: जी बताएं,
0: हमने के यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के तैयारी, निवेश नीति के मंजूरी मिलल। देश की यूरिया में आत्मनिर्भर बनावे के दिशा में केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठौले बा। केंद्रीय मंत्रिमंडल यूरिया खातिर राष्ट्रीय निवेश नीति को मंजूरी दे देलबा। यह नीति के उद्देश्य बा देश में 800 नया गैस आधारित यूरिया प्लांट स्थापित करके लगभग 1 करोड़ टन अतिरिक्त उत्पादन क्षमता तैयार करे के बा, जौना से देश के यूरिया के जरूरत पूरा कल जा सकत बा। नई नीति में निजी, सरकारी और सहकारी क्षेत्र के प्रोत्साहन दिहल जाए। वर्तमान में देश में यूरिया के सालाना मांग लगभग 4 करोड़ टन बा, जबकि घरेलू उत्पाद हमनी के लगभग 3 करोड़ टन बा। तो देखिए इस दिशा में सरकार बहुत अच्छा पहल कर रहा बा, यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के तैयारी कर रहा बा। तो इस तरह से देखिए खबर तो बहुत अच्छा अच्छा रहा और वह बड़ा बढ़िया सुनैनी। आई अब हमनी के थोड़ा धान के रोपनी कैसे कल जाओ एक बारे में जानल जाओ। आज के हमनी के बानी
1: विशेषज्ञ
0: डॉक्टर
1: सदानंद राय,
0: यहाँ से बातचीत करब डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी, आई सुनल जाओ।
2: किसान भाइयों, धान की रोपनी जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के पूरी जुलाई तक की जाती है। कई किसान भाई अगस्त के प्रथम सप्ताह तक करते हैं, लेकिन धान की रोपनी हम लोग कैसे करें ये जानना जरूरी है वैज्ञानिक ढंग से खेती करने के लिए। और ये जानकारी देने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सदानंद राय को, वनवासी कृषि विज्ञान केंद्र अधौरा कैमूर में। कृषि

0: वैज्ञानिक हैं, तो कैसे धान की रोपनी की जाए ये बताएंगे आपको। सबसे पहले तो राय जी ये बताइए कि खेत की तैयारी कैसे की जाए।
1: जी देखा जाए, जैसा कि आप जानते हैं कि किसान भाई धान की खेती शुरू कर चुके हैं, नर्सरी डाल चुके हैं और गर्मी में उन्होंने अपने खेत की तैयारी कर रखा है, गर्मी में खेत की तैयारी कर रखा है, लेकिन अभी जब उनको रोपनी करना है तो रोपनी के लिए खास कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत है।
0: जी,
1: कि जैसे अभी जिस खेत में रोपनी करना है, जैसा कि आप जानते हैं कि रोपाई का समय चल रहा है,
0: जी,
1: तो उस खेत में पानी लगा करके बढ़िया से कदवा कर देना चाहिए ताकि उसके जो खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएं।
0: जी,
1: और जो कदवा करेंगे तो कदवा करते समय, चूंकि ये खेत की तैयारी चल रही है, कदवा करके उसको फिर पाटा चला करके समतल करेंगे, तो कदवा करते समय ही उसी समय जो अनुशंसित उर्वरक है
0: जी
1: उसको मिलाना चाहिए।
0: जी,
1: जैसे आपको प्रति हेक्टेयर के लिए 100 किलोग्राम नत्रजन की जरूरत है
0: जी,
1: और 40 किलोग्राम सुपर फास्फेट की जरूरत है और 20 किलोग्राम पोटास की जरूरत है
0: जी,
1: तो इसके लिए किसान भाई या तो
0: यूरिया तत्व रूप में
1: जी
0: जी
1: तो या तो यूरिया देते हैं, तो अगर यूरिया देते हैं तो 220 किलो प्रति हेक्टेयर यूरिया की आवश्यकता होगी
0: जी।
1: अगर यूरिया नहीं है, उसके जगह पर अमोनियम सल्फेट देते हैं, तो अमोनियम सल्फेट में उन्हें 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अमोनियम सल्फेट अनुशंसित है
0: जी।
1: इसके बाद
0: ये लंबी अवधि के प्रभेदों के लिए है कि जो छोटी अवधि के प्रभेद हैं उनके लिए?
1: नहीं, ये मध्यम
0: जी, मध्यम
1: जी, मध्यम से लेके लंबी अवधि तक के लिए अच्छी पैदावार के लिए ये अनुशंसित जो है फर्टिलाइजर, जो इसके खाद है, उर्वरक है, वो देना चाहिए
0: जी।
1: सिंगल सुपर फास्फेट, इसकी मात्रा 375 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है और म्यूरेट ऑफ पोटास 65 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, और साथ में किसान भाई जिंक सल्फेट का प्रयोग जरूर करें। और जब ये अनुशंसित जो उर्वरक हैं, इनमें से आप नाइट्रोजन की मात्रा 1/4 छोड़ दें
0: जी,
1: नाइट्रोजन या आप या यूरिया दें या अमोनियम सल्फेट दें
0: जी,
1: दोनों में से इसको 1/4 छोड़ करके सिंगल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा कदवा करते समय ही खेत में मिला दें
0: जी,
1: और मिलाने के बाद बढ़िया से उसको समतल कर दें, ताकि उसमें समतल करके 5-6 घंटे छोड़ दें।

0: देखिए कुछ तकनीकी खराबी के चलते
1: हमने के पूरा भेंट वार्ता ना सुन पाई जा
0: एक रखते हमने के खेत बा आ देखिए सुगिया बहिन हमने के धान के रोपनी जैसे भी कर जाओ माने पुराना पद्धति तो छोड़े के पड़ी
1: जी जी
0: तबे हमने के उत्पादन अच्छा ले सकते हैं।
1: देखिए मनु भाई धान हमने के प्रमुख खरीफ फसल है
0: जी जी
1: एकर अच्छा पैदावार काफी हद तक यह बात पर निर्भर करेला कि रोपनी सही समय पर कई जाओ। यदि रोपनी बहुत देर से होला तो फसल के बढ़वार प्रभावित होला
0: जी जी
1: कीट और रोग के प्रकोप बढ़ सकता और अंततः उत्पादन में कमी भी आ सकता
0: जी। एक देखिए इतने नहीं धान के रोपनी जो पुराना पद्धति से होत रहे ओकरा के करीब करीब किसान लोग छोड़िए चुकल बा पहले पूरा मुठा के मुठा लगा के
1: जी जी अब एक धान रोपा
0: कल्ला तबे बनी जब ओकरा के जगह मिली
1: बढ़े के जगह
0: जगह मिली। देखिए धान के रोपनी के माने समय पर कर जाओ आ ढंग से कर जाओ श्री विधि से कर जाओ या पैडी ट्रांसप्लांटर से कर जाओ जैसे भी करी लेकिन इतना अच्छा से करी कि राउत पैदावार बढ़े आ समय पर करब तो सुगिया बहन धान के रोपनी करे से ओकरा के पर्याप्त धूप मिलेगा पौधा के आ पोषण मिलेगा आ दाना जो मतलब मजबूत होला और चमकदार बनेला और लागत भी कम लगेला जौना से आय हमनी के बढ़ जला बाजार में कर अच्छा कीमत भी मिलेला। धान के रोपनी के सबसे उत्तम महीना जून और जुलाई होला रोपाई के समय
1: अभी हमनी के चल रहा है
0: देखी तो ये समय जरूर रोपाई के समय पौधा के उम्र जो नर्सरी में डलबे जा 20 से 25 दिन रहे के चाहिए तबे हमनी के ओकरा के लगाओ जी आ समय पर रोपाई कर जा तो जड़ जौन बा माटी में जल्दी पकड़
1: लेवेला
0: आ समय पर रोपाई कर तो पैदावार तो बढ़े करी आ साथे साथे ओकर दाना जौन बा बहुत पुष्ट हो
1: इतने ना जौना क्षेत्र में अब तक वर्षा कम भइल बा वहाँ किसान भाई खेत के नमी के सुरक्षित रखे के प्रयास करी और वर्षा होते ही रोपनी के कार्य पूरा कर ली जहाँ सिंचाई के सुविधा उपलब्ध बा वहाँ के तक खेती मतलब कर ही एकदम हर हाल में हमने के कर लेवे के चाहिए
0: जी जी।
1: साथ ही कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित किस्म और

0: वैज्ञानिक सलाह के पालन भी जरूर करे के चाही।
1: देखी सोयाबीन अतने नहीं हमनी के जोन रोपनी करते हैं धान के
0: जी,
1: तो ओकरा के इतना माने जो नया वैज्ञानिक तौर तरीका आइल बा एकरा में बहुत कम बीज लगता खेत में लगावे खातिर आ एकरा से का होता कि जोन धान के कल्ला बा बहुत बढ़िया निकलता आ ओकरा से पैदावार भी हमनी के काफी बढ़ रहा बा। तो ऐसा कहल जाओ तो देखी ओकर फुटाव जोन बा धान के बहुत अच्छा होला, पौधा के जड़ मजबूत होला आ प्रत्येक पौधा से अधिक संख्या में कला निकलला जोना से पैदावार अच्छा होला।
0: अच्छा होला।
1: समय पर अगर रोप दिल जाओ धान के तो तापमान और नमी अनुकूल रहेला तो धान के पौधा खातिर बहुत अच्छा रहेला, जोना से पौधा के शुरुआती झटका जोन बा ओकरा से उबरे खातिर मदद मिल जाला आ कीट और रोग से भी हमनी के बच सकते हैं अगर धान के हमनी के ये समय लगा लेते हैं सही समय पर तो कीट और माने रोग ओकरा में कम लगेला आ देर से यदि लगा देल जाए धान तो ओकरा के समझी कि ओकरा में बीमारियन और कीट के तो प्रकोप काफ़ी हो जाला, इस हमनी के समय पर सही चक्र में फसल के पके के माने तैयारी में आ जाला यही से लगा चाहिए।
0: देखिए समय पर कैल गई रोपनी न केवल अधिकतम उत्पादन देला बल्कि फसल के गुणवत्ता के भी बेहतर बनावेला और किसान के भी आय बढ़ावे में सहायक होला।
1: देखिए कितना बढ़िया बात बा, तो आए कुछ संदेश सुन ला फिर आगे हमनी के चर्चा कर।
0: जी जी
2: ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतरवर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
3: सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है।
2: कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक है। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है उनका कहना है कि ये सारे संचय निराधार हैं।
4: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
5: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं, और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं।

0: है और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है जो फल जो देता है हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वहीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं, मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
2: ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
3: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
4: अभी नभी हमनी के संदेश सुनत रही जा
5: जी।
4: हाँ, अब हमनी के आज के नसीहत देखल जा
5: जी। बरसात में सफाई पर दें।

0: मूल्य भी घोषित करती है, ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है।
1: सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं।
2: अभी हमने के संदेश सुनत रही जा
3: जी।
2: आई अब हमने के आज के नसीहत देखल जा
3: जी। बरसात में सफाई पर दें ध्यान, यह विषय पर हमने के कुछ बात कही जा
2: जी।
3: देखिए मनु भाई, बरसात के मौसम खेती किसानी खातिर जितना महत्वपूर्ण बा, उतना ही स्वास्थ्य की दृष्टि से भी संवेदनशील होला। यह मौसम में थोड़ा सा लापरवाही कई बीमारी के जन्म दे सकता। ऐसे हमनी के आज यह विषय पर बात कर रहल बनी जा। बारिश के दौरान घर और आसपास पानी जमा मत होके दी। रुकल पानी मच्छर और के पनपे के बड़ कारण बनेला, जौना से डेंगू मलेरिया और चिकुनगुनिया जैसन बीमारी फैल सकता।
2: जी जी।
3: घर के आंगन नाली और पशुशाला के नियमित सफाई करी तथा पानी के निकासी के उचित व्यवस्था बनौले रखी। पिए खातिर हमेशा साफ और सुरक्षित पानी के उपयोग करी। यदि संभव हो तो पानी के उबाल कर या छान के ही पीही। भोजन के ढक के रखे के चाहिए और बासी भोजन के सेवन से हमनी के बचे के चाहिए।
2: जी जी।
3: बच्चा के बाहर के खुला और अस्वच्छ भोजन न खाए दही और खाए से पहले और शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोए के आदत डलाने के चाहिए। किसान भाई बहन, पशु के स्वास्थ्य के भी विशेष ध्यान रखें। पशुशाला के साफ और सूखा रखें तथा गीला चारा अधिक समय तक जमा न होके दही। एकरा से पशु में संक्रमण और बीमारी के भी खतरा कम हुई। याद रखें, स्वच्छ घर स्वच्छ गांव और स्वच्छ खेत ही स्वस्थ परिवार और समृद्ध किसान की पहचान है। बरसात के यह मौसम में थोड़ा सा सावधानी हमनी के और परिवार के अनेक बीमारी से बचा सकता।
2: जी जी। देखिए सुगियाबीन, अतले नहीं बरसात में साफ सफाई न कर जा तो उकरा से मौसम में नमी और उमस बढ़ जाला। अब बैक्टीरिया वायरस अलगी फंजाई सब जितना बड़ा सन जीवाणु कीटाणु सब बढ़ जाला सन। एकरा से हमनी के का होला कि बहुत तरह की सर्वकनि डेंगू मलेरिया
3: संक्रामक बीमारी
2: दम बढ़ जाई। आ एकरा से हमनी के देखी जहां घर के आसपास पानी लग जाला तो ओजा मच्छर के प्रकोप ज्यादा हो जाला। अगर घर में के ऊपर छत पर कोनो टायर उड़ रखले बनी और टायर में वर्षा के पानी रुक गई जम गई तो ओहिजा भी मच्छर पनप दलसन और बड़ी खतरनाक मच्छर होल सन। ऐसन कुल मच्छरन के जो निवास स्थान बा ओनी के हमनी के नष्ट कर दी। साफ सफाई करी, टायर के जहाँ जगह ओजा फेंकी, ओमे पानी छत पर भी न लगे दी, कहीं घर के आसपास पानी लगे से
3: जमा होके ही मत दे
2: जी। ओकरा से संक्रमण के बीमारी जोन बा काफी बढ़ जाला। नमी और सीलन के कारण कपड़ा और दीवार पर भी बैक्टीरिया और फफूंद पनपे लागल सन, जौना से त्वचा में एलर्जी और एक तरह से सांस लेवे में भी दिक्कत होके लगेगा। पेट के बीमारी जिस तरह बतनी गंदा पानी पिए से तो बरसात में पानी गंदा हो ही जाला। अधिकतर पानी जो बारिश में खराब में माने कुछ ना कुछ
3: बैक्टीरिया हो ही जाला,
2: प्रदूषण दूषित हो जाला। तो ओकरा के माने दूषित हटावे खातिर हमनी के पानी के बेहतर करके जिसरवा करी कि उबाल के
3: फिल्टर करके भी पियल जा सकता।
2: ऐसे करके हमनी के अगर पियल जाओ तो काफी बीमारियन से हमनी के बच सकता है। जौना से हमनी के जैसे कि उल्टी बा, दस्त बा, फूड पॉइजनिंग बा, ये सबसे हमनी के बच सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन जोन बा एकरा से बचाव करे खातिर हमनी के बरसात में साफ सफाई बहुत जरूरी बा। बारिश के मौसम में पैर और हाथ लंबा समय तक गीला रहला,
3: भींगल रहला
2: जौना से हमनी के फंगल इन्फेक्शन के खतरा बनल रहला। नियमित साफ सफाई करी आ खुद साफ
3: से बचाव खातिर हमनी के जब हाथ धोनी जा वही घरी बढ़िया से पोछ लेवे के चाहिए,
2: सुखा लेवे के चाहिए
3: कपड़ा में।
2: जी सुखा लेवे तो एकरा से हमनी के बच सकत जा। सांस और दुर्गंध के समय माने एकरा से दूर हो सकत बा। बहुत तरह के घर में नमी के कारण एगो ऐसन अजीब दुर्गंध आवेला जौना से हमनी के माने सांस लेवे में या कोनो दुर्गंध के समस्या उत्पन्न हो जाए तो साफ सफाई रह जी तो रखल जी तो एकरा से दुर्गंध ना आई आ कोनो तरह के बीमारी ना आई। तो सफाई बहुत जरूरी बा, चाहे रहो आपन होके, चाहे घर के बुजुर्ग के होके, चाहे बाल बच्चन के होके या पशु पक्षी के, सबके सफाई करत रही। बहुत से घर में देखते हैं कि बहुत दिन तक झाड़ू ना लगे, तब झाड़ू ना लगे तो घर में कीटाणुए न पड़ी सब।
3: बिल्कुल
2: तो एक घड़ी झाड़ू लगाई पोछा लगाई सूखल रखी।

0: वो घर में धूप आवे के चाहिए, हवा लगे के चाहिए, जो ना सही जमीन जो ना फर्श
1: सूखल
0: रहे। सूखे से का होला कि बहुत तरह के बीमारी दूर रहे, कीटाणु ना पनपे।
1: देखिए मनु भाई, बहुत बार देखा जाला कि छोटा छोटा बच्चा सबके नाखून बढ़ल रहेला।
0: जी जी,
1: नाखून पर भी हमनी के विशेष ध्यान देवे के चाहिए और बच्चा के सिखावे के भी चाहिए कि जो नाखून और उंगली के बीच में जो मतलब धूल कण या बैक्टीरिया जो भी होला, ओकरा से हमनी के खाए के माध्यम से पेट में जाई और ओकरा से बहुत तरह के बीमारी पैदा हुई।
0: और तू नाखून बढ़ल बा ना, बहुत से लइकन के देखिने के मुंह में उंगली लगा के और नाखून काटल सन दांत से, तो दांत से जो नाखून कट रहल बा ओकर तो डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट गंदगी जो मुंह में जाता। तो ऐसा कुल आदत जो लइकन के होके गार्जियन के अभिभावक के चाहिए कि आदत के छोड़ाई, मुंह में उंगली लगा के नाखून काटे वाला बीमारी हटाई। इससे रोगो परेशान हो खब दवाई बच्चा भी परेशान हुई। पानी खूब पी आप बढ़िया स्वच्छ रही आप सुंदर रही। आई अब हमने कुछ कृषि सलाह बा एकरा बारे में जानल जा।
1: जी
0: तो देखिए पहला कृषि सलाह बा हमनी के कि
1: चावल खातिर बा
0: जी
1: कि पिछला कुछ दिन में भइल वर्षा जल के लाभ उठाते हुए धान के सबौर सुरक्षित सुरभित भागलपुर कतरनी सबौर दीप किस्म के बुआई करी। बुआई से पहले बीज के कार्बेंडा जिम 2.0 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज के दर से उपचारित करी तथा 10 से 15 दिन के नर्सरी में समय पर निराई गुड़ाई करी। धान के किस्म साबौर मोती धान, साबौर सोना आदि के सीधा बुआई भी कर सकतनी। पुराना नर्सरी में समय पर खरपतवार नियंत्रण करी, जौना से किसान के पास सिंचाई के सुविधा उपलब्ध हो और उपाय करी।
0: देखिए तेरे साथ मक्का के देखी, मक्का के खरीफ मक्का के बुआई हमनी के आसमान साफ रहला पर यथाशीघ्र संपन्न करी। खेत के जुताई में 10 से 15 टन गोबर के सड़ल खाद प्रति हेक्टेयर के दर से व्यवहार करें। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम नेत्रजन और 60 किलोग्राम स्फूर और 50 किलोग्राम पोटास का व्यवहार जरूर करें। अनुशंसित मक्का के किस्म जिसे बा सुआन देवकी शक्तिमान 1 शक्तिमान 2 राजेंद्र शंकर मक्का 3 गंगा 11 इस सब के अरहर खातिर देखी 49 जौन जमीन बा ओकरा पर अरहर के हमनी बुआई आसमान साफ रहला पर करे के चाहिए। बहार पूसा 9 राजेंद्र अरहर 1 और राजेंद्र अरहर 2 किस्म के बुआई हमनी 60x30 सेंटीमीटर के दूरी पर कर सकते हैं। अंतिम जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नेत्रजन 45 किलोग्राम स्फूर और 20 किलोग्राम पोटास और 20 किलोग्राम गंधक के प्रयोग जरूर करी। अरहर खातिर अनुशंसित बीज दर 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बा। आम के बागवानी करते देखी विशिष्ट सलाह दिया जाता कि आम जौन बा आम लीची और फलदार वृक्ष खातिर
1: खोदल गई गड्ढा में माटी के साथ अनुशंसित मात्रा में खाद उर्वरक एवं कीटनाशी देकर ऊपर तक भर दी। मौसम आम के पौधा के रोपाई खातिर अनुकूल बा। गड्ढा के मिट्टी बैठ जाए पर पौधा के रोपनी करी। कलमी आम खातिर 10x10 मीटर तथा बीजू आम खातिर 12x12 मीटर के दूरी रखी। आम्रपाली किस्म के सघन बागवानी खातिर 2.5x2.5 मीटर के दूरी पर कही जा सकता। परिपक्व वृक्ष में प्रति वर्ष प्रति पौधा 1 किलोग्राम नाइट्रोजन 300 ग्राम फास्फोरस 700 ग्राम पोटास और 80 से 100 किलोग्राम अच्छा तरह से सड़ल गोबर के खाद के प्रयोग करे के चाहिए।
0: जी एक साथ साथ हमनी के भैंस पालन बा पशुपालन में सलाह दिया जाता है कि माह के अंत तक भैंसन के ब्याह शुरू हो जाला। ब्याह पशु के हमनी विशेष ध्यान रखी। गला घोटू और लंगड़ी रोग से बचाव खातिर जून महीने में टीका जितना पशु के न लगा लो के एह माह में अवश्य लगवा दी। जैसे हमनी का हुई कि पशुओं के बहुत सी बीमारी
1: और लंगड़ी बीमारी से बचाव हुई।
0: आगामी देखे हमनी के वर्षा के संभावना देखते हुए खड़ा फसल में सिंचाई के स्थगित कर दी। कोनो भी फसल जोन खड़ा बा खाद और कीटनाशक के छिड़काव आसमान साफ रहला पर ही करी। सुगिया भी हमनी के मानसून जोन बा तो मानसून हमनी के अभी जोन बाटे बहुत माने नहीं आ पाए। बहुत पहले से मानसून जोन बा ई हो गइल बा कि बारिश आके अब
1: रुक जाता
0: रुक गई बा। तो देखिए तेज बारिश के बाद अब देश के कई हिस्सा में मानसून की गतिविधि कमजोर पड़ गई बा। बिहार पंजाब हरियाणा दिल्ली या पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कई क्षेत्र में बारिश लगभग गायब बा। भारत मौसम विभाग के अनुसार अगला 5 से 7 दिन तक उत्तर पश्चिमी

0: मैदानी इलाका सवे देश के बड़ा हिस्सा में बारिश के गतिविधियां कमजोर बा। मौसम विभाग के मानी तो ए क्षेत्र में अच्छा बारिश के खातिर 20 से 22 जुलाई तक इंतजार करे के पड़ सकत बा।
1: जी, अब देखिए हमने के कुछ मौसम के पूर्वानुमान भी जानल जाओ।
0: जी जी,
1: भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान की अवधि में 15 से 19 जुलाई के दौरान आसमान में घना बादल छेले रही और जिला में एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ आंधी चले के और हल्का वर्षा होके के अनुमान बा। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहे के संभावना बा। सापेक्षिक आर्द्रता सुबह में 90 से 95 प्रतिशत तथा दोपहर में 60 से 55 प्रतिशत रहे के संभावना बा। पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से अगला दो दिन तक दक्षिणी पछिया और ओकरा बाद पूर्वा हवा चले के संभावना बा।
0: जी, एक साथ साथ देखिए हमने काल के मौसम जान ले लिया। काल हमने के वर्षा एकदम 8 mm बा। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड बा। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 80% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 60% रहे के उम्मीद बा। हवा के गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल सकता है। यही के साथ साथ समय तो एकदम उड़ा गई चलत चलत के बेरा से। सभी श्रोता भाई लोगों के मनु भाई के तरफ से नमस्कार और साथे साथ सुगिया बहन के नमस्कार।
1: सब श्रोता भाई बहन के सुगिया बहन के तरफ से भी नमस्कार और मनु भाई रुवा के भी नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम किसान वाणी। प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब सांझ गीत कार्यक्रम में आइए लेते हैं आनंद कुछ बेहतरीन भोजपुरी फिल्मी गीतों का। पहला भोजपुरी फिल्मी गीत हमने लिया है फिल्म दारोगा बाबू आई लव यू से। आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल और उदित नारायण की। विनय विहारी के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है लाल सिन्हा के।

भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत का पहला गीत अभी आपने सुना, श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज़ में विनय बिहारी के शब्द थे और संगीत दिया था लाल सिन्हा ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म आपन भइल पराया से। आवाज़ें हैं विनोद राठौर और सुचिता व्यास की, एमडी प्यासा के शब्द हैं और धुन बनाई है संतोष सुमन ने।

तब होई अपना आके इहवा बता दा। चांद के चांदनी सूरत मंदाकिनी।

विनोद राठौर और सुचिता व्यास के युगल स्वर में अभी आपने सुना फिल्म में आपन भई पराया का यह बेहतरीन भोजपुरी गीत एमडी प्याशा के शब्द थे और संगीत निर्देशन था संतोष सुमन के। कार्यक्रम का अगला गीत उदित नारायण की आवाज़ में आइए सुनते हैं। प्रेमी परमेश्वर पारस ने इस गीत को लिखा है, संगीत निर्देशन है नासिर खान के और फिल्म का नाम है भोजपुरिया लाठी।

0: मन के चुमल चाही, फुलवा के आरी आरी।
1: श्रोताओ, अभी आपने सुना उदित नारायण की आवाज़ में भोजपुरिया लाठी फिल्म का यह गीत प्रेमी परमेश्वर पारस के शब्द थे और नासिर खान ने इसे संगीत से सजाया था। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं आइए सुनते हैं उदित नारायण और पामेला जैन की आवाज़ में। फिल्म का नाम है रेजा, अरविंद तिवारी के शब्द हैं और संगीत दिया है अमन श्लोक ने।

0: कार्यक्रम में श्रोताओं, अभी आपने सुना उदित नारायण और पामेला जैन की आवाज़ों में रेजा फिल्म का यह भोजपुरी गीत। शब्द थे अरविंद तिवारी के और धुन बनाई थी अमन श्लोक ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांझ गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम के शेष गाने अब आप सुनेंगे इस संदेश के बाद।
1: आपन बिजनेस बढ़ावे खातिर लीही आकाशवाणी के सहयोग, देहियों के बुलंदियन के पाख।
2: आपको बिजनेस स्थानीय बा चाहे देश स्तर का, आकाशवाणी देले उपभोक्तन तक पहुँचे का विकल्प।
1: अब घर दफ्तर चाहे दुकान पर बैठल करी आकाशवाणी के कोनो केंद्र खातिर विज्ञापन बुकिंग।
2: आकाशवाणी के चैनलन पर विज्ञापन देहल भइल सस्ता आ सुलभ।
1: ता बुकिंग खातिर संपर्क करें 8700014242 पर।
2: जी हाँ, नंबर बा 8700014242।
0: श्रोताओं, संदेश के बाद सांझ गीत कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म कुर्बानी का यह भोजपुरी गीत। राजेश ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है राजेश से सिन्हा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला और अंतिम भोजपुरी गीत फिल्म में कब आई है दूल्हा हमार से अनुराधा पौंडवाल की आवाज़ है, वीरेंद्र पांडे और सतीश मुन्ना के शब्द हैं, सुरेंद्र कोहली ने इसे संगीत से सजाया है।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ थे भोजपुरी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सांस गीत अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:15 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है सांध्यकालीन सूचना कार्यक्रम। नमस्ते, गुड इवनिंग रोहतास।

श्रोताओं गुड इवनिंग। रोहतास कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सासाराम की कुछ एक खास स्थानीय गतिविधियों से। श्रोताओं, कौशल विकास केंद्र के रूप में सासाराम मंडलकारा अपनी पहचान बनाएगा। बंदी दरबार में कैदियों ने डीएम और एसपी के समक्ष रखी अपनी बात। श्रोताओं, जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा ने स्थानीय कारागार में बंदियों को आश्वस्त किया कि यह मंडल कारा पूरे राज्य में कौशल विकास केंद्र के रूप में अपनी पहचान कायम करेगा। इसे कौशल विकास केंद्र के रूप में बदलने के लिए हर संभव सहायता प्रदान किया जाएगा। साथ ही बंदियों को मुख्य धारा में लाने के लिए सभी संबंधित विभाग के अधिकारी को और सक्रियता से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि जीवन में धैर्य रखना चाहिए, हर रात की सुबह जरूर होती है। सभी को अच्छे नागरिक के बन देश के विकास में योगदान की शपथ भी दिलाई। जिलाधिकारी ने वहां की व्यवस्था की जानकारी और बंदी सुधार के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी जेल अधीक्षक सुजीत कुमार रॉय से ली। भवन की समस्या को दूर करने के लिए भवन निर्माण विभाग के अभियंताओं व जेल उपाधीक्षक संतोष कुमार को निर्देशित भी किया। आरक्षी अधीक्षक रोशन कुमार ने कैदियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील की तथा उनसे कारा अवधि में तकनीकी कौशल व सॉफ्ट स्किल विकसित करने पर बल दिया। जेल अधीक्षक ने जिलाधिकारी और एसपी को बताया कि कई बंदी यहां से डिस्टेंस एजुकेशन के तहत उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें ऑनलाइन कोचिंग क्लास की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। श्रोताओं, अब जीविका दीदियां स्वास्थ्य व पोषण के लिए करेंगी लोगों को प्रेरित। महिला स्वास्थ्य

व खुशहाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला परियोजना समन्वय जिला इकाई जीविका द्वारा CLF एंकर पर्सन तथा प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य विभाग पोषण नोडल को 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया। जीविका दीदियों को महिला स्वास्थ्य एवं खुशहाली कार्यक्रम पर विस्तार से अवगत कराकर बताया गया कि वे अपने क्षेत्र की एम्बेसडर बन स्वास्थ्य पोषण पर लोगों को जागरूक करें। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं होंगे। प्रतिभागियों को महिलाओं के स्वास्थ्य पोषण स्वच्छता मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एनीमिया की रोकथाम TB उन्मूलन संक्रामक एवं गैर संक्रामक रोगों की पहचान तथा सामुदायिक स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता बढ़ाने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रबंधक स्वास्थ्य एवं पोषण अजीत कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण से जीविका से जुड़ी तमाम दीदियां स्वास्थ्य के प्रति सजग और विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक रहेंगी। TB जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ सामुदायिक स्तर पर एकजुट होकर लड़ने पर कार्य किया जाएगा। जिला परियोजना प्रबंधक सुधीर बहादुर ने कहा कि स्वास्थ्य एवं पोषित समाज ही विकास की मजबूत आधारशिला है। आज जीविका दीदियां समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। यही दीदियां स्वास्थ्य एवं लोगों को जागरूक करेंगी तो इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा। वर्तमान में अनेक दीदियां जैविक खेती को अपनाने के साथ साथ किचन गार्डन के माध्यम से जैविक के फल एवं सब्जियों का उत्पादन भी कर रही हैं। तो श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे रोहतास जिले के स्थानीय गतिविधियों पर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आइए सुनते हैं एक बेहतरीन गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में अब थोड़ी देर में शाम के 7:25 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

अभी आप चौपाल के अंतर्गत ग्रामीण महिला कार्यक्रम और खेती गृहस्थी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही देर बाद अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है, आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के 150 सरकारी विद्यालयों में लाइव क्लासेस की शुरुआत की। 10 मॉडल विद्यालयों में जेईई और नीट के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था भी शुरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी के अंतिम दिन एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिया। अब 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ा, दरभंगा जिले के कई प्रखंड हुए बाढ़ से प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। देश में कल से हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना के 150 सरकारी विद्यालयों में लाइव क्लासेस की शुरुआत की। श्री चौधरी ने शास्त्री नगर स्थित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस पहल का विधिवत शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए लाइव ऑनलाइन कक्षाएं, एआई आधारित अध्ययन सहायता, स्मार्ट डिजिटल कंटेंट, नोट्स तथा मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही जेईई, नीट और सीयूईटी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने पटना के 10 मॉडल विद्यालयों में जेईई और नीट की निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था की भी शुरुआत की। इस महीने के अंत तक पटना के सभी हाई स्कूलों में लाइव क्लासेस की शुरुआत कर दी जाएगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नाम वापसी के अंतिम दिन एक निर्दलीय उम्मीदवार मिथिलेश कुमार ने अपना नाम वापस ले लिया। अब 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में रह गए हैं। इनमें एनडीए की ओर से भाजपा के नीरज कुमार, राजद से रेखा कुमारी और जन स्वराज पार्टी से प्रशांत किशोर प्रमुख हैं। कल उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। उपचुनाव के लिए मतदान 30 जुलाई को होगा। मतों की गिनती 3 अगस्त को की जाएगी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार की जीत तय है। श्री मांझी ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ने एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देकर उदाहरण प्रस्तुत किया है।
2: प्रशांत किशोर को तो हम जानते ही नहीं हैं। वो राजनीति में भले आए भाई बोलते हों, लेकिन राजनीति का स्थिति तो कुछ है ही नहीं। और जहाँ तक

0: भाजपा का सवाल है, भाजपा तो एक से एक मिराकल करती है कि नितिन नवीन को उन्होंने चेयरमैन बना दिया समूचे भारत के बीजेपी का, उसी प्रकार से यहाँ एक नया युवक जो सचमुच में कार्यकर्ता है उसको उन्होंने टिकट दिया। हम समझते हैं कि सभी कार्यकर्ता सभी एनडीए के लोग उनके साथ है, उनकी जीत सुनिश्चित है।
1: विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की जीत पक्की है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों से मिल रही फीडबैक के अनुसार भाजपा प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे।
2: चुनाव मतलब समझिए कि प्रारंभ हो गया है और जैसा जानकारी के मतदान 30 तारीख को जाकर के है। लोकतंत्र में तो जनता मालिक होती है, जनता का निर्णय अंतिम निर्णय होता जाकर के है। मुझे भी फीडबैक मिल रहा है एनडीए के प्रत्याशी जो हमारे हैं भारी मतों से भाजपा के प्रत्याशी एनडीए प्रत्याशी जो है सिन्हा जी विजयी हो रहे हैं।
1: शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आवेदन की सूचना आते ही इच्छुक शिक्षक पोर्टल पर आवेदन कर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। श्री तिवारी ने TRE4 परीक्षा को लेकर भी स्पष्ट किया है कि BPSC को इस संबंध में अधियाचना जल्द भेज दी जाएगी।
3: इसी महीने TRE4 की अधियाचना हम भेजने वाले हैं और शिक्षकों के स्थानांतरण 10 तारीख से शुरू हो गए हैं, क्योंकि कई प्रक्रिया को पार करके उन्हें ट्रांसफर लेना है और उसी के लिए रेशनलाइजेशन का काम चल रहा है और एक सप्ताह का उन्हें टाइम मिलेगा। वो भी तिथि आज से कल तक घोषित होगी और जब टाइम रहेगा इस शिक्षा पोर्टल पर वो अपना आवेदन दर्ज कराएंगे और उसके बाद वो स्थानांतरण पाएंगे।
1: देश भर में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया के अवसर पर आयोजित इस धार्मिक यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा रथ पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं। इस अवसर पर राजधानी पटना में भी इस्कॉन मंदिर की ओर से भव्य रथ यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुद्ध मार्ग स्थित इस्कॉन मंदिर से निकाली गई रथ यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ का रथ भी खींचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रथ यात्रा की बधाई दी है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त अता हसनैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी प्रदेशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया है। नेपाल में भारी बारिश के कारण गंडक, बागमती, कोसी और कमला बलान समेत उत्तर बिहार की कई नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हो रही है। कमला बलान नदी में आई बाढ़ के कारण घनश्यामपुर और कुशेश्वर स्थान प्रखंड के दर्जनों गांव में पानी प्रवेश कर गया है। एक रिपोर्ट।
1: कमला बलान नदी के दोनों तटबंधों के बीच बसे घनश्यामपुर प्रखंड के बाउर, गिदराही, नपटोलिया, कनकी मुसहरी, बैजनाथपुर, गिद्धा, भरसाहा, कैथाही समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। इससे इन पंचायतों का सड़क संपर्क प्रखंड मुख्यालय से टूट गया है। वहीं कई विद्यालयों में बाढ़ का पानी घुस जाने से पठन पाठन प्रभावित हुआ है। लोग सरकारी और निजी नावों के सहारे अपनी दैनिक जरूरतों के लिए आवाजाही कर रहे हैं। इधर प्रशासन तटबंधों की लगातार निगरानी कर रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए दरभंगा से मैं मणिकांत झा।
0: पश्चिम चंपारण जिले में भी गंडक, मसान समेत कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने से तटबंधों पर भारी

0: अफवाह बन गया है। इसे देखते हुए निगरानी बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट।
1: सीमावर्ती नेपाल के तराई क्षेत्र में भारी बारिश के कारण पश्चिम चंपारण जिले में गंडक समेत विभिन्न नदियों में भारी उफान है। मसान समेत कई पहाड़ी नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। रामनगर प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। इधर वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर बढ़ते दबाव को देखते हुए 1,34,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के मद्देनजर प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राहुल कुमार।
0: हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि कोसी बराज से आज 1,60,000 क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। फिलहाल बराज पर जलस्तर स्थिर बना हुआ है, जबकि नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह में शाम 6 बजे से 1,12,600 क्यूसेक पानी घटते क्रम में छोड़ा गया। कोसी नदी के जलस्तर में पिछले कुछ दिनों से उतार चढ़ाव जारी है। इसे देखते हुए जल संसाधन विभाग की टीम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। तटबंधों और स्परों की निगरानी जारी है। वहीं अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के पडरिया घाट पर बकरा नदी और नूना नदी पर बना चचरी पुल ध्वस्त हो गया, जिससे सिंघिया, ओलाबाड़ी, बांसवाड़ी, तीरा खारदा, ठेंगापुर सहित आधा दर्जन गांवों में सड़क संपर्क टूट गया है। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अरवल, औरंगाबाद, भभुआ, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण और सीवान जिले में तेज हवा के साथ बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। वहीं भागलपुर, जमुई, खगड़िया, मुंगेर समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों में कई स्थानों पर वज्रपात और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।
2: दिनांक 17 जुलाई राज्य के बांका एवं पश्चिमी चंपारण जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, जमुई, खगड़िया, मुंगेर, सारण एवं सिवान जिलों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान जहानाबाद, नालंदा और पटना जिले में भी विभिन्न स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण के मैनाटांड में सबसे अधिक 154 मिलीमीटर से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज पटना स्थित ICAR के पूर्वी अनुसंधान परिसर में कृषि में सुखाड़ प्रबंधन विषय पर संवाद का आयोजन किया गया। कृषक और वैज्ञानिकों के बीच संवाद के दौरान अलनीनो के मौसम तथा कृषि पर प्रभाव, वर्षा जल संचयन और सुखाड़ के प्रभावी प्रबंधन को लेकर विभिन्न उपायों पर चर्चा की गई। पटना जिले के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बांस घाट के करीब आज सुबह पुलिस के साथ मुठभेड़ में चर्चित बंटी यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी रवीश उर्फ बसिया घायल हो गया। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकी के शर्मा ने बताया है कि उसके पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी को PMCH में भर्ती कराया गया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्पेन से होगा। देर रात खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से पराजित कर दिया। इसके पूर्व पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को पराजित कर फाइनल में स्थान पक्का किया है। विश्व कप का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। अररिया जिले के जोगबनी में भारत नेपाल सीमा पर जांच के दौरान SSB जवानों ने एक महिला को 38 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। रोहतास जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत नहोना गांव में जमीन विवाद को लेकर हुई गोलीबारी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीवान में JP चौक स्थित दरबार रोड के समीप एक साड़ी दुकान में भीषण आगलगी की घटना में बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। अग्निशमन अधिकारियों ने आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया है। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिसहा गांव में एक घर में घुसे जहरीले किंग कोबरा सांप का एक महिला सर्प मित्र ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। पकड़े गए सांप को वाल्मीकि नगर वन क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के 150 सरकारी विद्यालयों में

0: लाइव क्लासेस की शुरुआत की। 10 मॉडल विद्यालयों में जेईई और नीट के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था भी शुरू। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन वापसी के अंतिम दिन एक प्रत्याशी ने नाम वापस लिया, अब 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। और मानसून की सक्रियता से प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश का सिलसिला जारी, नदियों का जलस्तर बढ़ा, दरभंगा जिले के कई प्रखंड हुए बाढ़ से प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: जी नमस्कार, मैं सम्राट चौधरी बोल रहा हूँ। राज्य में अग्निकांडों से होने वाली जान माल की क्षति अत्यंत दुखद और अपूर्णीय है। यदि हम सभी सतर्क रहें और आवश्यक सावधानियों का पालन करें तो इन घटनाओं को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। बिहार अग्निशमन सेवा जनहित में निरंतर जन जागरूकता अभियान के माध्यम से आप सभी के अग्नि सुरक्षा एवं निवारण के प्रति जागरूक कर रही है। यह सेवा राज्य के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर है। मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा किया जा रहा सुझाव का पालन करें। आपकी सजगता और सहयोग से हम राज्य में अग्निकांडों को रोक सकते हैं और जान माल की क्षति को न्यूनतम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर सुरक्षित बिहार का निर्माण करें। जय बिहार।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विनोद कुमार।
3: भागलपुर के गौराडे स्थित नव स्थापित राजकीय महाविद्यालय कासिम परिसर से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बीते दिन राज्य के 211 नए डिग्री कॉलेजों में पठन पाठन कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के विस्तार की दिशा में राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब विद्यार्थियों को अपने ही क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुजफ्फरपुर में आर्किटेक्चर और सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय तथा भागलपुर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी।
4: आज 211 डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं और भागलपुर में एक और विश्वविद्यालय बनेगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस का यूनिवर्सिटी इस भागलपुर की धरती पर बनाने का काम करो।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे ये प्रयास बिहार को ज्ञान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त विक्रमशिला सेतु को 30 नवंबर तक पूरी तरह चालू कर दिया जाएगा।
4: मैंने पथ निर्माण विभाग से यह आश्वस्त कराया है, 126 करोड़ रुपया हमने अलॉट किया और ये तय किया है कि 30 नवंबर के पहले हर हालत में विक्रमशिला पुल को फिर से सबके लिए चालू करने का काम किया जाएगा।
3: उन्होंने बताया कि भागलपुर में लगभग 400 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने राज्य से बाहर रह रहे लोगों से बिहार लौटकर उद्योग लगाने और विकास में भागीदार बनने की अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंगेर से भागलपुर तक 43 किलोमीटर लंबी गंगा मरीन ड्राइव का निर्माण शुरू हो चुका है और आगे इसे सबौर से राजमहल तक विस्तारित किया जाएगा। कहलगांव के निकट बटेश्वर धाम तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोपवे बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि भागलपुर क्षेत्र में 2 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे जिनमें सुल्तानगंज का प्रस्तावित एयरपोर्ट भी शामिल है। वहीं पीरपैंती में स्थापित हो रहे 2400

0: मेगावाट के पावर प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट और बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे उद्योग, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सहयोग शिविर अभियान का उल्लेख करते हुए बताया कि अब तक लगभग 6 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5.5 लाख का निष्पादन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवस्थापित राजकीय महाविद्यालय का निरीक्षण किया और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूह, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान सहित कई योजनाओं के लाभार्थियों को सांकेतिक चेक और प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इधर पिछले एक सप्ताह से जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से आंशिक राहत मिली है। खेतों में नमी बढ़ने से किसानों को भी थोड़ी राहत मिली है। हालांकि सामान्य से कम वर्षा होने के कारण किसान अभी भी पर्याप्त बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जिससे धान सहित खरीफ फसलों की खेती सही से हो सकेगी। जिले में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियां अंतिम चरण में है। 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाले इस मेले के लिए नमामि गंगे घाट, अजगैबीनाथ मंदिर घाट और सीढ़ी घाट पर रंग रोगन, बैरिकेटिंग, सुरक्षा जाल और अन्य व्यवस्थाएं तेजी से पूरी की जा रही है। लाखों श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और साफ सफाई के विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे भी अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन, स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, ताकि कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उधर जिला प्रशासन ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना में विलम्ब के मामले में जिला भूअर्जन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है और जवाब संतोषजनक मिलने तक उनके वेतन पर रोक लगाने की आदेश दिया है। वहीं बिना पूर्व अनुमति मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर कहलगांव के अंचल अधिकारी से भी 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया गया है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भागलपुर जिला अधिवक्ता संघ यानी DBA के चुनाव में वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेश कुमार मिश्रा लगातार दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए हैं, वहीं अंजनी दुबे महासचिव निर्वाचित हुए हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे भागलपुर जिले की हलचल। भागलपुर जिले की हलचल को प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विनोद कुमार।
2: प्रादेशिक समाचार और जिले की हलचल अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है, FM बैंड के 103.4 MHz पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:52 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है ईमेल आधारित फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ई मनपसंद।

ईमेल आधारित फरमाइशी नगमों के कार्यक्रम ई मनपसंद के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद है आप सभी श्रोता सुखी व सानंद होंगे। हम जानते हैं कि श्रोताओं, आप हमारे इस कार्यक्रम का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो आपके इस इंतज़ार की घड़ी को अब हम करते हैं ख़त्म में और शुरू करते हैं कार्यक्रम ई मनपसंद। कार्यक्रम का गीतों भरा यह सफ़र आज आप तय करेंगे अपने रेडियो साथी रवि भूषण के साथ। तो सभी श्रोताओं को मेरा स्नेहिल नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आगाज करते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए इस खूबसूरत गीत से, जिसे हमने लिया है फिल्म गुलामी से गुलजार के शब्द हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं। फुटानी चौक के नरहन स्टेट से ललन मिश्रा, नूतन मिश्रा, गुंजन छोटू, अमित सुमित, अमन परासर, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। बाईपास मेरठ गांव शोभापुर से दिग्दर्शन और कविता गौड़। नगर निगम वार्ड नंबर 28 से नाज मंजिल महसौल, सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस से उर्फ डाक बाबू, बेगम इसरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरिज

वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकहत परवीन। पसंद करने वाले और श्रोता हैं गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राजा पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकत पूरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, तारपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी रायकारी, मीनाकारी पुंजराज, आरती आकर्षण और जय श्री। तो आप सबों की पसंद पर लीजिए पेश है फिल्म गुलामी का यह खूबसूरत गीत, जिसे आवाज़ दी है लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार ने।

ई मनपसंद कार्यक्रम का पहला गीत श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म में गुलामी से हमने लिया था लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के आवाज़ थे। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं की पसंद से हमने लिया है। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। आवाज़ें हैं मुकेश और लता मंगेशकर और साथियों की। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं। ओम रेडियो श्रोता संघ नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़ और दयानंद गायकवाड़, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा ने वादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय, बक्सर बिहार।

से शरफ उद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरीत रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी। और भी श्रोता हैं जिन्होंने इस गीत को सुनने की फरमाइश हमसे की है। दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। तो आप सबों की पसंद पर लीजिए। पेश है यह खूबसूरत नगमा मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम में अभी सुना आपने यह खूबसूरत गीत, जिसे हमने लिया था फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। आवाजें थी मुकेश और लता मंगेशकर की, संतोष आनंद के शब्द थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं फिल्म कभी कभी का यह बेहतरीन गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की हैं। गीत को लिखा है साहिर ने और संगीत दिया है खयाम साहब ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं बागबत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म कभी कभी का यह बेहतरीन फिल्मी गीत, जिसे लिखा था साहिर ने और संगीत दिया था खयाम साहब ने। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुछ संदेश। संदेश के बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम के शेष गाने।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

इसके बाद ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम ई मनपसंद में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब आइए सुनते हैं शैलेंद्र सिंह की खूबसूरत आवाज़ में फिल्म खेल खेल में का यह बेहतरीन गीत, जिसे लिखा है गुलशन बावरा ने और संगीत निर्देशन है आरडी बर्मन साहब के। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, यश प्रयाग, शिवम प्रहलाद, राजेश वर्मा, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादी के, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गोंड, मोहम्मद शदाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगामा से हाजी इसहाक लीलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, गांव डूडी तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार और शेख जफर हसन।

शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म में खेल खेल में का यह गीत गुलशन बावरा के शब्द थे और संगीत निर्देशन था आरडी वर्मन साहब के। कार्यक्रम का अगला गीत श्रोताओं हमने लिया है मुकेश कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है मिलन। आनंद बख्शी साहब के शब्द हैं और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद करने वाले आप सभी हैं बडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस से, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गांव टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ति कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका और वाणी थांदी।

0: सावन का महीना पवन करे शोर,
1: सावन का
0: पवन करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर। हाँ,

श्रोताओं, यह खूबसूरत गीत आपने सुना अभी मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम था मिलन, आनंद बख्शी साहब के शब्द थे और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और अब सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में फिल्म में प्यार झुकता नहीं का यह बेहतरीन गीत। SH बिहारी के शब्द हैं और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने। पसंद करने वाले आप सभी श्रोता हैं छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापेश हेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद राइन, अखलाक अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले परिवार।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम पेशकश है। फिल्म का नाम है फिर तेरी कहानी याद आई। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज़ें हैं, कातिल सिफई के शब्द हैं और संगीत दिया है अनु मलिक ने। सुनने वाले आप सभी श्रोता हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीना देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।

तो श्रोताओं, इसी गीत के साथ है फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम ईमेल आधारित ई मनपसंद अब यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम का गीतों भरा आज का यह सफ़र आपने तय किया अपने रेडियो दोस्त रवि भूषण के साथ है। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में नए विषय के साथ हम फरमाइशी नगमों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने रेडियो दोस्त रवि भूषण को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है ईमेल आधारित फरमाइशी हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। प्रस्तुतकर्ता थे संतोष कुमार, FM बैंड के 103.4 MHz

0: पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारी स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
3: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के एक वर्षीय प्लैटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थीं। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देश भर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमीयतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप News on AIR पर भी उपलब्ध हैं।

0: ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
0: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमरीका ने उत्तरी ईरान

0: तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच 2 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: समाचार संध्या अभी आप सुन रहे थे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9 बज चुके हैं। लोकधारा कार्यक्रम में श्रोताओं आइए लेते हैं आनंद कुछ बेहतरीन लोकगीतों का। पहला लोकगीत आइए सुनते हैं मनोरंजन ओझा की आवाज़ में।

सुधा सिन्हा की आवाज़ में अभी आपने सुना यह लोकगीत है। लोकधारा कार्यक्रम का अगला और अंतिम लोकगीत है। आइए सुनते हैं विंध्यासिनी सिन्हा और सहेलियों की स्वर में।

विंध्यवासिनी सिन्हा और सहेलियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। इसी के साथ लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम लोकधारा अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:15 हो चुके हैं। अब लीजिए पेश है गज़लों का कार्यक्रम महफिल। कलाकार हैं भूपिंदर सिंह, शब्द हैं अश्क अंबालवी के और संगीत दिया है भूपिंदर सिंह ने।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

क्रम महफिल अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
0: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

हांगकांग में जन्मी हैं और उनका परिवार दुनिया के अलग अलग देशों में रहता आया है। आखिरकार उनका परिवार लंदन में बस गया, जहां कैटरीना ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद शुरू हुई मॉडलिंग।

एक फैशन शो में कैटरीना कैफ रैंप पर वॉक कर रही थी और उन पर नजर पड़ी फिल्मकार कैजाद गुस्ताद की, जो उन दिनों अपनी फिल्म बूम के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे। बस यहां से शुरू हुआ कैटरीना कैफ का करियर। फिल्म बूम 2003 में आई थी। 2004 में कैटरीना कैफ ने एक तेलुगु फिल्म की मल्लीश्वरी, इस फिल्म ने खूब कामयाबी हासिल की और इसके बाद साल 2005 कैटरीना कैफ को मिली अपनी पहली कामयाबी। ये फिल्म थी मैंने प्यार क्यों किया।

कैटरीना कैफ के लिए अभिनय का ये रास्ता बहुत आसान नहीं रहा। हिंदी से बहुत ज्यादा वाकिफ वो थी नहीं, परवरिश लंदन में हुई थी, उच्चारण में बहुत ज्यादा ब्रिटिश लहजा था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कैटरीना की शुरुआती फिल्मों में उनके संवादों की डबिंग की जाती थी, लेकिन कैटरीना ने बहुत मेहनत की और अपने रोल्स में जान डाली।

अक्षय कुमार के साथ पहली बार काम किया। ये फिल्म थी निर्देशक राज कंवर की फिल्म हमको दीवाना कर गए। फिल्म बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन आगे चलकर अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए, जैसे साल 2007 में नमस्ते लंदन।

इसके बाद फिल्म अपने में कैटरीना कैफ एक सपोर्टिंग रोल में नजर आईं। इस फिल्म में वो डॉक्टर बनी थी। डेविड धवन की फिल्म आई पार्टनर, जिसमें कैटरीना कैफ का बड़ा इंटरेस्टिंग रोल था।

साल 2009 में कैटरीना कैफ ने कबीर खान की फिल्म न्यूयॉर्क में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ थे जॉन अब्राहम और नील नितिन मुकेश।

इसके बाद कैटरीना कैफ की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म आई, राजकुमार संतोषी की अजब प्रेम की गजब कहानी। ये फिल्म उस साल की बेहद कामयाब फिल्मों में से एक बन गई।

साल 2010 में एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म आई जिसकी ना चलने का कैटरीना कैफ को भी दुख है और इस फिल्म के निर्माता निर्देशकों को भी। ये फिल्म थी अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की अभिनय वाली 30 मार खां। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आई जोया अख्तर की फिल्म में। इस फिल्म का नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।

ये वो दौर था जब कैटरीना कैफ जो भी फिल्म करती वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छूती। साल 2013 कैटरीना कैफ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इस साल आमिर खान के साथ वो नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म धूम 3 में।

साल 2016 में अभिषेक कपूर की फिल्म फितूर में कैटरीना कैफ ने काम किया। यहाँ आपको बता दें, ये फिल्म चार्ल्स डिकिंस के मशहूर नॉवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस पर आधारित थी। इसके बाद कैटरीना कैफ नजर आईं सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म बार बार देखो में।

0: अभिनेत्री कैटरीना कैफ की अभिनय यात्रा जारी है। वो नजर आईं साल 2017 में अली अब्बास जफर की फिल्म टाइगर जिंदा है में। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर का नाम था जोया सिंह राठौड़। इसी साल आई वेलकम टू न्यूयॉर्क। साल 2018 में कैटरीना कैफ नजर आईं विजय कृष्ण आचार्य की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में, जिसमें उनका किरदार था सुरैया का।
1: घर सुरैया जान के सर झुका के आए हो, दे

साल 2018 में ही आनंद रॉय की फिल्म में नजर आई वो फिल्म थी जीरो। इस फिल्म में उनके हीरो थे शाहरुख खान। 2019 में सलमान खान के साथ नजर आई कैटरीना कैफ अली अब्बास जफर की फिल्म भारत में।

0: Ja.
1: ये था आज के फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था अभिनेत्री कैटरीना कैफ पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
2: आज के फनकार।

श्रोता अभी सुन रहे थे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब लीजिए पेश है हिंदी एल्बम सॉन्ग्स पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम का पहला गाना हमने लिया है एल्बम तेरे नाम से। आवाज़ें हैं तुलसी कुमार और दर्शन रावल के। मनन भारद्वाज के शब्द हैं और संगीत दिया है मनन भारद्वाज ने।

रसरंग कार्यक्रम का पहला एल्बम गाना हमने अभी आपको सुनवाया, एल्बम तेरे नाम से। आवाज़ें थीं तुलसी कुमार और दर्शन रावल के, गीत और संगीत थे मनन भारद्वाज के। कार्यक्रम का अगला एल्बम गाना हमने लिया है एल्बम तेरी जुदाई का गम से। मनोज वर्मा ने इसे गाने को गाया है, शैलेंद्र शर्मा के शब्द हैं और संगीत दिया है शबाब आज़मी ने।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: रसरंग कार्यक्रम में आइए श्रोताओं अब सुनते हैं एक बेहतरीन एल्बम गाना जिसे आवाज दी है जुबिन नौटियाल और पायल देव ने। कुणाल वर्मा के शब्द हैं, संगीत है पायल देव के और एल्बम का नाम है मेरी तरह।

श्रोताओं, अभी आपने सुना जुबिन नौटियाल और पायल देव की आवाज़ों में मेरी तरह एल्बम का यह एल्बम गाना। कुणाल वर्मा के शब्द थे और संगीत निर्देशन था पायल।

देव के हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से, और हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं हिंदी एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रसरंग। कार्यक्रम का अगला गाना आइए सुनते हैं विवेक मिश्रा और कल्पना मीना की आवाज़ों में। एल्बम है सजना वै सजना, विवेक मिश्रा के शब्द हैं और पुनीत विवेक ने इसे संगीत से सजाया है।

विवेक मिश्रा और कल्पना मीना की आवाज़ों में एल्बम सजना व सजना का यह एल्बम गाना विवेक मिश्रा के शब्द थे और पुनीत विवेक ने इसे संगीत से सजाया था। अब आइए कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं आकांक्षा शर्मा की आवाज़ में यह खूबसूरत एल्बम गाना। धनराज दधीच के शब्द हैं और कपिल जागीर ने इसे संगीत से सजाया है।

तो श्रोताओं, इसी एल्बम गाने के साथ एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रसरंग अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। अब लीजिए, प्रस्तुत है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। आनंद बख्शी साहब के शब्द हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है नगीना।

हम करते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। आनंद बख्शी साहब के शब्द हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है नगीना।

चित्रपट तराने कार्यक्रम का पहला गीत अभी आपने सुना, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में आनंद बख्शी साहब के शब्द थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम था नगीना। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म सीआईडी का यह गाना, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया है ओपी नैयर ने।

श्रोताओ, अभी आपने सुना फिल्म सीआईडी का यह गीत जिसे गाया था शमशाद बेगम और आशा भोसले ने। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है झुक गया आसमां। हसरत जयपुरी के शब्द हैं और संगीत निर्देशन है शंकर जयकिशन का।

चित्रपट तराने कार्यक्रम का अगला और अंतिम पेशकश है। फिल्म का नाम है बॉम्बे का बाबू। आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं, मजरूह सुल्तानपुरी के शब्द हैं और संगीत दिया है एस टी वर्मन ने।

तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है आज का हमारा यह चित्रपट तराने कार्यक्रम। FM बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के सासाराम केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 हो चुके हैं। अब श्रोताओं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, कल प्रातःकालीन सभा की शुरुआत हम करेंगे सुबह 5:51 से 5:53 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम, 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार चिंतन श्री रामचरित मानस संगीत सरिता,

सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे प्रातःकालीन सूचना कार्यक्रम नमस्ते रोहतास से। सुबह 8 बजे आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 8:20 पर हम प्रस्तुत करेंगे पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम पसंद आपकी। सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से।

गीत मालिका कार्यक्रम जो हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित है आप सुनेंगे सुबह 9:10 पर। 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। 10:05 पर आप सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। 10:45 पर आप सुनेंगे भोजपुरी एल्बम गानों पर आधारित कार्यक्रम रसधार। 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग हमारे विविध भारती के मुंबई केंद्र से। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे महिला बहनों का कार्यक्रम घर आंगन। 6:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम गांव घर। 7:50 पर आप सुनेंगे ईमेल आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम ई मनपसंद। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे रेडियो साप्ताहिक के पत्रिका शब्द शिल्प का प्रसारण हमारे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट तराने। तो श्रोताओं, अभी हम एक नज़र डाल रहे थे कल की सभा में प्रसारित होने वाले खास से कार्यक्रमों पर। अब आइए कल के मौसम के बारे में हम पूर्वानुमान की जानकारी दे दें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्वानुमान अवधि 15 से 19 जुलाई के दौरान आसमान में घने बादल छाए रहेंगे एवं जिले में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आंधी चलने एवं हल्की वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की संभावना है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 90 से 95% तथा दोपहर में 60 से 55% रहने की संभावना है। पूर्वानुमान की अवधि में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगले दो दिन दक्षिण पश्चिम एवं उसके बाद दक्षिण पूर्वा हवा चलने का अनुमान है।

अभी हम एक नज़र डाल रहे थे कल प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों पर। एफएम बैंड के 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का सासाराम केंद्र है। अब थोड़ी देर में हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और उसके तुरंत बाद ही आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा

0: कि ये सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हुई। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजारप्पू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। ये ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से बातचीत की और फादर अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक संदेश में श्री मोदी ने कहा कि कतर के फादर अमीर की स्थायी विरासत दोनों देशों को अपनी रणनीतिक साझेदारी और मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती रहेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने को लिए डटे हुए थे।
1: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रथ में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
0: देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandviya said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's